नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज रविवार है। शक संवत 1948 के अश्विन मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 4 अक्टूबर सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच करने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके लिए नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉ काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद

0: आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने श्री स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छर के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में इन भाषाओं पर उच्च स्तर का शोध किया जाएगा, साथ ही इनके साहित्य और भाषाई विरासत को सुरक्षित रखने और डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने पर भी कार्य किया जाएगा। ये उत्कृष्टता केंद्र असम के तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे के स्नातकोत्तर डेक्कन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नवद्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत विकसित करने की भी योजना बना रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में कॉफी की खेती का विस्तार करने, उत्पादकता और कॉफी बीन्स की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्य के कृषि विभाग द्वारा आयोजित हिल्स टू कप कॉफी कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार कार्यशाला में दिए गए सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगी और कॉफी उत्पादकों को हर संभव सहायता देगी। एशिया खेल आज भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होंगे। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

真等。शास्त्रों में कहा गया है, अलसस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती, विद्या के बिना मनुष्य धन नहीं कमा सकता, धन के बिना व्यक्ति के मित्र नहीं होते और मित्र के बिना जीवन में सुख नहीं होता। ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोका के अंतर्गत। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 331 लंका कांड आज आप सुनेंगे। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं भाग 4। आमंत्रित कलाकार हैं गायक एवं संगीतकार शेखर सेन, संवादिका ममता सिंह, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक के। सात बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से हम हैं राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी और 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 और 9:30 आज के फनकार कार्यक्रम आज का केंद्रित होगा पार्श्व गायक शैलेंद्र सिंह पर। आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। आज सुबह 10 पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकी सुनिएगा गायिका पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठ से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का तीसरा भाग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। दोपहर 11 सुनिए विविधा के अंतर्गत रविन्द्र जैन केंद्रित होगा ये कार्यक्रम, रविन्द्र जैन पर, जगजीत सिंह पर और निदा फाजली पर।

12:05 यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर। दो बजे त्रिवेणी, 2:30 पर सदाबहार नगमे, 3 बजे से मन चाहे गीत। पर नाट्य तरंग में सुनिए नाटक वायलिन वादक, लेखन असद जैदी का, दिग्दर्शक मदन शर्मा का। शाम 4 बजे पिटारा में उजाले उनकी यादों के, इसके अंतर्गत संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत सुनिएगा। आज इस बातचीत का तीसरा भाग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। पांच बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने, 6:35 पर संध्या रंजन। शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम, आपको फिर से बता दे सुनिएगा श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, भाग 4, आमंत्रित कलाकार गायक और संगीतकार शिखर सेन, संवादिका ममता सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। फौजी साथियों का कार्यक्रम विशेष जयमाला शाम 7 बजे से, सैनिकों की शौर्य गाथा, एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मुलगांवकर की शौर्य गाथा सुनेगा। सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत प्रस्तुत करता है कल्पना शेट्टी। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज। हवा महल में रात 8 बजे सुनिए नाटिका परिवर्तन, इसका पहला भाग, लेखक हैं कामना चंद्रन, निर्देशक हैं अनुराधा शर्मा। 8:15 पर चित्रलोक। 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार। 10 बजे छाएगी, 10:30 पर ढलती जाए रात। और 11 बजे सुनिए विविधा, आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज आप सुनेंगे लंका कांड भाग 331।

महाबली मेघनाद जामवान के त्रिशूल प्रहार से मूर्छित हो गया था। जब उसकी मूर्छा टूटी तो अपने पिता को अपने पास चिंतित देख अत्यंत लज्जित हुआ। अविजित होने के लिए यज्ञ करने हेतु उसने एक पर्वत कंदरा की शरण ली। विभीषण को शंका हुई कि यदि मेघनाद ने यज्ञ संपन्न कर लिया तो उसका वध करना असंभव हो जाएगा। जब विभीषण ने अपनी चिंता का कारण श्री राम को सुनाया तो उन्होंने लक्ष्मण के साथ वानरों का एक दल मेघनाद के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए भेजा। लक्ष्मण ने मन में ठान लिया कि आज वे अवश्य उसका वध करेंगे, यदि नहीं कर सकेंगे तो वे श्री राम का सेवक होने और कहलाने के अधिकारी नहीं होंगे। वानरों ने यज्ञ विध्वंस के लिए अनेक उत्पात किए किंतु वो सब विफल रहे। तब वानर अनेक प्रकार से मेघनाद की प्रशंसा करने लगे।

फिर भी यज्ञ भंग नहीं हुआ। अंत में वानरों ने जब उसे लातों से मारकर केश पकड़ वेदी से उठाने की चेष्टा की तो मेघनाथ का क्रोध उमड़ पड़ा। उसने हनुमान और अंगद की छाती में त्रिशूल मार उन्हें धराशायी कर दिया। स्वयं कभी अंतर्ध्यान हो जाता फिर तत्काल प्रकट भी, लेकिन लक्ष्मण के प्रहार से वो अपने को बचा नहीं सका। लक्ष्मण की प्रतिज्ञा पूरी हुई, मेघनाथ का वध उन्हीं के हाथों हुआ।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज आपने सुना भाग 331। आपने सुना आज लंका कांड।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आइए सुनते हैं चौथी कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। शताब्दी की भक्ति रचनाएं ये श्रृंखला इन दिनों प्रसारित हो रही है संगीत सरिता कार्यक्रम में, और शेखर दादा अपने ज्ञान के खजाने से देखते हैं आज कौन सी मोती की चमक बिखेरने वाले हैं।
2: सबसे पहले तो संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को मेरा हृदय से प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक युग का थोड़ा छुपा हुआ पन्ना खोलने जा रहा हूँ।
1: जी,
2: आप में से कितने लोगों को पता है कि मन्ना डे जी के काका कौन थे?
1: केसी डे।
2: जी हाँ, कृष्ण चंद्र डे उनका नाम था, और वो बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे। बांग्ला में उनके बहुत सारे भजन, बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे सुगम संगीत की रचनाएं उनकी प्रसिद्ध हैं। और ये वो कालखंड है ममता जी, जिस समय फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो कलकत्ता में मूलतः हुआ करती थी, मुंबई में और लाहौर में भी थी, लेकिन मेन जो प्रोडक्शन होता था, सारे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जो थे वो उस समय कलकत्ता में थे। और कलकत्ता के ही श्रेष्ठ संगीतकार गायक हमको इसी वजह से मिले, और बांग्ला के भी श्रेष्ठ निर्देशकों का हमें योगदान मिलता है हमारी प्रारंभिक फिल्मों में। केसी डे जी नेत्रहीन गायक थे
1: जी।
2: और दरअसल जब वो मुंबई जब उनका आना हुआ बाद में, तो उनके भतीजे थे मन्ना दा, तो मन्ना डे जी को इसलिए भेजा गया था कि भाई काका हैं उनको दिखाई नहीं देता है, तो आप हाथ पकड़ करके अपने काका को हर जगह लेकर जाएंगे ताकि काका सुरक्षित रहें। बंबई बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, मतलब लोग कलकत्ता में रहने वाले डरते थे। तो केसी डे साहब यहाँ आए और उन्होंने बहुत सारे गाने गाए, पर आज मैं चाहता हूँ कि आप हमें एक गीत सुनाएं जो फिल्म का गीत है। ये फिल्म है धूप छाऊं, उसमें उन्होंने गाया भी था
1: जी,
2: और उसमें उन्होंने एक्टिंग भी की थी।
1: जी जी,
2: तो उनके ही ऊपर वो फिल्म आया गया था
1: जी।
2: तो मैं चाहता हूँ 1935 की फिल्म धूप छाऊं का ये गीत श्री कृष्ण चंद्र डे, जिनको हम केसी डे जी के नाम से जानते हैं। बाबा मन की आंखें खो।

0: धूम छाओ फिल्म का ये गाना केसी डे के स्वर में अभी आपने सुना। दादा हमें बताइए कि केसी डे के गीतों की जो लोकप्रियता थी बहुत ज्यादा थी, तो क्या उनकी गायन की विशेषता थी, क्या कारण था, इतने लोकप्रिय कैसे हुए?
1: भारतीय मानस की विशेषता रही है कि एक तो उनको सधा हुआ गाना अच्छा लगता है,
0: जी
1: कि सधा हुआ गाना है, सीखा हुआ गाना है। तो जैसे भी हमारे यहाँ बहुत सारे सधे हुए गायक थे, रफी साहब थे, लता जी, आशा जी, मन्ना दा स्वयं,
0: जी जी
1: जिन्होंने संगीत सीख करके गाना गाया। पर कुछ गायक थे जो मस्ती वाले गायक थे,
0: जी जी
1: और कुछ गायक थे जिनको ईश्वरीय उनकी आवाज में तत्व होता था,
0: वरदान मिला था।
1: वरदान मिला होता था कि वो जब गाते थे तो आप

0: की लौ लग जाती थी, आपकी अपने आप आंखें बंद हो जाती थी। और ये जो गाना है, इसके अगर आप शब्दों को भी ध्यान से सुने तो इतना सुंदर इसका काव्य है।
1: जी
0: और वो लिखा था वसंत कुमार दुबे जी ने,
1: जी जी
0: बाबा मन की आंखें खोल, दुनिया क्या है खेल तमाशा, 4 दिनों की झूठी आशा, पल में तोला पल में माशा, ज्ञान तराजू ले के हाथ में, तोल सके तो तोल, बाबा
1: बाबा
0: मन की
1: मन की
0: आंखें
1: आंखें
0: खोल।
1: खोल।
0: तो इस तरह
1: क्या
0: का आप ये भी देखिए कि कैसे इतने कम शब्दों में एक गहरा आध्यात्मिक संदेश इसके अंदर है। तो आप सब श्रोताओं को ये रचना अच्छी लगी होगी, और मैं चाहता हूं इसी क्रम में आप एक और रचना केसी डे जी की सुनाएं। ये भी बहुत प्रसिद्ध रचना है, मिश्र भैरवी में, फिल्म है पूरन भगत।
1: जी
0: ये मेरा ऐसा अनुमान है कि 1933 या 1934 की फिल्म है, और शब्द हैं, जाओ जाओ मेरे साधु, रहो गुरु के संग। आप सब इसका आनंद लें। इसके संगीतकार थे श्री आर सी बोराल।
1: जी।

0: श्रोताओं, आपने अभी ये गीत सुना आदरणीय केसी डे जी की आवाज में। दरअसल कृष्णचंद्र डे, केसी डे साहब जो गाते थे, उसमें न केवल शास्त्रीय संगीत का अंश तो होता ही था, लेकिन उसमें बंगाल की जो लोक गीत की परंपरा है उसका भी बहुत सारा अंश वो समाहित करते थे, जैसे कीर्तन
1: जी जी,
0: जैसे भटियाली। तो इस तरह की रचनाओं का असर, आप जब एक लोक गायक होते हैं, लोकप्रिय गायक होते हैं, तो आपके गाने में कहीं ना कहीं वो असर जो है वो आ जाता है
1: जी।
0: तो ये एक रचना मैं आपको बांग्ला में सुना रहा हूं ताकि आपको उसकी खुशबू बंगाल की मिलेगी, तो आपको पता चलेगा कि इस खुशबू का प्रयोग कैसे केसी डे जी के गानों में, एस डी बर्मन साहब के गानों में या और दूसरे बंगाली संगीतकारों के गानों में आपको दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा।
1: जी आप सुनाएं प्लीज।

0: क्या बात है दादा, ऐसे लग रहा है कि अब तो
1: ये
0: आपसे यही अनुरोध
1: भटियाली का रंग है,
0: करेंगे।
1: मैं चाहता था कि श्रोताओं को थोड़ा सा इसका भी आनंद मिले, इसलिए
0: अब हम श्रोताओं से आपकी ओर से वादा कर रहे हैं कि अगली कड़ी में एक रंग भटियाली का जरूर सुनाएंगे। आप जो भी जानकारी देना चाहें, जो भी आप चाहें सुनवाएं, लेकिन एक भटियाली का रंग अगली कड़ी में जरूर सुनवाएं।
1: जरूर।
0: इस बात के साथ हम श्रोताओं से अनुमति ले रहे हैं। नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, ये श्रृंखला आप सुन रहे थे। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही थी ममता सेन। आज हमने सुनी इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। तबला संगत आशीष बिस्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बोली बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।

0: कुकड़ा सब बोले हाय राम, होए होए सब बोले हाय राम,
1: हाय हाय सब बोले हाय राम, हाय हाय सब बोले हाय राम।
0: सबकी लागी के नजरिया सोलह बरस की भई उमरिया, सोलह बरस की भई उमरिया,
1: सोलह बरस की।

0: सोलह बरस की भई उमरिया, सोलह बरस की भई उमरिया, सोलह बरस की भई उमरिया।
1: शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे आग फिल्म का गीत। बेहसात लखनवी ने गीत को लिखा था और राम गांगुली ने धुन बनाई थी। लीजिए अब सुनिए हमराही फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की, शब्दकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज
0: मेरे। जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
0: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मेला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, शमशाद बेगम की आवाज थी, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद अली की धुन थी। आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं, अंतराल के बाद फिर से हाजिर होंगे।

नदिया के पार फिल्म का गीत आपने अभी सुना। आवाजें थी लता मंगेशकर और चितलकर की, संगीतकार थे सी रामचंद्र। लीजिए अब सुनिए प्यार की जीत फिल्म का गीत, आवाज सुरैया की है।

0: जाने वाले वादा न भूल जाना। सुरैया की आवाज में प्यार की जीत फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। कमर जलालाबादी ने बोल लिखे थे और हुस्नलाल भगतराम ने धुन बनाई थी।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खींची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत।

अनोखी अदा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। शमशाद बेगम की आवाज थी, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद अली की तर्ज। लीजिए आप सुनिए एक्ट्रेस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। बोल हैं नक्शब के, संगीतकार हैं श्याम सुंदर।

हम अपने दिल का फसाना उन्हें सुना ना सके। एक्ट्रेस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। अभी आप सुन रहे थे नक्षप के बोलते श्याम सुंदर का संगीत। इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। सविता सिंह को नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी को सविता सिंह का नमस्कार।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कैसी हूँ।

0: लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में बॉबी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से

0: बाहर का सोचूं। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
3: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
2: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
2: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: और उषा खन्ना की आवाजों में तिलक राज ने इस गीत को लिखा था, राम लक्ष्मण ने धुन बनाई थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
2: पेंटर बाबू
1: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
3: दिल तो पागल है,
1: दुश्मन
4: चिट्ठी न कोई संदेह,
1: गदर एक प्रेम कथा,
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
1: पिंजर दास्तान, बेमिसाल संगीत की
6: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
1: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हम हैं राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में अब समय है कि बहुत छोटा सा एक अंतराल लिया जाए, उसके बाद फिर से उपस्थित होंगे।

0: आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे रफू चक्कर फिल्म का गीत। गीत गुलशन बाबरा का था, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
5: यादों की बारात निकली है आज के द्वार।
4: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
6: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
4: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: मेरे सनम फिल्म का गीत लीजिए, सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर।

0: मेरा अरमां भी रह जाए, हाय हमदम मेरे।
1: मेरी सनम फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे ओपी नैयर। लीजिए अब सुनिए सांझ को आज नहीं इस फिल्म का गीत। आवाजें हैं उषा मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह के। कुलवंत जानी ने गीत लिखे हैं, राम लक्ष्मण ने धुन बनाई।

आज को आज ने इस फिल्म का गीत आपने अभी सुना। आवाजें थी उषा मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की, कुलवंत जानी की बोल थे राम लक्ष्मण का संगीत। और इसी गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार की ये कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया, नए अध्यक्ष किए नियुक्त। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का कड़ा विरोध किया, पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया आमंत्रित। और जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह, भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। इन 5 केंद्रों की स्थापना

0: कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच कराने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी।
2: प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में युवा प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन होगा। इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के युवा, कारोबारी, पेशेवर, शिक्षाविद और नवाचार से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस का यह 19वां संस्करण दुनिया भर में रह रहे भारतीय समुदाय के भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इसीलिए खास है क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति जलाने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है। कैप्टन स्मिथ का इस समय अबू धाबी में उपचार चल रहा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने भी भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इस भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको देश में विकसित हो रहे आधुनिक नागरिक उड्डयन ढांचे और हवाई अड्डों पर उपलब्ध विश्व स्तरीय सुविधाओं से परिचित कराएंगे।
3: बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज यात्रियों और कार्गो के लिए एक बड़ा हब बन गया है जो टेक सिटी बेंगलुरु को भारत और दुनिया भर की जगहों से जोड़ता है। 2025-26 के दौरान यहां 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें अकेले इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या में लगभग 24% की बढ़ोतरी हुई। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस एयरपोर्ट में लगभग 2.8 लाख विमानों का आना जाना भी दर्ज किया गया। पिछले साल यहां 5 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा कार्गो को संभाला, जिससे कारोबार भारत और विदेशों के बड़े बाजारों से जुड़े। मॉडर्न चेक इन, डिजी यात्रा और बैगेज सुविधाएं, फ्लाइट की जानकारी देने वाले डिस्प्ले, लॉन्च और शानदार इंटीरियर की वजह से सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ हुई है। T2 का टर्मिनल इन द गार्डन कॉन्सेप्ट, जिसमें हरी दीवारें, छत से लगे बागान, सुंदर लैंडस्केप और सूरज की स्वाभाविक रोशनी को फिल्टर करने वाले इंजीनियर बांस का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको याद दिलाता है कि बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यह एयरपोर्ट यात्रियों की सुविधाओं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अनोखे आर्किटेक्चर और कड़ी सुरक्षा का बेहतरीन मेल है। साथ ही यह उस शहर की पहचान को भी दिखाता है जिसकी ये सेवा करता है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नव द्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रिजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मतदान मंगलवार 6 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री शुभेंद्र

0: अधिकारी आज नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार हसी रानी रथ के समर्थन में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। स्पष्ट और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियन ने कहा है कि अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान ने नई व्यवस्था अपनाई है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति पजिशकियन ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा रहा है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्धविराम के लिए भारत के प्रस्ताव को चार प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिवेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्धविराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले जारी रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों से आम लोगों को विस्थापित करने के उद्देश्य से हवाई हमले तेज करने की नई नीति अपनाई है। श्री जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्दियों से पहले नागरिक ठिकानों पर हमलों का दायरा बढ़ाने वाली नई सैन्य नीति को मंजूरी दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी शेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो की याद में आयोजित की जा रही है। श्री शेखो ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। और अब जापान में आज होने वाले एशियाई खेलों के समापन समारोह की जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं आज जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले भव्य एशियाई खेलों के समापन समारोह के साथ। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू होंगी। वो तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए क्रिकेट की तो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो फरहत, ये थे अब तक के कुछ खेल समाचार।
0: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 2 दिन में बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, गोल्डन 5 के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर जीता स्वर्ण। पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर कटाया ओलंपिक टिकट। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, स्वर्णिम उछाल, क्रिकेट से लेकर हॉकी में गोल्ड मेडल। हिंदुस्तान ने उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन के आर्थिक सम्मेलन में संबोधन का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी। उपराष्ट्रपति ने कहा, समावेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अमर उजाला ने युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति शीर्षक से लड़ाकू विमानों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, तेजस, राफेल और F-35 ने एक साथ भरी उड़ान। बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी मिल सकती है छुट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निजी क्षेत्र के पुरुष कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव देने समेत 37 सिफारिशें दी। दैनिक जागरण की सुर्खी है। स्क्रीन का घातक नशा, भारतीय रोजाना गवा रहे 141 करोड़ घंटे, भारत में 66 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे, राजस्थान पत्रिका में है। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में दिखेगी राम राज्य की झलक, पंडाल में भगवान राम और हनुमान की होगी मूर्तियां, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने राजस्थान में हाड़ोती के प्रसिद्ध डोल मेले की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, झिलमिल रोशनी, झूलों की रफ्तार, डोल मेले में उमड़ रहा हाड़ोती।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया, नए अध्यक्ष की नियुक्ति। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का विरोध किया, पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। त्रिवेणी में आज बातें पशुओं की। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वर्षों से मनुष्य का पशुओं के साथ कुछ अलग ही नाता रहा है। जहां कुछ पशु वनों और गहन जंगलों में ही वास करते रहे हैं, वहीं कई जानवरों ने मनुष्य का साथी बनकर उनका हाथ बटाया है, जैसे कि गाय, बैल, घोड़े जैसे जानवर हमें अलग अलग तरह से सहायता करते रहे हैं। पुराने समय में हमारे आवागमन और कृषि के लिए हमने इनकी मदद ली है। मनुष्य केवल इनसे सहायता ही नहीं लेता रहा है, बल्कि इन पशुओं को अपने साथियों के रूप में पाता है। वैसे एक समय था जब गाय, बैल, घोड़े के अलावा बंदर, भालू और हाथियों को भी पाला जाता था और वो साथी होने के साथ साथ जीविका का साधन भी बनते थे।

एक लंबे समय तक मनुष्यों ने पशुओं को अपनी आजीविका का साधन बनाकर उनका दोहन भी किया। वहीं सर्कस और सड़कों पर तमाशों के जरिए भी कई ऐसे जीवों को उनके आवास से दूर किया जिनके लिए मनुष्यों की बस्तियों में रहना उचित नहीं था। जल्द ही हम पशुओं के अधिकारों को लेकर जागे और हमने पशुओं के लिए उनके अनुकूल वातावरण और आवास बनाए। इससे पशुओं और मानवों के बीच एक संतुलन कायम हुआ। इस तरह हम पशुओं के मित्र बन गए और पशुओं ने तो अपनी मित्रता सालों साल निभाई है, खासतौर से पालतू पशुओं ने, जैसे कि बिल्ली।

जब भी पालतू पशुओं की बात करते हैं तो बिल्ली के साथ साथ श्वान यानी कुत्तों का उल्लेख भी आता है। कुत्ते को एक वफादार जानवर कहा जाता है। जब भी वो किसी व्यक्ति के परिवार या जीवन का हिस्सा बन जाता है तो उसका साथ अंतिम समय तक निभाता है। कुत्तों की वफादारी और उनके सूंघने की शक्ति का ही परिणाम है कि वो ना सिर्फ आम घरों में हमारे साथ होते हैं बल्कि पुलिस और सेना में भी भर्ती होकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। केवल इन्हें पालना ही हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है बल्कि इनकी सही देखभाल, खान पान का ख्याल रखना और समय समय पर जरूरी चिकित्सा और टीकाकरण करवाना भी आवश्यक है। तभी तो हमारे ये साथी हमारे साथ मजे से खेलता नजर आएगा।

आज विश्व पशु दिवस के मौके पर पशुओं के संरक्षण और उनकी प्रजातियों की सुरक्षा तो सुनिश्चित कीजिए ही, साथ ही उनके प्रति होने वाली क्रूरता को रोकने का प्रण भी लेते हुए एक बेहतरीन मनुष्य बनने का संकल्प लें। इसी संदेश के साथ आज की त्रिवेणी से दीजिए अपनी दोस्त निहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: तनु वेट्स मनु फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी लैम्बर हुसैनपुरी और साथियों की, राजशेखर गीतकार थे और संगीतकार थे कृष्णा।
1: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से। मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
1: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: देखो सवेरा पूछे जाना है कहाँ, ऊंचाई फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी जावेद अली, दीपाली साठे और मधुवंती बागची के इरशाद का मिलके ये बोलते, और अमित त्रिवेदी का संगीत था।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम।

सुनील लोधी की आवाज में हनुमान अंश फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। ये रचना एक पारंपरिक रचना आपने अभी सुनी। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं इस समय। आइए इस कार्यक्रम में लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आप सभी का।
1: ओ दिल है रांझणा मेरा जिद से अड़ी आई ओए, दिल है रांझणा किस्मत से लड़ी आई ओए, ओ दिल है रांझणा मेरा जिद से अड़ी आई ओए, दिल है रांझणा किस्मत से लड़ी आई।

तेजस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। रश्मित कौर और शाश्वत सचदेव की आवाजें थी। कुमार के बोल थे, संगीत शाश्वत सचदेव का था। यह है बार बार देखो फिल्म का गीत। आवाजें हैं अरमान मलिक और नीति मोहन की। कुमार के बोल हैं और अमाल मलिक का संगीत।

विश्व अंतरिक्ष सप्ताह साथियों मनाया जा रहा है, वर्ल्ड स्पेस वीक। हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाने वाला दुनिया का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है। ये मानवता के सपनों की उड़ान का उत्सव है। अंतरिक्ष हमेशा से ही हमारे लिए रहस्यों का महासागर रहा है। ये 7 दिन पूरी दुनिया को एक धागे में पिरोता है। जब एक बच्चा किसी कोने में बैठकर चांद को निहार रहा होता है, ठीक उसी समय दुनिया के दूसरे कोने में कोई वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को तलाश रहा होता है। ये सप्ताह हमें याद दिलाता है कि भले ही हम सीमाओं में बटे हों, हमारा आसमान एक ही है, हमारी धरती एक ही है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाए जाने का उद्देश्य लोगों को अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के महत्व के प्रति जागरूक करना है, बच्चों और युवाओं में विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति जिज्ञासा पैदा करना ताकि वे इसके बारे में और सीख सकें। इसलिए भी मनाया जाता है जिससे हमारी धरती और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष के ज्ञान का सही इस्तेमाल करना हो। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के मनाए जाने का ये भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूती प्रदान करना है। आंतरिक्ष शिक्षा, अनुसंधान और जन जागरूकता के कार्यक्रमों में दुनिया भर के देशों और अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हमें यह संदेश देता है कि आकाश की कोई सीमा नहीं। जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच के साथ हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास करते रहें।

मोहित चौहान और अलीशा मेंडोंसा की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत अभी आप सुने थे। संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय। फिल्म था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चित्रलोक कार्यक्रम सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। तो चलिए एक और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।

फिर स्वागत है आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए परम सुंदरी फिल्म का ये गाना।

0: सचिन जिगर और विशाल मिश्रा अमिताभ भट्टाचार्य की आवाजों में ये गीत आपने परम सुंदरी फिल्म से सुना।
1: एक विलक्षण गायक
2: अरे ओरे
1: संगीत के साधक
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
1: वो हैं संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
4: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
4: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला ओ गड्ड लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: देवकी पंडित की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे संदीप नाथ और संगीतकार थे संदीप चौटा। फिल्म का नाम था साहिब बीवी और गैंगस्टर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम। इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम में। अब वक्त है कि एक बहुत छोटा सा ब्रेक लिया जाए। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।

दिल्ली सिक्स फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें थी रेखा भारद्वाज और साथियों की। आज है दोस्तों वर्ल्ड एनिमल डे, विश्व पशु दिवस हर वर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की 2026 की ये थीम है, उनकी आंखों से दुनिया देखें। इस साल की ये थीम हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि बदलते पर्यावरण और इंसानी दखल के बीच पशु पक्षी इस दुनिया को कैसे महसूस करते हैं। इनकी मदद करने के लिए विश्व पशु दिवस मनाने का ये उद्देश्य दुनिया भर के पशुओं के जीवन को बेहतर बनाना और उनकी देखभाल करना आदि, इनकी मदद करने के लिए हमें बहुत अधिक प्रयास नहीं करना, बस छोटे छोटे कार्यों से उनकी सहायता की जा सकती है, जैसे पक्षियों के लिए अपने छत या बालकनी में दाना पानी।

बनी रखें, गाड़ियों को संभाल कर चलाया जाए ताकि उसकी चपेट में ये ना आ जाएं। यदि कोई पशु पक्षी घायल दिखे अपने आसपास तो किसी पशु संस्था या चिकित्सक से संपर्क करें। पशु पक्षियों के साथ दया करुणा और प्रेम का व्यवहार करें और उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति लें। पशु पक्षी हमारी भाषा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं हमसे अपेक्षा रखते हैं और हमें करना भी चाहिए। आइए संकल्प लें इस विश्व पशु दिवस पर इन बेजुबान जीवों के प्रति हम संवेदनशील रहेंगे, ये न केन प्रकारेण इनकी रक्षा करेंगे ताकि ये पशु पक्षी भी सुरक्षित जीवन जी सकें और हम भी। ये गाना आइए अब सुनते हैं। ये गाना एक था टाइगर फिल्म से है।

0: एक था टाइगर फिल्म का गीत, आपने अभी सुना, आवाजें तरन्नुम मलिक और मोहित चौहान की, कौसर मुनीर के बोल थे, सुहेल सेन का संगीत था।
1: भारती पर बहती है सुरों की सरिता, घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

लुटेरा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोनाली ठाकुर की आवाज से अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे अमित त्रिवेदी का संगीत था। आपका दिन शुभ रहे, आप सुखी हो, समृद्ध हो, इसी कामना के साथ ही आज सविता सिंह को चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

30 अगस्त सन 1901 को विभाजन पूर्व के रावलपिंडी में जन्मे शंकर दास केसरीलाल कालांतर में बने भारतीय सिनेमा के एक बेहद सफल और लोकप्रिय गीतकार शैलेन।

शैलेंद्र का जन्म बेशक रावलपिंडी में हुआ, लेकिन वो पले बढ़े मथुरा में। हालांकि उनके पुरखों का घर आरा जिले के अख्तियारपुर में था। स्कूल के दिनों में शैलेंद्र की घनिष्ठता हो गई इंद्र बहादुर खरे से। मथुरा के उन दिनों में शैलेंद्र और इंद्र बहादुर रेलवे कॉलोनी के नजदीक मौजूद एक तालाब के किनारे की शिला पर बैठकर कविता रचना सीख रहे थे। बहरहाल समय ने करवट ली और सन 1947 के आसपास मुंबई के माटुंगा स्थित रेलवे वर्कशॉप में रोजी रोटी के लिए अप्रेंटिस के रूप में शैलेंद्र की नौकरी की शुरुआत हुई।

शैलेंद्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और इप्टा के एक सक्रिय सदस्य थे। उनकी कविताओं में जोश और जुनून था, मजदूरों, कामगारों, किसानों के लिए गहरा सरोकार। उन्हीं दिनों मुंबई में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शैलेंद्र ने अपनी एक मार्मिक कविता पढ़ी। राज कपूर भी मौजूद थे। शैलेंद्र की कविता ने राज कपूर पर गहरा असर डाला और उन्होंने शैलेंद्र से उनकी उस कविता को अपनी फिल्म आग में इस्तेमाल करने के लिए बात की। लेकिन शैलेंद्र उन दिनों सिनेमा के बहुत करीब नहीं थे। उन्होंने राज कपूर को कविता देने से मना कर दिया। आग के रूप में अपनी रचनात्मक प्रतिभा की अग्नि प्रज्वलित कर राज कपूर अब सिने प्रेमियों को भिगोना चाहते थे अपने निर्देशन की बरसात से। वो शायद 1949 का बरस था और शैलेंद्र पैसे की तंगी से गुजर रहे थे। हालात कुछ ऐसे थे कि शैलेंद्र को विवश होकर राज कपूर के पास जाना पड़ा। राज कपूर प्रतिभा के कद्रदान थे। गीतकार के रूप में जो हीरा शैलेंद्र के भीतर मौजूद था उसे उन्होंने परख लिया था। राज कपूर ने शैलेंद्र को फिल्म बरसात के दो गीत लिखने के लिए 500 रुपए दिए। उनमें से एक था फिल्म बरसात का ये शीर्षक।

शैलेंद्र भाषा के धनी थे, शब्द और भाव संपदा के सम्राट थे। शब्दों का उनका संधान ऐसा था कि बहुत सरल और साधारण शब्दों में भी वो असाधारण बात कहना जानते थे।

शैलेंद्र के गीतों में कभी प्रेम और विरह के कोमल भाव खिल उठते हैं तो कभी उनकी गूंज एक नारे की तरह सुनाई पड़ती है जिसमें इस देश के आम आदमी की पीड़ा बोलती है। शैलेंद्र का अपने आसपास की दुनिया से, दुनिया के बदलते घटनाक्रम से, बदलते राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात से और उन हालात के असर से गहरा सरोकार था। शैलेंद्र के गीत हमारे स्नेही संगी साथी बन जाते हैं, हमसे हमारी पीड़ा और हमारे उल्लास को बांटते हैं, हमसे संवाद करते हैं।

आज हिंदी सिने गीतों का संसार बदल चुका है। कविता और गीत का धर्म शिल्प सब बदल चुका है और इसीलिए इस दौर के ज्यादातर गीतों की ध्वनियां स्मृति पटल से मिट जाती हैं। शैलेंद्र और उनके समकालीन गीतकार यदि आज भी लोकप्रिय हैं, तो उसके पीछे एक गीतकार के रूप में न केवल उनकी कविता का सौंदर्य है बल्कि उनका सरोकार भी है। शैलेंद्र के फिल्मी गीत साहित्यिक गीतों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। आमो खास सबको पसंद हैं शैलेंद्र के।

के गीतकार के रूप में शैलेंद्र का नाम राज कपूर, मुकेश, शंकर जयकिशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन शैलेंद्र की रचनात्मक प्रतिभा का वैविध्य और सौंदर्य अन्य संगीतकारों के सानिध्य में भी बेमिसाल बन पड़ा है। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार सचिन देव

शैलेंद्र को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्में और गीत हैं सन 1958 फिल्म यहूदी।

0: शैलेंद्र ने पाया सर्वश्रेष्ठ गीतकार का और मुकेश ने पाया सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म अनाड़ी।
1: सब कुछ

सन 1958 लता जी को जिस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था वो भी शैलेंद्र जी ने ही लिखा था। वो था फिल्म मधुमती का

0: भी जाना।
1: इस फिल्म के निर्माण के दौरान शैलेंद्र को आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। शैलेंद्र सदमे से उबर नहीं पाए और 14 दिसंबर सन 1966 को 45 बरस की आयु में हमें अपने अनमोल गीतों की संपदा सौंप कर चले गए महायात्रा पर। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शैली शैलेंद्र ने उनके इस अधूरे गीत को पूरा किया।

शैलेंद्र के जाने के बाद उनकी फिल्म तीसरी कसम को 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। गीतकार शैलेंद्र ने हमें वो गीत दिए जिन पर समय की धूल कभी नहीं जम पाएगी। उनके गीत जन गीत हैं, जन जन के होठों पर थिरकने वाले गीत, जन जन के हृदय में गूंजने वाले गीत, जिनमें हम खोजते हैं प्रेम, शांति, आनंद, खोजते हैं हाथ से छूटा हुआ बचपन, जवानी और बिछड़े हुए लोग। बचपन

0: आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, शोध स्वर और आलेख कमल शर्मा का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ हैं।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ।

0: विविध भारती के फेसबुक पेज पर विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में एक बजे। विविध भारती आपका जीवन संगीत। हाय हाय,
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: Science, lights, sound, camera, action.
1: La la la la la la la la la la la la la la la.
2: दोस्तों नमस्कार, एक गायिका जिनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ।

0: पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मकिनी जोशी की बातचीत। आइए सुनते हैं तीसरा और अंतिम भाग।
1: सुषमा जी, आज फिर एक बार आपका हम स्वागत करते हैं और चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं।
2: मुझे लगता है कि अब सुषमा श्रेष्ठ के उस दौर से निकलकर मैं पूर्णिमा जी से बात करने अब आना चाहती हूँ, है ना?
3: तो स्वागत है आप।
2: मुझे अब अपने आप को ये देखना है कि मेरे सामने पूर्णिमा बैठी है जो एक इस तरह के गाने जिन्होंने गाए हैं और हमें नचा दिया है। तो सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने का ये सफर क्या था, कैसा था और क्यों था?
3: देखिए, सुषमा श्रेष्ठ एक बाल गायिका के बतौर एक बाल गायिका ही जानी जाती थी। पता है मंदाकिनी जी, मैंने जब वो गाना गाया था ना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तब मैं 18-20 के बीच, अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा है वो, लेकिन चोपड़ा साहब की जिद थी कि नहीं, मुझे तो सुषमा ही चाहिए। रविंद्र जैन जी ने बुलाया था,
2: तो जब तक थोड़ा पूर्णिमा में कन्वर्ट
3: नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ट्रांसमिशन हुआ क्यों। मुझे इतना ऑड लगता था ना मंदाकिनी जी, मुझे बहुत अटपटा सा लग रहा था कि क्या ये मम्मी को अंदर बुलाना चाहिए, इतनी बड़ी मैं ना, बहुत ऑड लग रहा था मुझे। तो इसका कुछ तो करना चाहिए, पर क्या करें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारी हमारे परिवार में, हमारा जो घर, जिस जिन संस्कारों से मैं बड़ी हुई, हम बिल्कुल ना वैसे फिल्मी नहीं है, बहुत सीधे साधे लोग हैं, मिडिल क्लास, और मुझे गर्व है इस बात का। अभी भी मैं मिडिल क्लास ही हूँ, वो दादर का घर ही मुझे पसंद आता है, शिवाजी पार्क। खैर, तो इसके बाद 10 साल का एक बहुत लंबा एक गैप पाया, क्योंकि ना मैं बच्चों में मेरी गिनती हो रही थी ना बड़ों,
2: और ये दौर बड़ा मुश्किल होता है कलाकार के लिए,
3: बहुत मुश्किल। फिर शादी भी हो गई, मेरा बेटा पैदा हुआ बड़ा, उसके बाद मेरा एक दौर जिंगल्स का शुरू हुआ, रेडियो स्पॉट्स, है ना, नाथन अंकल हुआ करते थे, वैद्यनाथन जी, जो फिर डैडी के बहुत अच्छे दोस्त, वो मुझे बुलाने लगे। करते करते फिर दिन में 5-6 जिंगल्स, 6-7 जिंगल्स, में जिंगल क्वीन, मैं, कविता दीदी, हम मिलकर कुछ वो गाती थी, कुछ मैं। करते करते वक्त बीतता गया, फिर एक दौर आया, आपको अगर याद होगा, कवर वर्जन्स का।
2: जी बिल्कुल।

0: सतगुरु, तो ये तो उनका एक सिस्टम ही था, है ना। तो उन लोगों ने ये आइडिया इसमें डाल दिया, टिप्स कंपनी वालों ने, वो भी सिंधी, कि हम फिल्म वो ही हम करेंगे, फिल्मी गानों पे हम गणपति के भजन, जैसे रमैया वस्तावैया, तो उस पे किया मोरया गजानना, मोरया गजानना, सुख दे सकल जना, ऐसे।
1: जी
0: अब वो कैसेट उसके रिलीज के से जरा पहले उनकी जितनी टीम थी, जो भी, उन सबको ऐसा लगा कि अब तो सुषमा श्रेष्ठ नाम देने से कहीं लोग ये ना समझे कि ये बच्चों के गानों का एल्बम है।
1: जी जी
0: होता है, हमें ये पता नहीं चलता मंदाकिनी जी, पर वो लोग तो मार्केट स्टडी करते हैं ना, तो क्यों ना हम तुम्हें एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस करें। सुषमा श्रेष्ठा इस नाम को हम नहीं रखेंगे, तुम्हें एक नए नाम, नए इमेज के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पूर्णिमा नाम मैंने ही सजेस्ट किया था, क्योंकि ये मेरे जन्म पत्रिका
1: जी
0: उसमें मेरा नाम पूर्णिमा, तो मैंने कहा पूर्णिमा कैसा रहेगा, सबको अच्छा लगा। अब सिर्फ वाद विवाद इस बात पे हुआ कि पूर्णिमा श्रेष्ठा रखें या क्या, तो वहां मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं, क्योंकि वो चाह रहे थे पूर्णिमा श्रेष्ठा, क्यों बाकी जो टीम था
1: ठीक
0: उनका,
1: है,
0: कि सुषमा श्रेष्ठा पूर्णिमा श्रेष्ठा,
1: श्रेष्ठ
0: एकदम से क्लिक हो
1: है।
0: जाएगा।
1: हाँ
0: पर ठीक है, अब ईगो हैसल्स जहां आ गए उसका तो कोई इलाज ही नहीं मंदाकिनी जी।
1: हाँ
0: तो रमेश तो मेरा भाई है, जो रमेश तौरानी जी हैं,
1: जी
0: मैं कई सालों से उससे राखी बांध रही। ने कहा छोड़ो सुषमा, छोड़ पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करने का, जो है बाबू अपन ऐसे ही करेंगे। तो पूर्णिमा नाम वैसे करके उन्होंने बहुत, मैं कहूंगी टिप्स ने उस वक्त इतना मुझे, मतलब स्क्रीन में दो पेज का कवरेज इंट्रोड्यूस उन्होंने ही मुझे, अपनी पहली फिल्म उन्होंने जो बनाई थी बाहरों की मंजिल, राम लक्ष्मण जी का म्यूजिक था वो गाना, अगर आपको मिले प्लीज बजाइए गाना, अमित दा के साथ गाना था, उत्तम भैया ही अरेंजर थे।
1: जी
0: तुम ताना ना ना ताना तर तर ये दिल है दीवाना,
1: जी

0: रूप में हमारे सामने आई थी, और
1: जी
0: बहुत समय बाद हमें पता चला था कि अरे ये तो सुषमा श्रेष्ठा है जो पूर्णिमा के नाम से गाती हैं। तो बाल गायिका से वयस्क गायिका के रूप में खुद को दोबारा स्थापित करने में सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या थी?
1: अपनी एक जगह बनाना, क्योंकि मैं जब आई मंदाकिनी जी तब मुझसे पहले चार पांच सिंगर्स एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी, अनुराधा दीदी, कविता दीदी,
0: अलका
1: अलका,
0: याग्निक जी,
1: साधना।
0: साधना सलगम जी,
1: तो मुझे अपनी एक पहचान बनानी थी।
0: बिल्कुल
1: तब मैंने कहा ना, वो बचपन से ही वो खेला कर रहा था मेरे दिमाग में, और मैंने सोचा बहुत स्ट्रैटेजिक एक मूव था ये, एक ऐसे नहीं एक चांस हो गया। मैंने सोचा कि आशा जी के गाने तो मैं गाती ही हूं, तो आशा जी, शमशाद बेगम जी और गीता दत्त जी को, उनकी तीनों की स्टाइल्स को मिलाकर मैंने कोशिश की कि मैं अपनी एक स्टाइल बनाऊं।
0: बनाओ।
1: एक हद तक मैं कामयाब रही उसमें
0: बहुत हद तक आप कामयाब रही, एक हद तक
1: तो
0: नहीं। आपने कहा ना कि जो बचपन में आपने गाना गाया था उस टोन को आपने ध्यान रखकर अपनी
1: जी
0: उस आवाज को बनाए रखा,
1: जी
0: जो तुतु तु तु तु
1: हाँ
0: तारा
1: जी
0: में
1: हाँ
0: हमें
1: जी
0: दिखाई
1: बिल्कुल
0: दी थी, है ना?
1: बिल्कुल
0: और उसके
1: बिल्कुल
0: बाद आपके हर गाने में लगभग वो एक गले की एक अलग सी आती है, जैसे मैं क्या कहूँ, और वो बहुत अट्रैक्ट करती है कि ये
1: क्यों,
0: पूर्णिमा जी है, ये पूर्णिमा है।
1: ये बात मैं, मुझे
0: हाँ
1: सुनकर आज बहुत अच्छा लगा।
0: बस
1: मंदाकिनी जी, ये अबू साहब ने, मेरे
0: जी
1: उस्ताद ने
0: जी
1: सिखाया था
0: जी
1: कि आप कितने भी मतलब रागधारी सीख कर आओ, कुछ भी करो, 10 आवाजों में वो एक आवाज जिसे आप पहचान
0: पहचान ले।
1: सको कि ये फला की आवाज है, वो आवाज जो पहचान जाता है, आपकी श्रोता, आपके श्रोता
0: जो भी
1: उस आवाज को पहचान लें,
0: संगीत जो
1: तो
0: प्रेमी
1: आप
0: हैं
1: समझ लो कि आप कामयाब।
0: सफल हो गए
1: तो
0: हैं।
1: हाँ, इसमें मैं कहूंगी कि मैं कामयाब रही हूं,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: क्योंकि मेरी आवाज कहीं भी पहचानने में आ जाती है।
0: एक जो गले
1: बिल्कुल
0: में एक अलग
1: जी
0: ही
1: जी
0: रेंज
1: जी
0: आपकी आती है उन गानों को गाने में, वो
1: जी
0: पूर्णिमा ही गा
1: मानती
0: सकती
1: हूं
0: है,
1: मैं,
0: वो पूर्णिमा ही गा
1: ये
0: सकती
1: बात
0: है।
1: मैं मानती हूं, नहीं तो कुदरत मुझे माफ नहीं करेगा।
0: बिल्कुल। तो एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जो मीठी आवाज से लेकर 90 के दशक के कमर्शियल ट्रैक तक आपकी आवाज के टेक्सचर में जो बदलाव आया था, उसे आपने कैसे साधा था, ये थोड़ा हम जानना चाहेंगे।
1: टेक्सचर एज इन आपको मतलब एक बाल गायिका से मेच्योर्ड सिंगर।
0: हाँ
1: मंदाकिनी जी, मुझे लगता है मेरी आवाज कभी मेच्योर हुई ही नहीं, और शायद वो ही मेरा एक यूएसपी है।
0: जी, लेकिन वो कमर्शलाइज होती, थोड़ा सा एक
1: हाँ,
0: अलग तरह से
1: एक
0: मोल्ड हो गई।
1: मैं कहूंगी आवाज में एक गहरापन तो नहीं बोलूंगी, एक ब्रॉडनेस आई। यस,
0: चुलबुलापन
1: वो,
0: जो आवाज में
1: हाँ,
0: आपके
1: वो एक
0: था।
1: वक्त के साथ आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चुलबुलापन तो पहले भी था, लेकिन पहले क्या संकोच करती थी, संकोच बहुत
0: हाँ
1: करती
0: हाँ
1: थी, क्योंकि बड़े दिग्गजों के साथ काम किया, ये तो एहसास था कि भाई ये कौन है। हालांकि ये एहसास नहीं था शायद कि ये कौन है, ये नहीं था, पर ये नहीं, ये
0: वो
1: कुछ
0: बाल बाल मन था
1: है ना।
0: इसलिए। हाँ
1: लेकिन जहां तक आप अगर मेरे वॉइस का अदरवाइज टेक्सचर की बात करेंगे, तो अभी अभी भी मैंने एक गाना गाया है एक मराठी फिल्म के
0: जी
1: लिए,
0: जी
1: उत्तम सिंह जी, उत्तम भैया का म्यूजिक है उसमें, कब्बशी फिल्म का नाम है। तो मुझे मुझे गर्व ही होता है इस बात का कि मुझे कॉल कर कर के लोग ये कहते हैं कि तुम तो अभी भी 30 साल की तुम्हारी आवाज लगती है।
0: जी
1: तो टेक्सचर आज सच नहीं बदला। हाँ, लेकिन क्या होता है, उम्र के साथ हमारा शरीर जैसे फैलता है ना, तो हमारे वोकल कॉर्ड्स भी तो फैलते हैं।
0: जी
1: तो वो
0: बिल्कुल।
1: थोड़ा सा फैलाव, थोड़ी सी गहराई और जरूर आ गई आवाज में। यस, और चुलबुलापन आप जिसे कह रहे हो ना मंदाकिनी जी, वो तो बहुत एक सोची समझी साजिश थी
0: आपकी
1: प्रोफेशनल
0: तरफ से
1: प्रोफेशनल साजिश थी कि
0: जी
1: भाई
0: जी
1: मुझे ये करना पड़ेगा अगर मुझे अपनी एक अलग पहचान करनी है।
0: बनानी
1: तो
0: है
1: जी
0: तो एक ऐसा प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है कि क्या कभी पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठ से बात करती है, जब उसे पीछे छोड़ आई है और बहुत आगे आ गई है, बहुत आगे, तो ये दोनों सखियां क्या बात करती होंगी?
1: सुषमा से पूर्णिमा यही कहती है कि तुम पहले पूर्णिमा क्यों नहीं बनी तुम अगर पहले पूर्णिमा बनती तो तुम पंचम दा को एक अलग, कैसे बोलूं, मुझे वो शब्द नहीं
0: जी
1: आ रहा,
0: जी
1: पर
0: जी एक अलग रूप से जी
1: रूप
0: पाती
1: से
0: उनके
1: जी
0: संगीत को।
1: पाती उनके
0: हाँ
1: संगीत को। यस, क्योंकि मैं आज जितना उनके संगीत को समझती हूं, शायद वो जो मुझे समझाना चाह रहे थे, सिर्फ उनके संगीत को नहीं, बहुतों के, जिन जिन लोगों के साथ

0: काम किया।
1: सुषमा से पूर्णिमा का जो सफर है, यानी क्या हुआ तेरा वादा जैसे इमोशनल गीत से लेकर तू तू तू तू तू तारा, ये जो एनर्जेटिक और डांस ट्रैक का जो गीत
0: जी
1: है, ये सफर आपके लिए कितना अलग था वहां तक पहुंचने का?
0: वैसे म्यूजिकली अगर आप पूछें तो अलग नहीं था, अगर आप निजी तौर पर पूछें तो बहुत कठिन, बहुत जिल्लतें सहनी पड़ी, बहुत कैसे बोलूं, पछाड़ खाई। वो लोग जो एक वक्त सुषमा श्रेष्ठा के साथ काम करने के लिए तड़पते थे, वो सुषमा श्रेष्ठा से आंखें चुराने लगे, है ना। हाँ, ये भी देखा, ये दौर भी देखा है, मतलब देखकर अनदेखा सा करना, है ना, क्योंकि मेरे आगे बहुत से, मेरे पीछे वाले मेरे आगे निकल चुके थे, है ना। तो हम कभी अगर साथ किसी स्टूडियो में जिंगल गा रहे हैं, या अगर ऐसा इक्का दुक्का कोई गाना मुझे मिल गया और हम साथ गा रहे हैं या साथ मिले, वो सिंगर हम सिंगर, तो मुझसे बात ना करना, उन्हीं से बात करते रहना, क्योंकि वो ज्यादा कामयाब थी उस वक्त, है ना।
1: जी
0: तो ये सारी जिल्लतें सही, लेकिन एक बात बोलूं मंदा के निजी, बुरा लगकर भी मैंने उसमें से सीख सीखी,
1: जी
0: क्योंकि बचपन में भी ये था कि जब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पहला गाना जब गाया तो एक वो आर्टिस्ट हैं जिनसे जिनसे इसी तरह का बर्ताव सहना पड़ा, कि बच्चे गा रहे हैं, उन वो पहचान करा रहे हैं सब लोग की, तो उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं,
1: जी
0: लेकिन मैं इतनी सेंसिटिव थी तब से। और अब जब मैंने ये सब कुछ सहा पूर्णिमा बनने से पहले, तो अब एक कसम खाई थी कि मेरे बाद आने वाले बच्चों के साथ मैं कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी,
1: बिल्कुल,
0: मैं
1: ये
0: हमेशा उनकी पीठ थपथपाऊंगी,
1: जी
0: उनको बहुत प्यार दूंगी, और वो कुछ भी हो पर उनके होने का एहसास
1: उनको
0: उन्हें
1: दिलाऊंगी।
0: दिलाऊंगी,
1: बहुत
0: वो
1: बड़ी
0: बहुत
1: बात,
0: जरूरी है,
1: ये एक बड़ा मन ही ये
0: वो
1: बात
0: बहुत
1: कह
0: जरूरी
1: सकता
0: है,
1: है कि मेरे साथ जो बीता मैं आगे आने वाली पीढ़ी के साथ
0: बिल्कुल
1: वैसा बिल्कुल नहीं
0: कभी नहीं।
1: करूंगी। पूर्णिमा जी, एक गीत और सुन लेते हैं आपकी पसंद।
0: शाम है धुआं धुआं।

आरजू झूठ है, कहानी है। आरजू का फरेब खाना नहीं, खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: कभी।
1: तो पूर्णिमा बनते ही पहला गाना यही था, तू तू तू तू तू
0: पहला तो
1: तारा।
0: वो था तुम ताना नाना
1: जी
0: ताना,
1: जी
0: फिर आया बरसात में जब आएगा सावन का महीना। ऐसा है मंदाकिनी जी, आप पूछ रही थी कि सुषमा श्रेष्ठा से पूर्णिमा तक का जो एक सफर मेरा, वो 10 साल जो मैंने बेकारी में
1: जी
0: बिताए,
1: जी
0: तो वो ऐसे मैंने बेकार नहीं जाने दिए। वो 10 साल मैं बहुत सोचती थी और बहुत स्ट्रैटेजीज करती थी कि मुझे, और पता नहीं क्यों मुझे ये एक खुद एतमादी थी हमेशा से कि मैं फिर से आऊंगी, दिस
1: जी
0: इज नॉट द एंड, मैं आऊंगी, किसी ना किसी तरह मुझे एक मौका फिर से मिलेगा जरूर। क्योंकि मेरी तो पूरी जिंदगी ही एक, आप अगर कहें तो, एक अजूबा ही रहा है ना।
1: जी
0: पिताजी के देहांत के बाद 11 अप्रैल को उनकी उनका देहांत हुआ, 12 अप्रैल को मेरा एक शो था बहुत बड़ा, वहां जाकर एक 10-11 साल का बच्चा जाकर गाए और ऐसा गाए कि लोगों को रुला दे, है
1: बिल्कुल
0: ना। तो
1: बिल्कुल
0: ये तो एक एक कुदरत का करिश्मा ही है, मेरी पूरी जिंदगी ही, मैं हमेशा कहती हूँ, एक करिश्मा रहा। तो मुझे, मैं जानती थी कि कुदरत इतनी आसानी से तो मुझे लुप्त नहीं होने देगा, है ना।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो उसके बाद मैंने माँ का गाना जब गाया, तब इतना मैं पॉलिश्ड नहीं थी, इतनी पॉलिश्ड नहीं थी, मेरे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। लेकिन उसके बाद वो गाना डेविड धवन जी ने सुना कहीं, और उन्होंने जब मांग की कि मुझे ये सिंगर चाहिए मेरे फिल्म के लिए, तो तुत्तू तारा के लिए बुलाया गया,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो उसमें फिर मैंने तुत्तू तु तु तु तारा के वक्त मैंने थोड़ा और अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश की। हालांकि गाना पहले रिकॉर्ड हुआ था वो, मैं हूँ गांव की गोरी बाबू रंग लहरे वरा मुझको भी चलना सिखा, वो वाला। तो उसमें मैंने सोचा कि जूही जी के लिए है, तो उनका थोड़ा सा वो एंग्लिसाइज टोन है ना, तो आप अगर ध्यान से गाना सुनेंगे ना, तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट वहां
1: जी
0: किए,
1: जी
0: मैं हूँ गांव की गोरी बाबू रंग लहरे और गीता दत्त जी का स्टाइल, जरा मुझको भी चलना सिखा दे तू। तो वो बहुत कामयाब
1: कामयाब
0: रहा।
1: हुआ।
0: फिर दूसरा गाना तुत्तू तारा आ गया, उसमें और थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो कर दो हमें माफ तुम कर दो ना, वो सब, तो वो कामयाब हुआ। तो
1: जी
0: मैंने सोचा अब इसी इसमें इसी को पकड़ के हमको चलना है।

0: देखिए, हर एक सिंगर के अपने प्लस माइनस पॉइंट्स होती
1: बिल्कुल।
0: है ना, कोई माने ना माने।
1: हाँ,
0: मैं समझ गई थी कि मेरा प्लस पॉइंट, मेरा यूएसपी है मेरा मेरे एक्सप्रेशंस। मैं गाने में जो एक्सप्रेशंस देती हूँ और दे सकती हूँ, वो शायद ही कोई दे सके।
1: जी
0: सॉरी, मैं
1: नहीं,
0: खुद से ये
1: बिल्कुल
0: कह रही हूँ
1: जी,
0: आज,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इतने सालों बाद इतना तो जायज है। तो बस मैंने उसी पे काम किया। वो मेरा जो एक स्ट्रेंथ मेरी थी, मेरा प्लस पॉइंट था, उसी को लेकर मैं आगे चली। फिर तो बहुत अच्छे गाने मिले। तू मेरा हीरो नंबर वन बजाइएगा
1: अरे
0: जरूर,
1: क्या
0: शाम है धुआं धुआं,
1: बात है, क्या
0: वो तो
1: बात।
0: मेरा सबसे ऑल टाइम फेवरेट, और मेरे श्रोताओं का भी। चने के खेत में, चने के खेत में मुझे बताया गया कि माधुरी जी के लिए है,
1: जी
0: तो उनका उनकी डिक्शन बहुत साफ है,
1: माधुरी
0: क्लियर
1: जी
0: जिसे
1: की।
0: हम कहते हैं। और हमेशा एक गाने में एक्सप्रेशन, तो क्वीन नहीं, महारानी है वो, लेकिन उनके सॉन्ग पिक्चराइजेशंस में आप देखेंगे उनके उनके जो माउथ की प्लेसिंग है ना,
1: जी
0: वो एक अलग टाइप की होती
1: हाँ, बिल्कुल
0: है। वो मैंने नोट किया
1: नोट की।
0: था।
1: और फिल्म अंजाम का ये गीत चने के खेत में माधुरी दीक्षित के करियर का
0: हाँ,
1: सबसे बेहतरीन डांस नंबर्स में से एक बन जाएगा।
0: हालांकि उसके बाद मुझे नहीं मिले माधुरी जी के लिए गाने, लेकिन इस बात का मुझे गर्व होता है कि माधुरी जी जानती हैं, गाने डिलीट नहीं कर सकती हैं अपनी जिंदगी से और अपने परफॉर्मेंसेस से,
1: बिल्कुल सही कहा
0: है ना।
1: आपने। और
0: ये गाना उनके करियर का एक अहम हिस्सा है, जैसे मेरे मेरे करियर का भी। तो बस फिर गाने मिलते गए मंदाकिनी जी, फिर मैं
1: आगे बढ़ते गए और हम लोगों का दिल आप जीतती रही। और देखिए ना, हीरो नंबर वन,
0: जी,
1: बीवी नंबर वन, मैं तो रास्ते से जा
0: अरे
1: रही
0: बाप रे
1: थी,
0: बाप,
1: है ना, कुली नंबर वन, मतलब गोविंदा और करिश्मा कपूर की जो जोड़ी पर्दे पर दिखाई देती है।
0: हाँ, ये एक अजीब बात है कि
1: हाँ,
0: करिश्मा को मेरी आवाज,
1: गजब
0: इनफैक्ट
1: गजब।
0: काजोल को भी, वो मिस्टर लोवा लोवा, मुझे ये बताया गया कि अजय देवगन जी ने काजोल से पूछा कि तुम श्योर हो तुमने नहीं गाया ना
1: क्या
0: ये
1: बात
0: किसी
1: है।
0: और ने गाया ना, तुम पूर्णिमा जी ने गाया ना, तुमने तो
1: हाँ,
0: खुद नहीं गाया, मतलब इतने वो
1: हूबहू।
0: एक्सप्रेशंस,
1: हाँ, हूबहू
0: मैं खुद भी मतलब शॉक में
1: जी।
0: हूं।
1: और उसके बाद हीरो नंबर वन का गाना सुनना,
0: हाँ
1: कितना
0: बाप
1: तो,
0: रे,
1: मतलब उस गाने के बाद तो अगर पैर नहीं थिरके तो बेकार है, वो आदमी इंसान ही
0: उसमें भी
1: बेकार है।
0: देखिए
1: हाँ,
0: करिश्मा का एक अजीब, एक उनका कैसे बताऊं मैं, बोलने का एक तरीका ना, वो सिर्फ, मैंने कुछ लोगों ने मुझे चिढ़ाया भी उस पे, पर वो कमबख्त जानते ही नहीं है कि मैंने क्या किया है,
1: जी
0: छोड़िए। खैर, तो सोना कितना सोना, तो ये म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं सिखाते हमें, वो
1: हाँ,
0: हम पर छोड़
1: ये
0: देते हैं।
1: जी जी जी
0: सोने जैसा तेरा मन, हे सुन जरा सुन क्या कहते हैं दीवाने दिल की धड़कन, तुम मेरा तुम मेरा तुम मेरा, हाँ तुम मेरा हीरो नंबर वन।
1: क्या बात
0: तो ये
1: है।
0: सब हमारे इनपुट्स होते
1: जी
0: हैं,
1: बिल्कुल।
0: हीरो तुम मेरा हीरो, ये हमारी इनपुट्स होती हैं। सब सब मिलते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, सिंगर, इवन हमारे साजिंदे, तब जाकर एक गाना बनता है।
1: लेकिन एक गायिका

0: या गायक की खुद की जो IQ है उसका जो
1: बहुत कम था।
0: है ना, वो होता है कि वो जिस हीरोइन के लिए गाना गा
1: यकीनन
0: रही है
1: यकीनन
0: उसे पकड़े। मतलब
1: यकीनन
0: लगता है कि करिश्मा कपूर ही गाना गा रही
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल।
0: ये चीजें सबसे बड़ी गायिका को, एक कलाकार को आगे तक
1: यहाँ
0: ले जाती है।
1: कुदरत कुछ साथ देता है,
0: हाँ
1: पर कुदरत भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो खुद से कुदरत की तरफ अपना कदम
0: तो
1: बढ़ाते हैं,
0: आप
1: ये
0: कहें तो
1: मेरा
0: यही
1: मानना।
0: गाना सुन लिया जाए और थोड़ा थिरक
1: बिल्कुल
0: लिया जाए,
1: प्लीज
0: हमारे
1: प्लीज
0: श्रोता भी थिरक लेंगे। तो
1: प्लीज।
0: आइए सुनते हैं।

0: कई बार इसके चलते ये भी होता है, पूर्णिमा जी की शानदार आवाज और हिट गाने देने के बावजूद सिंगर्स को टाइपकास्ट कर दिया जाता है। तो आपको लगता है कभी कि आपको टाइपकास्ट किया गया या?
1: बिल्कुल, इसीलिए मैंने वो बात आपसे कही थी ना कि मैंने शुरुआत अपनी जिंदगी की 5-6 साल की उम्र में ऐसे इमोशनल गाने में गाती थी कि डैडी भी रोते थे। इतने मतलब मैं गाने को समझ कर गाती,
0: जी
1: ऐवे ही नहीं गाती थी। तो उस बच्चे को अगर आप आगे जाकर ऐसे ही गाने, ऑफकोर्स मैं आई एम वेरी प्राउड,
0: बहुत शानदार गाने,
1: वेरी प्राउड ऑफ ऑल द सॉन्ग्स दैट आई सैंग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ और भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता था। मुझे और अलग टाइप के गाने भी गवा सकते थे
0: जी,
1: और मैं उनको बखूबी निभाती, इसका मुझे पूरा यकीन है। पर ठीक है, इतना भी किसको मिलता है, और ये मैं दिल से कह रही हूँ,
0: जी, जी, जी,
1: इतना भी किसको मिलता है।
0: बिल्कुल। और इसी के चलते एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि एक 70 के दशक का चाइल्ड आर्टिस्ट का शानदार दौर और 90 के दशक

0: का आपका चार्ट बस्टर दौर,
1: जी
0: कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं कि जहां हम ये क्षोभ करें या कहीं हम दुख करें
1: जी
0: कि
1: जी
0: मुझे वो गाना मिल जाता
1: नहीं,
0: उस
1: मैंने ये
0: गायिका
1: दुख
0: का।
1: कभी किया भी
0: जी
1: नहीं मंदा
0: जी
1: के नीचे। जो होता है अच्छे के लिए
0: होता
1: होता है,
0: है।
1: और कुदरत जो करता है बहुत सोच। हम फिजिकल फॉर्म में, हम माता पिता होते हुए जब अपने बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं, तो वो तो जगत पिता है,
0: जी
1: जगत माता है वो, तो क्या वो हमारे बारे में नहीं सोचेंगे?
0: बिल्कुल
1: हमारा
0: बिल्कुल।
1: बुरा कभी नहीं सोचेंगे
0: और
1: वो?
0: उन्होंने सोचा भी,
1: बिल्कुल
0: तभी
1: बिल्कुल।
0: आज पूर्णिमा पूर्णिमा के नाम से जानी
1: बहुत
0: जाती है।
1: बहुत मुश्किल है मंदाकिनी जी,
0: बहुत
1: यहाँ
0: मुश्किल।
1: सेकेंड इनिंग्स मिलना, सेकेंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स, अभी भी गा रही हूँ।
0: जी
1: यहाँ तो आप आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड।
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल सही
1: आज
0: कहा
1: ये
0: आपने।
1: सोशल मीडिया में मैं बिल्कुल ही एक्टिव नहीं हूँ, मुझे होना भी नहीं, मुझे पसंद नहीं, फिर भी आप जैसे लोग इतनी इज्जत से बुला रहे हैं।
0: जी
1: जिस फिल्म का मैंने जिक्र अभी किया,
0: जी
1: मराठी फिल्म का कब्बशी, उसकी दो लाइन्स में महाराष्ट्र के मराठी ऑडियंस तुमच्यासाठी अगदी खास हे गाणं मी गाती आता। नवीन माझेत पिक्चर आहे कब्बशी, त्याच्यातलं दिसला बाई दिसला मला शोधून सापडला, कुठला
0: वाह
1: देव बाई पावला जीवच गही वरला, उरात धड धड वाढली ठोका सरा चुकला छो मंतर।
0: क्या बात है क्या बात
1: तो
0: है।
1: ये गाना मंदाकिनी जी, उस डायरेक्टर वैभव का जब कॉल आया, मैंने मना कर दिया। वो बोले उत्तम सिंह जी म्यूजिक देंगे, हमको वही फ्लेवर चाहिए, दिल तो पागल है। और बस मुझे यही था कि मैं जब फिल्म डायरेक्ट करूंगा आप ही से गवाऊंगा।
0: जी
1: पर मैंने कहा देखो भाई, अब मेरी उम्र 60 मैं क्रॉस कर चुकी हूं, अभी सितंबर में मैं 67 पूरा करूंगी। अभी
0: जी
1: ये एक साल पहले रिकॉर्डिंग हुई थी, तो मैंने कहा कि अब मैं उस सुर में नहीं गा सकती हूं, मेरे सुर मैंने नीचे किए हैं, और उत्तम भैया से मैं इतनी बेबाकी से नहीं बोल सकती कि भैया आप मेरे सुर में कंपोज कीजिए, इतनी बदतमीजी मैं नहीं करूंगी। बात वहीं खत्म हुई। फिर एक हफ्ते वो फोन करते रहा, मैंने मना किया। फिर कुछ 10-15 दिन के बाद फोन बजा और उसने कहा आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं। तो उत्तम भैया आए लाइन पे, बोले बेटा बाजा मेरे पास। वो मुझे हमेशा बेटा, बेटू बाजा मैंने है देखा, मैं बजा बाजा, मैं तुझे कॉम्पोजिशन सुना रहा हूं, तू मुझे बोल तेरा सुर क्या है, अब हम उसी सुर में ट्रैक बनाएंगे, पर गाना तो तुझे ही है, सवाल ही नहीं कि हम किसी और से ये गाना
0: गवाली
1: गवाएंगे।
0: क्या
1: तो ये
0: बात
1: कितनी
0: है।
1: बड़ी बात है, ये भाग्य मैं कहूंगी, ये किसको मिलता है? गाना आपका है, इसे और कोई टच नहीं करेगा। तो उन 100 गानों में वो एक गाना अगर मेरा है जिसे कोई छू नहीं सकता या नहीं छुएगा,
0: ये बड़ी बात है।
1: तो इससे बड़ा भाग्य क्या हो
0: क्या हो
1: सकता है
0: सकता है।
1: मंदाकिनी जी?
0: जी बिल्कुल
1: वो सारे 100 गाने एक तरफ और ये मेरा एक गाना एक तरफ,
0: बिल्कुल सही
1: है ना
0: कहा। तो एक मराठी गाना सुन ले,
1: जी।
0: बताइए।
1: बचपन में जब सुषमा
0: हाँ
1: श्रेष्ठा के नाम
0: जी
1: से, उस वक्त के लोग जरूर याद रखते होंगे, श्रीनिवास खड़े जी हमारे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर मराठी के, और शांता शेळके जी दिग्गज लिरिसिस्ट, उन्होंने लिरिक्स लिखे थे, और खड़े साहब ने तो मेरा बाल गीत सबसे पहला एल्बम HMV ने
0: जी
1: उसका एक गाना, उसके कई रिमिक्सेस बने हैं, पर आज सबको बोलूं कि ओरिजिनल मेरा है।
0: जी
1: किल बिल पक्षी बोलती झुड़ झुड़ झुड़ झुड़ झरे वाहती, पानो पानी फूले बहरती फूल पाखरे वर बिर बिरती स्वप्न।

0: सुंदर, क्या बात है।
1: तो मराठी गाने, बस मराठी में तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ आई की वजह से, बहुत ज्यादा। लेकिन लैंग्वेजेस में कभी दिक्कत नहीं आई, ये ईमानदारी की बात है।
0: अब जब आ गए हैं हम अन्य भाषाओं के
1: जी
0: आपके गाए गीतों पर, तो पूर्णिमा जी आपने कई भाषाओं में गाने गाए, जैसे कि
1: जी
0: बंगाली,
1: जी
0: नेपाली,
1: जी
0: मराठी, भोजपुरी, असमिया, हरियाणवी और गढ़वाली भाषा में भी
1: जी
0: आपने
1: जी
0: गाया।
1: बिल्कुल।
0: इनमें किस भाषा के गीत ज्यादा आपके लिए चैलेंजिंग थे, और साथ ही अलग अलग भाषाओं के उच्चारण यानी जो डिक्शन आप करते हैं और इमोशन को एक गायक के रूप में ढालने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि
1: मंदाकिनी जी, मैं फिर दोहराती हूँ कि जिसको कुदरत बनाना चाहता है वो उसे एक अलग ढांचे में ढालता है। मुझे लगता है मैं बचपन से एक अलग अलग ढांचे में ढल के आई हूँ, मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई।

0: हुई किसी भी भाषा में गाने के लिए, कभी नहीं। मैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में मैंने कितने जिंगल्स किए, और हिंदी में ऑफ कोर्स लिखती थी, और जो उनके इंटोनेशंस हैं लैंग्वेज की उन्हें मैं मार्क करती थी, पर एक दो टेक में ही ओके हो जाता था। मुझे कभी नहीं मुश्किल हुई, पता नहीं कैसे क्या, मैं नहीं, इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है,
1: जी, गॉड
0: पर
1: गिफ्ट.
0: ये गॉड गिफ्ट है। ये एक गॉड गिफ्ट मेरी आई को था, वो हर भाषा भाषा को ना एकदम से उसमें मोल्ड हो जाती थी। तो शायद ये आई से जैसे आवाज मिली, वैसे ये भी गिफ्ट मिला होगा। मंदाकिनी जी सॉरी, लेकिन मुझे ना मेरा एक और गाना याद आ रहा है, जब
1: मराठी.
0: मैंने जब रिमिक्स की बात की ना,
1: हाँ.
0: नहीं हिंदी गाना, उस गाने का भी रिमिक्स बना और एक किसी ने गाया, पर वो गाना एक्चुअली मेरा है। ये जेंजी क्राउड को पता
1: हाँ
0: पड़ना बहुत जरूरी है।
1: जी.
0: ऊंची है बिल्डिंग, टाड़ा टाड़ा टाड़ा, लिफ्ट तेरी बंद है, टाड़ा टाड़ा टाड़ा, कैसे मैं आऊं, टाड़ा रा रा रा रा रा रा, आ जा बैंड बाजा। तो ये ओरिजिनल तो मैंने गाया था
1: जी, अनु मलिक के साथ.
0: बिल्कुल जुड़वा फिल्म के लिए, है ना,
1: जी.
0: पर वो रिमिक्स से मुझे याद आया।
2: ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है,

0: पूर्णिमा बनने के बाद आपने बहुत सारे संगीतकारों के साथ काम किया,
1: जी
0: तो पुराने संगीतकारों के साथ काम करना और फिर से नए संगीतकारों के साथ काम करना, इनमें क्या अंतर महसूस किया?
1: मैंने जैसे मदन मोहन जी से के साथ या नौशाद साहब के साथ, दादू पंचम दा के साथ, वसंत देसाई जी, सबके साथ काम किया। जैसे वो सिखाते थे, जिस तरह से वो समझाते थे, वैसे ही आनंद मिलिंद ने समझाया, वैसे ही अनु मलिक ने समझाया, वैसे ही राजेश रोशन जी ने समझाया। जतिन ललित, उनका एक बहुत बेहतरीन गाना गाया था, दिल में है तू, धड़कन में तू, हो मैं जानू, आई लव यू, वो ही सब। देखिए क्या होता है, हाँ, फर्क सिर्फ माहौल में हुआ। माहौल एज इन रिकॉर्डिंग करने का तरीका। उस वक्त ये था कि भाई लाइव म्यूजिशियंस हैं।
0: अब और सिंगल ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी पहले।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और क्या होता था मंदाकिनी जी, फर्क ज्यादा मुझे अब महसूस हो रहा है, यानी 90s के बाद का जो दौर आया। और मुझे, मैंने जब एनालाइज किया तो मुझे लगता है उसका एक ही कारण हो सकता है, हम भी जब तक गाते थे, भले हम ट्रैक्स पे गाते थे, लेकिन हम जितने हम सिंगर्स आए थे या जितने हम म्यूजिक डायरेक्टर्स हमारे आए, उनकी सबकी जो एक उनका जो एक बैकग्राउंड था बहुत सॉलिड था, नींव उनकी हम सबकी बहुत सॉलिड थी,
0: बेसिक्स बहुत,
1: हम सब म्यूजिकल बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते थे, करते हैं, है ना। अब के बच्चे

0: लगता है उनके लिए, सच में बुरा लगता है। एक गाना दस दस बच्चों से गवाते हैं, उन बच्चों को बेचारों को मालूम ही नहीं कि ये गाना मेरा रहेगा भी कि
1: या
0: नहीं,
1: नहीं।
0: है ना। अब आप बोलो कि क्या, अरे तुम, अरे कैसे मना करेंगे, हर कोई चाहेगा ना कि भाई चांस मिल रहा है, कैसे ना बोलूं। अब पहले ये होता था, स्पेशली जब 70s और 80s तक भी एक हद तक हम रिकॉर्ड करते थे मंदाकिनी जी, तो आप सोचिए कि पूरे रिकॉर्डिंग रूम में कम से कम 70-80 लोग, म्यूजिशियंस, फिर सिंगर्स कैबिन में या तो मैं अकेली सोलो सिंगर कोई भी या हम दो, है ना। तो कम से कम आप सोचिए कि, और फिर अंदर कॉन्सोल्स में लोग बैठे, तो एक कम से कम, नहीं नहीं तो 80-90 लोगों की पॉजिटिविटी उस गाने के साथ जुड़ी है।
1: माहौल वैसे ही होता
0: माहौल
1: था, वो
0: क्यों
1: गर्माहट।
0: क्यों, क्योंकि अगर एक ने गलती की तो फिर शुरुआत से गाना शुरू करना
1: किया
0: पड़ेगा।
1: जाएगा।
0: तो सब लोग इतने चौकन्ने होकर काम
1: हाँ,
0: करते थे कि हमसे कोई गलती
1: गलती
0: ना
1: ना
0: हो,
1: हो जाए।
0: कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो चौकन्नापन, वो पॉजिटिविटी, एक गाने में सोचिए ना सबकी पॉजिटिविटी कि दिस इज इट, ये टेको के होना चाहिए। तो वो पॉजिटिविटी जो हम देते थे ना, उसकी सिर्फ कमी मैं आज महसूस करती हूं,
1: आज जो तकनीकी बदलाव आ गए हैं गानों की धुन पर,
0: जबकि
1: जो एक
0: बच्चे
1: बहुत असर पड़ा,
0: बहुत मेहनत
1: अच्छे
0: से
1: आ रहे
0: काम
1: हैं।
0: करते हैं, मैं बहुत सराहना करती हूं उनकी, जो लिमिटेड उनको, इनफैक्ट मुझे लगता है आज के जिस माहौल या दौर में वो काम कर रहे हैं, वो हमसे भी ज्यादा मुश्किल है।
1: जी।
0: अगर वो बोलेंगे भी कि नहीं हमको गाना फिर से करना है, तो भी उनको ऐसे देखते हैं लोग, मुझे मालूम है कि ये क्या बोल रहे हैं, पंचिंग का जमाना है, क्या पूरा गाना गाने पे
1: तुला हुआ है,
0: तुला हुआ है। अरे यार वो वर्ड पंच कर दो, छोड़ो ना यार, कहा अभी मैंने देखा है।
1: मतलब संगीत की ये हालत
0: हाँ
1: अगर हो जाएगी तो एक नया
0: तो
1: सिंगर
0: वो
1: क्या गाएगा,
0: पॉजिटिविटी आएगी
1: वो
0: कहां से,
1: सीखेगा कहां
0: है
1: से
0: ना।
1: आगे के लिए।
0: टुकड़ों में थोड़ी ना पॉजिटिविटी, सकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो टुकड़ों में थोड़ी ना बटी
1: जी जी
0: जाएगी,
1: जी
0: है ना।
1: जी
0: मुझे कमी सिर्फ ना मेहनत में कमी है, ना उनकी नियत, शायद हो सकता है नियत में, ईमानदारी में थोड़ा सा ऊंच नीच हो, वो भी मैं बोलूंगी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन टुडे, आज का जो माहौल, जिस माहौल में ये बच्चे काम कर रहे हैं,
1: रातों रात स्टार बन
0: इतना
1: जाना।
0: कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, क्या करेंगे वो।
1: जी,
0: तो
1: वही
0: हमने
1: बात।
0: सराहना करनी चाहिए बच्चों की, जितना हो सके उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और हो सके तो उनको अच्छी सीख दो भाई
1: जी, ताकि आगे चलकर एक
0: उनको।
1: उनका भी
0: हाँ,
1: करियर जो बनता
0: हर बार
1: है।
0: उनका उस्ताद बनने की कोशिश मत करो ना, ये बात गलत है। हमें अच्छा लगता था उनकी उम्र में जब हम थे, हम वो जो हमारा वक्त था, हमें नहीं अच्छा लगता था कोई उस्ताद बनने की कोशिश अगर, लेकिन हमारा तरीका अलग था उसको जताने का, इनका तरीका अलग है, क्योंकि आज वक्त बदल गया है। तो बदलते वक्त के साथ जो बदले अपने आप को, वो एक्सेप्ट करके बदले, मुझे लगता है समझदारी उसी में
1: जी,
0: है
1: एक
0: ना।
1: गाना सुन लिया जाए।
0: कौन सा बताइए।
1: आप बताइए, आपकी पसंद चल रही है। हमें तो आपके सभी गाने पसंद हैं।
0: अखिया तू मिला ले राजा, आए हैं दिन बहार के, अखिया तू चुरा न राजा, जाए न दिन ये प्यार के, मिस्टर लोवा तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लोवा तेरी। उसने जैसे उसको ब्लेंड किया ना, मेरी आवाज में इतना मुझे दर्द हो रहा है कि पत्ती आ रही है मेरी आवाज में, मतलब थोड़ी थोड़ी फट रही है। मैं अपने श्रोताओं से माफी चाहूंगी इसके लिए,
1: नहीं नहीं
0: पर
1: बिल्कुल
0: आज का ये मौका मैं
1: नहीं,
0: गंवाना नहीं चाह
1: और हम
0: रही।
1: भी मौका नहीं गंवाना चाहते, तभी तो आपकी पसंद का ये गीत हम सुनते हैं।

0: धड़काए मिस्टर लोवा लोवा मेरी जान ये जाए।
1: तो पूर्णिमा जी, आज तो हम आपकी बातों का और आपके गानों का रसा स्वादन कर रहे हैं और हमारे श्रोता भी। अब बस हम ये जानना चाहते हैं चलते चलाते कि आज भी क्या आप फिल्मों में गा रही हैं, एक्टिव हैं और लाइव स्टेज शोज तो आप कर ही रही हैं, तो आगे आने वाले आपके नए प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं?
2: फिलहाल तो वैसे कोई खास नहीं है। ये जो मैंने अभी जिक्र किया जिसका मराठी फिल्म का, उसमें मैंने अभी गाया। और स्टेज शोज तो बहुत करती हूँ, बहुत। और अगर मैं बहुत ईमानदारी से बोलूँ तो मुझे स्टेज शोज करने में ज्यादा मजा आता है, पता नहीं क्यों। इसका मेरे पास कोई आप पूछेंगे तो कोई आंसर नहीं
1: जी।
2: पर मुझे लगता है वो मेरे ऑडियंस के साथ वन टू वन होना और मैं परफॉर्म करती हूँ स्टेज पे तो मुझे बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है।
1: वहाँ पे कौन सी फरमाइश आती है सबसे पहले, क्या सुनना चाहते हैं उस वक्त?
2: शाम है, धुआं धुआं, कम से कम चार बार गाना पड़ता है।
1: बिल्कुल, युवा दर्शक होते होंगे। हाँ, वो भी इस गाने को सुनना
2: बिल्कुल
1: पसंद करते।
2: बिल्कुल, और तू मेरा हीरो नंबर पर शाम है धुआं धुआं ज्यादा और तेरा मुझसे है पहले का। बस खास तो कुछ नहीं कर रही हूँ, गा रही हूँ बस,
1: यही खास
2: स्टेज
1: है।
2: पे यही खास है मेरे लिए, तो यही खास है
1: जी।
2: इसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, है ना। और ना जब कोई पूछता है कि आप अभी भी गाती हैं, ये सवाल मुझसे करते हैं लोग।
1: अच्छा।
2: उनसे मैं कहना चाहूंगी कि ये हम लोग जो है ना, हम लोग शापित गंधर्व हैं, है ना, हम इसे ऊपर से लेकर आए हैं। तो ये कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि भाई 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे। ये तो हमारे, मुझे लगता है हमारे रगों में खून कम और संगीत के सुर ज्यादा बहते
1: जी,
2: हैं
1: जी।
2: तो ये हमसे उसी वक्त शायद ये सुर अलग होंगे जब चीता की आग जलेगी।
1: जी,
2: तो ये सवाल प्लीज मत पूछा कीजिए किसी भी कलाकार से।
1: पूर्णिमा जी, एक गीत और सुन लेते हैं आपकी पसंद
2: प्लीज। चने के खेत में।
1: अरे

0: सुंदर, बहुत सुंदर। तो पूर्णिमा जी, और मैं तो कहूंगी सुषमा श्रेष्ठा जी भी,
1: और अभी पूर्णिमा श्रेष्ठ जी,
0: आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत आभार।
1: तो आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे श्रोताओं को मेरा सादर नमन। बॉम्बे टॉकीज इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: निशा जैन का
1: नमस्कार
0: नमस्कार। जयंत जी,
1: जी।
0: आज की विविधा में न जाने कितनी स्मृतियों की मंजुषाएं खुलने वाली हैं।
1: जी बिल्कुल, ये कार्यक्रम है ही ऐसा।
0: हाँ
1: हमारे विविध भारती का जो संग्रहालय रूपी खजाना है,
0: हाँ
1: उस खजाने से चुन चुन कर ऐसे जवाहरात लेकर के आता है अपने श्रोताओं के लिए।
0: आज ऐसी ही स्मृतियां हम आपसे बांटने आए
1: जी
0: हैं।
1: मनीषा जी, इस हफ्ते 9 अक्टूबर को
0: जी
1: स्मृति दिवस सुप्रसिद्ध संगीतकार रविंद्र जैन साहब का।

0: श्री रामचरितमानस की ये चौपाइयां जब जसपाल सिंह के स्वर में गूंजती हैं तो सारा वातावरण बहुत ही भक्तिमय हो जाता है और इन चौपाइयों को फिल्मों में बहुत सुंदर तरीके से दर्शकों तक पहुंचाया एक महान संगीतकार ने जिनका नाम है रविन्द्र जैन।
1: रविन्द्र जैन के बारे में अपने श्रोताओं को बताएं मनीषा जी कि बचपन में ये मंदिरों में भजन गाया करते थे।
0: जी हाँ, शायद यही वजह थी कि उनकी रचनाओं में भी आध्यात्मिकता की झलक हमें लगातार मिलती है।
1: और इनके आरंभिक गुरु रहे हैं पंडित जीएल जैन, पंडित जनार्दन शर्मा और पंडित नाथुराम जी।
0: संगीतकार, गायक और गीतकार रविन्द्र जैन बहुत अधिक प्रभावित रहे बंगाल से और उनका परिवार भी कलकत्ता जाकर बस गया था 50 के दशक में।
1: जी, और गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर से रविंद्र जैन बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रविंद्र संगीत सीखने की बहुत ज्यादा इच्छा थी उनकी और इसलिए संगीत के करियर को जो है शुरुआत वहां से हुई है। और पहला गाना एक संगीतकार के रूप में उन्होंने जो कंपोज किया उस संगीत रचना को गाया था मोहम्मद रफी साहब ने और ये गाना आज तक रिलीज नहीं हुआ।
0: और रविंद्र जैन ने न केवल हिंदी फिल्मों में बल्कि कई अहिंदी फिल्मों में भी संगीत दिया।
1: जी, ये अहिंदी फिल्में थी, मलयाली फिल्में, हरियाणवी, पंजाबी, भोजपुरी, गुजराती, बांग्ला, तेलुगु, उड़िया और राजस्थानी फिल्में।
0: जयंत जी, रविन्द्र जैन साहब का राजश्री प्रोडक्शंस के साथ गहरा नाता रहा और राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तली फिल्म जो बनी 1973 में सौदागर, वहां से रविन्द्र जैन साहब का संगीत स्टैब्लिश होता है हिंदी सिनेमा में और उसके बाद सारी सुपरहिट फिल्में जैसे गीत गाता चल, चित चोर, अखियों के झरोखों से, नदिया के पार,
1: 2006 में फिल्म विवाह तक।
0: जी हाँ, एक लंबा समय रविन्द्र जैन जी ने संगीत को दिया राष्ट्रीय बैनर्स के तले। और रविन्द्र जैन साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा कि दक्षिण भारत के महान गायक येसुदास को उन्होंने हिंदी फिल्मी संगीत में इंट्रोड्यूस किया और उनके बहुत ही मीठे गीत रविन्द्र जैन जी के स्वरबद्ध किए हुए हैं। इसके अलावा हेमलता, आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह जैसे कलाकारों को भी उन्होंने हिंदी फिल्मी गीतों में मौका दिया और आज उन सभी के गीतों से हिंदी सिने जगत समृद्ध है।
1: येसुदास की आपने बात की मनीषा जी, और रविंद्र जैन साहब का एक बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है जो येसुदास और हेमलता ने गाया है फिल्म चितचोर के लिए। तो पहले वो सुन लेते हैं और फिर जो रिकॉर्डिंग अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं उसे सुनवाएं।

0: येसुदास और हेमलता के स्वर में इस मीठे गीत के स्वर रचयिता रविंद्र जैन जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग हमारे संग्रहालय में है। श्रोताओं, जयंत जी ने इस गीत को सुनने के पहले वादा किया था कि उस रिकॉर्डिंग को हम आपको सुनवाएंगे, तो आइए सुनते हैं गीतकार, गायक और संगीतकार रविंद्र जैन से सुधांशु शेखर की ये बातचीत।
1: मैंने जब संगीत की शिक्षा लेना आरंभ किया
2: जी,
1: तो गायक के तौर पे ही किया, लेकिन गायन के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े नाम थे कि मुझे ये समझ आ गया, जल्दी ही समझ आ गया
2: जी,
1: कि जहाँ तक ये लोग पहुँच चुके हैं वहाँ तक ही जाना मुमकिन नहीं है, तो वहाँ से आगे की तो बात बहुत दूर है। यानी उस साल बड़े गुलामी खान साहब थे, अमीर खान साहब थे जिन्होंने हम सीखा करते थे
2: जी,
1: और खान साहब अब्दुल करीम खान साहब, उनका नाथ जी, यानी जो जो बड़ी हस्तियां उस वक्त सुनने को जिनका हमें गायन मिलता था। तो आज तो ऐसे लोग मैसर ही नहीं है, इसलिए फिर मैंने ये फैसला किया कि कंपोजिशन के क्षेत्र में कदम रखूं। वहां भी बड़ा कंपटीशन है, लेकिन वहां थोड़ी बहुत अपनी बात कहने की गुंजाइश है
2: जी। लेकिन आपको गीतकार बनने की कैसे सूझी?
1: गीतकार बनना अगर मैं कहूं कि एक मजबूरी थी, यानी लिटरेचर से तो मुझे बचपन से लगाव है, लेकिन फिल्में जो मैंने गीतकार के रूप में की हैं, उनमें यूं था कि मैं जब बॉम्बे आया तो मेरे पास धुनें होती थी, लोक धुनें थी, क्लासिकल राग तो थे ही सीखे हुए जाने हुए, लेकिन सुनाने के लिए, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लव्स तो चाहिए ना, शब्दों के बिना उनको क्या समझ आएगा, सिर्फ ट्यून्स अगर सुनाते रहें, और मेरे लिए कोई राइटर उस वक्त जब मेरे पास फिल्में नहीं थी तो कौन लिखता, तो टूटे फूटे जो बोल मैं गाता था वही लोगों ने पसंद कर लिए और उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की, बहुत सराहा, और कुछ यूं भी था कि काम जल्दी करके देना होता था
2: जी।
1: तो इन सब बातों के तहत मैं आपके सामने जो कुछ भी हूँ

0: गीतकार कह लें, शायर कह लें, बस इसी तरह बन गया हूँ।
1: रविंद्र जी, आमतौर पर ऐसा देखते हैं कि आपके गानों में हर दो तीन चार फिल्मों के बाद जो एक फिल्म आती है
0: जी
1: तो उसका कोई ना कोई एक गीत का विषय या राधा होती है, मीरा होती है। जैसे गीत गाता चल का आपका गाना है शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम,
0: जी
1: या फिर राम तेरी गंगा मैली का वो गीत एक राधा एक मीरा, या फिर शाम तेरे कितने नाम में भी एक गीत है, या फिर प्यासा सावन का भी एक गीत है,
0: प्यार का सावन में। जी हाँ
1: जी हाँ प्यार का सावन में,
0: जी
1: जिसमें कि उस गाने का विषय जो है
0: जी
1: राधा या मीरा है,
0: जी
1: और हमेशा आपने एक तुलनात्मक अध्ययन किया है
0: जी
1: या करने की कोशिश की है राधा और मीरा के बीच में, तो आखिर राधा और मीरा के चरित्र आपको इतने प्रभावित क्यों कर पाए?
0: सबसे पहली बात तो यह है कि मैं ब्रिज भूमि से मेरा ताल्लुक है
1: जी,
0: और वहां पे राधा और कृष्ण की आराधना है, तो ये स्वाभाविक है कि कोई भी जब कविता लिखना शुरू करेगा उस क्षेत्र का आदमी, तो उनसे यानी उनकी आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। तो मीरा और राधा का जहां तक सवाल है, मुझे कभी कभी यूं लगता है कि ये एक ही रूप के अलग अलग नाम रख दिए गए हैं, क्योंकि आराध्य तो दोनों का एक ही था। अब किसको मिला या किसको नहीं मिला, ये तो गूढ़ विषय है इस पे कहना। जैसे मैंने इस गाने में, राज साहब के गाने में कहा है, अंतरे में आपने अगर ध्यान दिया हो कि राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया।
1: जी हाँ, जी हाँ,
0: तो प्राप्त करना, उपलब्ध करना, उसका आभास होना, कई बार वो भौतिक रूप में हम मानते हैं, कई बार मानसिक मानते हैं, आध्यात्मिक मानते हैं, तो वो अलग अलग बातें हैं।
1: अच्छा रविंद्र साहब, ऐसा है कि हमारे फिल्मों के साथ ये त्रासदी है कि अगर उस फिल्म के गाने पहले हिट हो जाएं तो फिल्म के चलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो ये कहाँ तक सही है और ऐसा क्यों है?
0: संगीत भारतीयों के जीवन में यानी हमारे जन्म से पहले से
1: जी
0: शुरू होता है, ठीक है ना
1: जी,
0: यानी इतना जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से, हमारे जीवन के हर पहलू में संगीत है, कण कण में हम कह सकते हैं, और अंत तक संगीत रहता है। तो संगीत का लोकप्रिय होना बहुत स्वाभाविक है, और जिस फिल्म का संगीत जरा भी रिजनेबली अच्छा होता है, सरल होता है, लोगों तक पहुंच जाता है, तो वो लोग चाहते हैं कि फिर उस फिल्म को रिपीट करें, और संगीत मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी फिल्मों को रिपीट करवाने में उसका काफी हाथ है।
1: एक बात फिल्मी संगीत से संबंधित और साथ साथ इस हमारे सवाल का ताल्लुक गीत लेखन से भी है कि आमतौर पे जो आजकल ये होता है कि फिल्म की धुनें, गाने की धुनें पहले बना दी जाती हैं
0: जी,
1: और उसके बाद गीतकार को कहा जाता है कि भाई आप इसमें शब्दों को फिट कर दीजिए
0: जी,
1: तो इसमें से ऐसा नहीं लगता है कि गीतकार की जो अपनी उड़ान है, शब्दों की जो अपनी उड़ान है, वो एक सीमित दायरे में कैद हो जाती है?
0: डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन पे आप कह रहे हैं, समझिए कि कोई अगर डांस का सीक्वेंस बनाना है, कोई ऐसी फिल्म है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ताल के साथ खेलना है, सुरों के साथ खेलना है, या अलग अलग विविध छंदों में काम करना है, क्योंकि हमारे जो ज्यादातर गीतकार होते हैं वो एक सेट मीटर होता है हम लोगों को कहने का, ठीक है ना
1: जी,
0: गजलों का भी गीतों का भी, तो उसमें ही ज्यादातर लोग कह के लाते हैं, उसमें विविधता जो है ना वो कम आ पाती है, एक वेरिएशन जो हमें चाहिए होता है वो कई बार नहीं भी मिलता है।
1: अच्छा रविंद्र जी, इन दिनों व्यस्तताएं जो है वो किस क्षेत्र में है, साहित्य में, संगीत में?
0: साहित्य तो चूंकि बचपन से मेरे परिवार से मुझे मिला है, मेरे पिताजी पंडित श्री इंद्रमणि जैन वेद शास्त्री जी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, और मेरे बड़े भाई साहब श्री धनी कुमार जी, उन्होंने बहुत साहित्य पे काम किया, तो इन लोगों के सानिध्य से साहित्यिक जो संस्कार हैं वो तो जीवित रखने ही हैं, और मुझे उसमें आनंद भी बहुत आता है, तो साहित्य तो मेरे साथ चल ही रहा है, और संगीत की चूंकि शिक्षा ली है और संगीत के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तो वो उत्तरदायित्व भी मैं निभाता हूँ। उर्दू की किताब शाया की है कि उसका नाम है उजालों का सिलसिला, उर्दू की गजलें, नज़में, नाज शरीफ, हम इस तरह की चीजें हैं उसमें। हिंदी साहित्य में काम कर रहा हूँ और कुछ तर्जुमे कर रहा हूँ,
1: अनुवाद काम,
0: जी अनुवाद का काम कर रहा हूँ पर्शियन से सरल उर्दू में।
1: अच्छा, तो आपने इतनी सारी भाषाएं सीखी हैं?
0: बस ये रुचि है मुझे सारी भाषाओं में, मुझे बंगाली मेरी एक वीकनेस है, चूंकि कलकत्ते से मैंने करियर शुरू किया है
1: जी,
0: तो बंगला पे भी बहुत काम करता हूँ,
1: बंगला पे, उर्दू पे,
0: जी,
1: हिंदी में कर ही रहे हैं
0: जी जी, हिंदी उर्दू, तो हिंदी उर्दू इसलिए कि वो अलीगढ़ में हिंदी उर्दू का मिला जुला माहौल है, और अलीगढ़ का मैं रहने वाला हूँ, और कलकत्ता काफी वक्त गुजारा है, वो खास तौर से बंगाली लिटरेचर के लिए ही मैं गया था और बंगला म्यूजिक के लिए गया था।
1: तो आपने किसी दक्षिण भारतीय भाषा पे काम नहीं किया है?
0: म्यूजिक किया है उनके लिए, संगीत किया है, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र भी किया, उससे पहले अभी यशोदा जी के साथ एक मलयालम फिल्म की थी, अभी कुछ गीत कैसेट बनाए हैं मलयालम के,
1: मलयालम भाषा तो आपको आती नहीं,
0: मगर संगीत किसी

0: किसी जबान का मोहताज नहीं है ना, आप जानते हैं उसकी अपनी जबान
1: की अपनी
0: है।
1: भाषा होती है।
0: जी
1: तो आपको उनसे कोई कठिनाई नहीं हुई दूसरी भाषा में,
0: नहीं,
1: ऐसी
0: सिर्फ
1: भाषा?
0: उसका शाब्दिक अर्थ पता चल जाए और फिल्म का क्या पस मंजर है वो मालूम हो जाए।
1: तो उसके बाद कोई कठिनाई नहीं होती।
0: जी नहीं,
1: रविंद्र जी, हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप रामायण के कुछ दोहे या चौपाई सुनाते।
0: रामायण में जो मैंने कुछ कहा है वो मैं आपकी खदमत में रखना चाहता हूँ। दोहे चौपाई तो बहुत तुलसी जी ने जो कहे हैं सबने पढ़े हैं और सुने हैं। जिस संदर्भ का गीत मैं गाना चाहता हूँ, मुझे श्री हनुमान जी जब अशोक वाटिका में अपना परिचय देते हैं
1: जी
0: सीता माता को कि वे राम जी के भेजे हुए दूत हैं, तो एक गीत वहाँ हमने रखा था।

जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, वे सूर्यवंश के सूर्य।

खल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, खल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, उस जनक सुता सीता को

0: राम।
1: अभी हम सुन रहे थे जाने माने गीतकार, संगीतकार, गायक रविंद्र जैन साहब के साथ सुधांशु शेखर की बातचीत। ये खास रिकॉर्डिंग हम आपके लिए विशेष रूप से लेकर के आए थे श्रोताओं।
0: और जयंत जी,
1: जी
0: रविंद्र जैन जी का एक और बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन जो दूरदर्शन को रहा, एक सीरियल हुआ करता था रामानंद सागर जी का रामायण, उसका संगीत संसार कितना विपुल है वो हम आज भी भूल नहीं पाते हैं। जब जब रामायण देखते हैं,
1: जी
0: रविंद्र जैन जी की स्मृतियां ताजा होने लगती हैं, उनकी आवाज हमारे आसपास जैसे एक बहुत ही आध्यात्मिक संसार रचने लगती है। रविंद्र जैन जी के स्वर में एक बहुत ही हॉन्टिंग मेलेडी है फिल्म अखियों के झरोखों से। उस गीत को सुनते हैं और एक बार फिर याद करते हैं रविंद्र जैन।

0: रविंद्र जैन जी के स्वर में इस सुंदर रचना को सुनने के बाद स्मृतियों की स्वर मंजूषा जो खुल चुकी है
1: जी,
0: उसके अगले कलाकार जो हैं उनके बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि तेरे आने की जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा घर महके।
1: वाह, याद आए तो दिल मुनव्वर हो, दीद हो जाए तो नजर महके, तेरे आने की जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा घर महके।

0: श्रोताओं, जगजीत सिंह एक अमर आवाज, एक अमर गायक, हिंदुस्तानी गजल को विश्व पटल पर पहुंचा दिया जगजीत सिंह साहब ने, और उनकी आवाज वाकई उनके चाहने वालों के जहन दिल में उसी तरह मुनव्वर है, उसी तरह महकती हुई है जिस तरह ये गजल महक रही थी कुछ देर पहले।
1: वही गजल जो पहले मुशायरों में और शास्त्रीय उपशास्त्रीय संगीत की बैठकों तक सीमित थी, उसे आम जनता तक पहुंचाया, पूरे भारत में संगीत प्रेमियों में लोकप्रिय कराया, और वो एक ही नाम है, जगजीत सिंह।
0: जगजीत सिंह साहब की याद आते ही न जाने कितनी गजलें, कितने गीत और कितनी ही उनकी लोक धुनों पर जो आधारित गीत हैं वो याद आने लगते हैं, खासतौर पर उनके गाए हुए कुछ बहुत ही सुंदर पंजाबी गीत।
1: बिल्कुल, और क्यों ना हो, क्योंकि मूलतः जगजीत सिंह साहब पंजाब के थे और उनका जन्म श्री गंगानगर राजस्थान में हुआ था। जगजीत सिंह साहब का वास्तविक नाम जगमोहन सिंह धीमान था
0: जी,
1: और अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि उन्होंने जो संगीत की शिक्षा आरंभ की

0: तो उनके पहले गुरु रहे हैं पंडित छगनलाल शर्मा जी और उस्ताद जमाल खान साहब से भी आपने संगीत की तालीम हासिल की।
1: बाकायदा शास्त्रीय संगीत सीखने वाले जगजीत सिंह साहब ने जब सुगम संगीत की गजलों को गाना शुरू किया तो कौन कह सकता था कि ये कलाकार अपने श्रोताओं के दिलों पर, अपने चाहने वालों के दिलों पर सदा राज करते रहेंगे। और न केवल गजलें बल्कि जगजीत सिंह जी ने अपने करियर के उत्तरार्ध में बहुत सुंदर भजन भी गाए हैं जयंत जी, और उनकी गाए सभी भजन आज तक हम सबके हृदयों पर राज करते हैं। भक्ति रस से परिपूर्ण ये भजन सुनते ही मन जैसे आनंद विभोर हो जाता है। श्रोताओं, आज हम महान गायक जगजीत सिंह साहब की खास रिकॉर्डिंग लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं। उनके साथ उनकी अहलिया चित्रा सिंह जी भी थी, और ये विविध भारती की खुशकिस्मती थी कि ये मशहूर गजल गायकों की जोड़ी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह एक साथ विविध भारती के स्टूडियोज में पधारी थी, और उनकी उसी रिकॉर्डिंग को हम आज आपकी नजर करते हैं। आइए सुने जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का ये विशेष साक्षात्कार। इस इंटरव्यू को लिया है विजय चौधरी ने।
2: जगजीत भाई और चित्रा जी, एक सवाल जो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा वो ये कि आप गजल गायकी में पहले आए, उसके बाद में आप संगीत निर्देशन के क्षेत्र में आए, तो इन दोनों में आपको कौन सी अपनी शख्सियत ज्यादा प्यारी है और ज्यादा आप किसे इम्पोर्टेंस देते हैं?
3: ये दोनों चीजें कोई अलग नहीं है, क्योंकि संगीत निर्देशन गजल में भी करना पड़ता है
2: जी,
3: फिल्म में भी करना पड़ता है, तो बेसिक जो चीज है वो है म्यूजिक
2: जी।
3: तो मुझे तो दोनों चीजें प्यारी हैं और दोनों चीजें आती हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि गजल ज्यादा प्यारी है या वो ज्यादा प्यारा है, लेकिन क्योंकि गजल से हम ऊपर आए हैं इसलिए
2: जी
3: गजल को हम आगे रखेंगे। संगीत निर्देशन को आप समझ लीजिए कि साइड बिजनेस कह लीजिए।
2: अच्छा अच्छा, ये कहा जाता है कि हमारे भारत में गजलों में जो कॉर्ड का यूज किया है सबसे पहले वो आप ही ने किया, और इसकी वजह क्या है, यानी जो आपने चलन देखा उस वक्त के एतबार से उससे आप प्रभावित हुए या आपने इसकी जरूरत इसको कुछ पहले से अलग दिखाने के लिए समझी?
3: ऐसा है कि देखिए, संगीत जो है म्यूजिक, उसकी तो कोई लैंग्वेज तो कोई है नहीं उसमें, वो जबान सब मुल्कों की एक ही है
2: जी,
3: संगीत की जबान है वो एक ही जबान है
2: जी।
3: अभी आप जिस कॉर्ड जिसको कहते हैं उसमें तीन नोट्स होते हैं, पासा गा या सागा पा
2: जी,
3: वो तीनों एक साथ बजाओ तो उसको कॉर्ड कह देते हैं
2: जी।
3: तो इससे अगर हम पहले धोती पहनते थे, कुर्ते पहनते थे, अब हम पतलून पहनते हैं, सूट पहनते हैं, तो गजल को कॉर्ड क्यों नहीं पहनाया जाए?
2: सही बात,
3: उसको आप क्यों पीछे रखना चाहते हैं?
2: यानी यूं कह लें कि कॉर्ड का कोट क्यों नहीं बनाया
3: जी,
2: यानी जो पाश्चात्य असर है, अब इसके आगे हम चलते हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स में ही नहीं, हम देखते हैं कि धुनों में भी भारतीय जमीन पर काबू रखते हुए भी आप लोग कहीं ना कहीं उन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से हो चाहे या कंपोजिशन में ऐसी बात हो, उसका असर भी तो
3: थोड़ा सा असर है, फिल्मों में ज्यादा असर है
2: जी
3: वेस्टर्न मेलोडीज का, वेस्टर्न स्टाइल का जो है, लेकिन गजल में मैं समझता हूँ अभी कम है। गजल में सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि वो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, लेकिन मेलेडी में आई डोंट थिंक कि वहाँ पे कुछ वेस्टर्न कॉम्बिनेशन है।
2: अच्छा, और एक चीज अब खासतौर पर मैं चित्रा जी से ही जानना चाहूंगा कि जबान की जानकारी तो एक जरूरी शर्त है किसी भी तरह के गाने के लिए, लेकिन गजल में कुछ खास सेंसिटिव हुआ करता है मामला, तो इसमें आपका क्योंकि बंगाल से रिश्ता है
1: जी,
2: तो कोई दिक्कत आपको लगी कभी या जगजीत भाई की वजह से वो दिक्कतें आसान होती चली गई?
1: हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप, शुरू शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई, आती ही नहीं थी जुबान कुल, गा तो जरूर लेती थी, बचपन से गा लेती थी
2: जी,
1: लेकिन वो सुन सुन के गाना, बगैर समझ के गाना, वो और बात होती है। तो फिर जगजीत जी ने काफी हेल्प मदद की इस फील्ड में, और धीरे धीरे समझ आने लगा, और अभी भी वैसे खास तो मुझे आती नहीं लैंग्वेज, सच बात तो ये है।
2: अच्छा, तो ये
1: वो तो मेरे बोल से आपको समझ, आप समझ गए होंगे,
2: आप कह रही हैं इसलिए मुझे सोचना पड़ रहा है, लेकिन लगता तो नहीं है ऐसा।
1: नहीं, नहीं।
2: हाँ। जी,
1: मैं लेकिन वैसे एक एक गाना गाने से पहले, एक एक गजल कह दीजिए, इतना जरूर करती हूँ कि उस पर्टिकुलर गजल की जितनी मुश्किलात हो, कितने भी मुश्किल वर्ड्स हो जिसके मुझे मीनिंग्स नहीं मालूम या कुछ भी उसके मतलब हो
2: जी,
1: उस सारी बातें पहले मैं अच्छी तरह से मालूम करके फिर ही गाना शुरू करती हूँ
2: जी। जी, एक इल्जाम अक्सर गाने वालों के ऊपर, गजल गाने वालों पर आजकल आता है कि गीतनुमा गजल ज्यादा आजकल गाई जाती है, किस बात की वजह से लोग ये कहते हैं कि ये गीतनुमा गजल हो गई है? क्या गजल गायकी का भी कोई खास पैटर्न हुआ करता है?
3: ये तो देखिए अपना अपना ढंग है, अपना अपना नॉलेज।

0: डिश है, आपको जितना मसाला आता है, जितना मसाला आप डाल सकते हैं चीज में उतना डालिए। बाकी रही गीत और गजल, आप एक गजल को एक घंटा भी गा सकते हैं और एक गजल को आप तीन चार शेर होते हैं 3 मिनट में खत्म भी हो सकती है
1: जी।
0: उसमें आप एक लाइन को रिपीट कर रहे हैं बार बार, एक ही जगह तान मार रहे हैं बार बार, या सरगम बोल रहे हैं बार बार, तो इस तरह की जो परफॉर्मेंस है उसमें आपकी जो म्यूजिक की नॉलेज है उसको आप इम्पोज कर रहे हैं ऑडियंस के ऊपर। गजल को पीछे छोड़ के आप अपनी नॉलेज को इम्पोज कर रहे हैं। वो करिए, जरूर करिए, लेकिन आजकल फास्ट लाइफ है। पहले हम दिल्ली जाते थे 2 दिन में पहुंचते थे, आज आदमी चाहता है कि 2 घंटे में दिल्ली पहुंचे
1: जी,
0: क्योंकि इतना वक्त नहीं है ऑडियंस के पास भी, इतना वक्त नहीं है कि वो एक गजल को बैठ के आधा घंटा एक ही गजल सुनेंगे। वो चाहते हैं कि 2.5 घंटे का प्रोग्राम है उसमें कम से कम 20 गजलें हों
1: जी,
0: डिफरेंट कलाम हो, डिफरेंट शायरों का कलाम हो।
1: हाँ अच्छी बात कही आपने, यानी उसकी जगह यहाँ पर दाल में नमक जैसे ज्यादा नहीं।
0: ये नहीं मैं कहता कि नहीं करना चाहिए, वो कहीं कहीं खूबसूरत लगता है, लेकिन उसका ज्यादा जैसे मिर्ची या नमक डाल दो तो फिर वो बुरा लगेगा।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा चित्रा जी, गजल गाने में जुगलबंदी भी आप ही लोगों से शुरू हुई, और अगर शुरू न भी हुई हो तो मैं समझता हूँ कि मकबूलियत जो है वो आप लोगों से ही, इस जुगलबंदी को मेल फीमेल दोनों एक साथ एक चीज को गाएं, तो इसमें आप जो जगजीत भाई बंटवारा करते हैं किसी भी गजल में, तो फीमेल एंगल सामने रहता है उस शेर के पीछे जिसको चित्रा जी गाती हैं, और मेल आपके सामने, या किसी भी गजल को आप बांट सकते ही हैं कि ये
0: किसी भी गजल को नहीं बांटते हम
1: जी।
0: एक तो जैसे चित्रा जी बोल रहे हैं अभी फीमेल एंगल शेयर में हो, दूसरा एक यूनिवर्सल थॉट जिस शेयर में हो जो मेल और फीमेल दोनों पे जाता हो, तो वो मैं अक्सर इनसे गवाता हूँ।
1: अच्छा इसके कुछ एडवांटेजेस आपको खास दिखाई दिए दोनों साथ में अगर कोई चीज गाते हैं तो ऑडियंस के ऊपर?
0: हाँ एक तो देखिए मोनोटोनी टूट जाती है
1: जी,
0: अगर एक ही आवाज आप सुन रहे हैं 3 घंटे कान में तो वो थोड़ी देर के बाद मोनोटोनस लगती है। तो एक गजल मैंने गाई उसके बाद एक इन्होंने गाई तो एक वेरिएशन जो है ना वो कानों को भी मिलता है, क्योंकि इसकी ऑडियंस भी बहुत वाइड हो गई है गजल की, आपको तो मालूम है।
1: जी हाँ जी,
0: पहले तो लोग घरों में ही गजल सुनते थे, या कभी कभार कभी गजल का प्रोग्राम होता था स्टेज पे, उसमें भी 200 या 300 आदमी। अभी जो गजल के प्रोग्राम होते हैं, हम लंदन में गए थे अल्बर्ट हॉल में तो 6000 आदमी वहाँ हॉल भरा हुआ था, उसके बाद सन सिटी में गए 7000 आदमी हॉल भरा हुआ, या इंडिया में भी श्री फोर्ट ऑडिटोरियम दिल्ली में 2500 आदमी 2000 आदमी, तो इस तरह की ऑडियंस। चंडीगढ़ गए वहाँ 14000 आदमी रोज गार्डन में तो गजल सुनने आया, वो पीछे 14000 में कुछ सुनने वाले हैं, कुछ ऐसे ही आ गए हैं, कुछ तमाशा देखने आए हैं, तो वहाँ पे सिर्फ गजल नहीं रहती, वहाँ फिर कई कुछ और भी करना पड़ता है एंटरटेन करने के लिए।
1: जी हाँ जी। अच्छा गजल के साथ में जब लोग तालियां बजाते हैं ताल के अंदर तो कैसा लगता है? यानी
0: देखिए वो एक स्टेज होल्ड करने का जो है तरकीब है, तरकीब यह आती है कि वो पार्टिसिपेशन उनकी बजाती है ऑडियंस की। अगर ऑडियंस की पार्टिसिपेशन शुरू हो गई है इसका मतलब आपका प्रोग्राम जम जाएगा।
2: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की ये विशेष रिकॉर्डिंग हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे विजय चौधरी जी, और श्रोताओं ये हमारे संग्रहालय की खास रिकॉर्डिंग थी। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। जी हाँ, आइए सुनते हैं इस लाफानी गजल को जिसे लिखा है निदा फाजली ने, और आप इंतजार कीजिएगा हमारी अगली पेशकश का।

0: सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो।
1: सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो।
0: उर्दू अदब के एक महान शायर निदा फाजली, 12 अक्टूबर उनका जन्मदिन हुआ करता है, और आज विविधा में हम निदा फाजली साहब को बहुत दिल से याद कर रहे हैं। उनकी एक खास रिकॉर्डिंग लेकर भी आज हम हाजिर हुए हैं श्रोताओं, जिसको हम थोड़ी ही देर बाद आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन उसके पहले एक बात जयंत जी आपसे शेयर करना
1: जी,
0: चाहते हैं।
1: मनीषा जी, मक्तिदा हसन निदा फाजली यानी हम सबके चहेते निदा फाजली साहब, इनके बारे में एक वाकया बताया जाता है कि जब वो किशोर वयन थे,
0: जी,
1: एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे, मंदिर में भजन चल रहा था और वो सूरदास का पद था जिसमें राधा अपने सखियों के साथ अपना दुख बांट रही है कृष्ण से बिछोह के बाद। उस रचना ने उन्हें इतना प्रभावित किया
0: जी,
1: कि तब से वो कविता की ओर मुड़ गए।
0: क्या बात है, एक शायर के दिल को ये बात बहुत गहरी लगी। और देखिए, यही होता है एक शायर का, एक कवि का दिल। इस महान शायर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग श्रोताओं हमने अपने संग्रहालय में संग्रहित करके रखी है, जिसके कुछ अंश हम आज आपको अपने इस प्रोग्राम में सुनवा रहे हैं। निदा फाजली साहब से बातचीत की है अहमद वसी साहब ने, जो विविध भारती के पूर्व उद्घोषक भी रह चुके हैं और स्वयं भी एक शायर थे। तो आइए सुनते हैं मशहूर शायर निदा फाजली से अहमद वसी साहब की ये खास बातचीत और उसके संपादित अंश।
2: निदा साहब, इस वक्त मुझे रघुपति साहब फराग गोरखपुरी का एक शेर याद आ रहा है कि दिल को तेरी तलाश है वादिय कायनात में, तुझको कहाँ वो दे सदा, तुझको कहाँ सदा न दे। और वादिय कायनात की तरह फैला हुआ है हमारे इस प्रोग्राम का दामन, और मैं इस पसोपेश में हूँ, इस उलझन में हूँ कि आपको कहाँ से आवाज दूँ और आपसे क्या क्या सवाल करूँ और आपसे क्या क्या पूछूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम की वसत का तकाजा ये है कि आप खुद अपने बारे में बताएं, अपने बचपन के बारे में, अपनी यादों के बारे में, अपने अहबाब के बारे में।
3: एक साथ बहुत सारे सवालात, उन सारे सवालों का जवाब एक शेर। अब जहां भी हैं वहीं तक लिखो रुदादे सफर, हम तो निकले थे कहीं और ही जाने के लिए। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ, मैं अपने घर में तीसरा बच्चा होने वाला था। मेरी वालिदा एक हादसे का शिकार हो गई, मकान की मरम्मत हो रही थी दिल्ली में, और वो छत से मुझे 3 महीने का रखे हुए नीचे गिरने वाली थी। मेरे मामू ने दोनों हाथों में उन्हें थाम लिया, वो बेहोश हो गई और मैं वक्त से पहले इस कायनात में चला आया। जब चला आया बाद में महसूस हुआ, गालिब का शेर याद आया कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। मैंने अपने बचपन को अभी तक अपने साथ महफूज रखा है, बीती हुई उम्र को। मैंने एक बार झुंझला के कहा भी था कि बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत चुका है वो गुजर क्यों नहीं जाता। या बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। और जब मेरी बेटी हुई तो मैंने एक नज्म लिखी थी उसके लिए कि बहुत मैला है ये सूरज, बहुत मैला है ये सूरज, किसी दरिया के पानी में इसे धोकर सजाएं, फिर गगन में चांद भी कुछ धुंधला धुंधला है, मिटा के इसके सारे दाग धब्बे जगमगाएं, फिर हवाएं सो रही हैं पर्वतों पर पांव फैलाए, जगा के इनको नीचे लाएं, पेड़ों में बसाएं, फिर धमाके कच्ची नींदों से डरा देते हैं बच्चों को,

धमाके खत्म करके लोरियों को गुनगुनाएं फिर, वो जब से आई है यूं लग रहा है अपनी ये दुनिया जो सदियों की अमानत है, जो हम सबकी रिवायत है, पुरानी हो चुकी है, इसमें अब थोड़ी मरम्मत की जरूरत है। तो मैं चाहता हूँ दुनिया बच्चों की तरह मुस्कुराए, बहनों की तरह खिलखिलाए।

0: कहानियों का जिक्र होता है तो हमारा ध्यान, हमारा ख्याल मुतवज्जे होता है फिल्मों की तरफ। चूंकि ये फिल्मों सिलसिला ऐसा है कि हर शायर, हर गीतकार, हर लिखने वाला चाहता है कि इनसे वाबस्ता हो, इससे फिल्मों से वाबस्ता हो, और आपकी वाबस्तगी भी इसी फिल्मी दुनिया से है। तो पहले तो आप ये बताइए कि आप अपनी जवानी में, अपने बचपन में या पिछले दिनों में आप किस तरह की फिल्में देखते थे, पसंद करते थे, और फिर किस तरह के गीत आपको पसंद थे, या कौन शायर, कौन गीतकार, किस किस्म के गीत आपकी प्रेरणा का स्रोत बने?
1: देखिए साहब, बिहार में पटना आदिमाबाद के एक शायर हुए हैं शाद आदिमाबादी, उनकी एक लाइन है कि मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा कि चॉइस का इख्तियार जिंदगी में होता नहीं है, जहाँ पैदा हो गए वो आपका परिवार, उस परिवार की जो भाषा वो आपकी भाषा, वो परिवार जिस मोहल्ले में वो आपका मोहल्ला, वो मोहल्ला जिस नगर में वो आपका नगर। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। जब एक घर छीना गया तो घर की तलाश में पूरे देश में भटकता रहा, ये भी बेवकूफ़ी थी। घर चला गया था कराची और मैं उसे ढूंढ रहा था हिंदुस्तान में। मालूम पड़ा एक पड़ाव बम्बई आया, उस जमाने में धर्मवीर भारती यहाँ पर थे, उनके धर्मयुग में लिखना शुरू कर दिया, फिर बिलिट्स था उसमें लिखना शुरू कर दिया। मालूम पड़ा कि एक दिन बेघर के एक शख्स जिसका नाम निदा फाजली था, उसके लिए मैसेज रखी होती थी हर जगह जहां वो काम कर रहा था। थोड़ा थोड़ा कहीं धर्मयुग में मैसेज पड़ी हुई है, कहीं बिलिट्स में पड़ी हुई है, कहीं किसी रेडियो स्टेशन पे पड़ी हुई है, और वो मैसेज ये थी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आप मुझसे मिलिए, आपसे कुछ काम लेना है, कमाल अमरोही। मैंने सोचा कि मेरा कमाल अमरोही से क्या काम हो सकता है, फिर भी क्योंकि स्ट्रगल हर रोज भागते हुए सूरज का पीछा करता है और सूरज उससे आंख में चोली करता है, फिर भी वो सूरज से पर अपने विश्वास को खत्म नहीं करता, तो मैं कमाल अमरोही के यहाँ चला गया। कमाल साहब मिले 2 बजे के करीब, और वो स्टाइलिश आदमी थे कमाल साहब, एक लफ्ज भी अंग्रेजी का बोलते नहीं थे, और वो भाषा बोलते थे जो आज से 50 साल पहले अमरोहा में बोली जाती थी। मैं बम्बई आकर उस भाषा को भूल गया था। मैंने कहा कमाल साहब आदाब, मेरा नाम निदा फाजली है, तशरीफ रखिए, मैंने आपको इसलिए याद फरमाया, उनका स्टाइल है, मैंने आपको इसलिए याद फरमाया कि मुझे एक मुकम्मल शायर की जरूरत है। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ, और ये इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया कि आप मुझे मुकम्मल शायर समझ रहे हैं, कि जी मुझे आपसे कुछ नगमात तहरीर करवाने हैं। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ साहब, आप मुझे बताइए कि क्या गाना है, कैसा लिखना है, लेकिन इससे पहले कि आप गाना लिखें मैं एक बात जाहिर कर देना चाहता हूं कि इल्मी शायरी अलग होती है फिल्मी शायरी अलग, और फिल्मी शायरी लिखने के लिए आपको मेरे मिजाज की शिनाख्त बहुत जरूरी है। जानिसार अख्तर मेरे मिजाज को पहचान गए थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। मैंने कहा मैं ये शर्त तो पूरी नहीं करने वाला, कोशिश करूंगा कि आपकी सिचुएशन पर कुछ लिखूं। तो वो अपनी सिचुएशन जो मुझे

सुनाई उन्होंने, तो वो जुबान में सुनाई कि मैं भी थोड़ी देर के लिए हिल गया। कह रहा हमारी दास्तान उस मुकाम पर आ गई जहां मलकए आलिया रजिया सुल्तान यानी हेमा मालिनी सियाह लिबास में मलबूस खरामा खरामा चली आ रही हैं, जिसे देखकर हमारा आलय अक्कासी खैर मकदम के लिए आगे बढ़ा। मैं थोड़ी देर के लिए हिल गया। उनके असिस्टेंट ने बाद में कहा इसका मतलब ये है कि हेमा मालिनी सफेद घोड़े पर काले लिबास पहने हुए आ रही हैं और आलय अक्कासी यानी कैमरा उनकी तरफ मूव हो रहा है। तो मैंने लास्ट टू सॉन्ग्स आई रोट फॉर दैट फिल्म, लेकिन उस फिल्म के बनने में इतना टाइम लगा कि कमाल साहब की गुडविल जो है उसने मुझे इंडस्ट्री में मशहूर कर दिया कि कोई ऐसा आदमी है जिससे कमाल अमरोही गाने लिखवा रहे हैं। तो जाहिर है कि नॉट निदा फाजली बट बिकॉज कमाल अमरोही इज मेकिंग हिम राइट। तो फिर मैं राज कपूर से लेकर यश चोपड़ा से लेकर इस्माइल शरीफ तक मोर और लेस विद एवरी म्यूजिक डायरेक्टर आई वर्क्ड। मैं जिस युग में आया जन्म लिया वो युग पिछले युगों से अलग था। हालांकि मुझसे पहले गालिब का एक मशहूर शेर है कि बुलबुल के कारोबार पे है खंदा हाय गुल, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। मैं जिस जमाने में आया उनमें लड़कियां काफी चतुर हो चुकी थी। वो आपके चेहरा देखने के बाद आपके चेहरे पर लिखे हुए बैंक बैलेंस को भी देखना चाहती थी। बहुत से चेहरे अच्छे लगे लेकिन मैं जो फासला तय कर रहा था वो एक रोटी से दूसरी रोटी का था। नदीर अकबर आबादी ने कहा था कि हमको तो चांद में नजर आती हैं रोटियां। तो मेरी जो अफेयर्स रहे वो यकतरफा रहे। मैंने चाहा, मुझे नहीं चाहा गया। मैंने इंतजार किया, किसी ने मेरा इंतजार नहीं किया। मैं उन्हें कसूरवार भी नहीं ठहरा क्योंकि पढ़ी लिखी बाहोश हर लड़की को चेहरे के साथ बैंक बैलेंस और जेब के पैसे भी देखना चाहिए। और उस वक्त मेरे पास न फ्यूचर था न वक्त था। मेरी तलाश रोटी की थी, दिल को तलाश मोहब्बत की थी। दोनों आपस में एक दूसरे से टकरा रहे थे और वक्त निकले जा रहे थे। तो कॉलेज में मुझे याद है एक लड़की थी, मैं एमए कर रहा था अंग्रेजी में, तो वो 45 के एंगल में बैठती थी जहां मैं बैठता। फिर रास्ते में जब बाहर कॉलर मतलब क्लासरूम के बाहर गार्डन था, उस गार्डन में जब वो आती है तो गार्डन मुकम्मल हो जाता है। वो जिधर से गुजरती थी मालूम पड़ता था खुद संवरती थी बल्कि पूरे माहौल को संवार देती थी। मैंने उस जमाने में एक नज्म भी गई थी, वो फूल फूल नजर सांवली सी एक लड़की जो रोज मेरी गली से गुजर के जाती है, सुना है वो किसी लड़के से प्यार करती है, सुना है वो किसी लड़के से प्यार करती है, बाहर होके तलाशे बाहर करती है, न कोई मेल न कोई लगाव है, लेकिन न जाने क्यों बस उसी वक्त जब वो आती है कुछ इंतजार की आदत सी हो गई है मुझे, एक अजनबी की जरूरत सी हो गई है मुझे। मेरे वरांडे के आगे ये फूस का छप्पर, गली के मोड़ पे उखड़ा हुआ सा एक पत्थर, ये एक झुकती हुई बदनुमा सी नीम की शाख और उस पे जंगली कबूतर के घोंसले का निशान, ये सारी चीजें कि जैसे मुझ ही में शामिल हैं, मेरे दुखों में मेरी हर खुशी में शामिल हैं। मैं चाहता हूँ कि वो भी यूं ही गुजरती रहे, अदा उनास से लड़के को प्यार करती रहे। तो उसे देखकर सुबह भी अच्छी लगती थी, उसकी खामोशी से दिन भी जागता था, बेमतलब उसका इंतजार करते थे। एक दिन आया कॉलेज में मैं तो अचानक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि मिस टंडन इज नो मोर। वो कॉलेज आते वक्त किसी ट्रक के बीच में आ गई और वो चली।

0: कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है।
1: क्या
0: ये भी
1: बात है?
0: निदा साहब ने ही कहा है मनीषा जी।
1: जी हाँ, और इतनी खूबसूरत बात कहने वाले इस महान शायर को आज हमने याद किया, और हमने याद किया संगीतकार गायक रविंद्र जैन साहब को, साथ ही एक महान गायक जगजीत सिंह भी आज हमारी विविधा की जीनत थी, उनकी रिकॉर्डिंग भी हमारी विविधा की आज जीनत थी। श्रोताओं, उम्मीद है कि आज का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वक्त तो दीजिए विविधा के इस अंक को समाप्त करने की इजाजत आप सभी को मनीषा जैन
0: और जयंत पात्रीकर का
1: नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन कर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन संपन्न समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हो गया।
1: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 20 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये केंद्र असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत भाषा के विशेष अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट,

0: ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। भारत ने पाकिस्तान से जारी घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब की फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 घुसपैठिए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। कई बार वापस लौटने की चेतावनी देने के बाद सीमा सुरक्षा बल को कार्रवाई करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। यूक्रेन के रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत का प्रस्ताव सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिब्याह ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है। श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छर के अदम्य साहस की सराहना की है। श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने एक भयावह घटना होने से बचा ली। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने वर्जीनिया के ग्रेवली पॉइंट पार्क में विकसित भारत एकता दौड़ का आयोजन किया। इसमें भारतीय मूल के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान योग और ध्यान का भी आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी सैंकड़ों इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सैंकड़ों की याद में आयोजित की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाया और आजादी की भावना जगाई। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने ओजस्वी भाषणों और प्रेरणादायी लेखन से लोगों को विदेशी शासन के खिलाफ एकजुट किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। जापान में 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। 2 सप्ताह से अधिक के इन खेलों में कई रोमांचक मुकाबले हुए। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

किशोर कुमार की आवाज में हाथी मेरे साथी फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, मैं सुंदर हूं इस फिल्म से। मन्ना डे की आवाज फिल्म मेरा नाम जोकर, नीरज की रचना है, शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: ए भाई जरा देख।

का ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी हरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तेरे पैर नाच के आना यहाँ है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बनना पड़ता है भाई जरा देख के चलो।

0: हजार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिसके पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही जीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिसके पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही जीने में भौंकता का डर है।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
3: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
2: सखी सहेली?
3: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
2: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
4: सखी सहेली।

शब्बीर कुमार की आवाज में एसएच बिहारी की रचना थी ये तेरी मेहरबानी। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सर्वाधिकिया।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल, और इस गीत के संगीतकार थे राम लक्ष्मण।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो वो कैंची धाम के गेट के नीचे खुल गया, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी,
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर। ओ मैंने

0: किशोर कुमार की आवाज में बनफूल फिल्म का ये गीत आपने सुना। आनंद बख्शी की रचना थी, तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुकून हो जाती है।
1: आप सुन रहे थे शोले फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी।

लता मंगेशकर का गाया, शैलेंद्र का लिखा, सचिन देव बर्मन का सर्वद किया गीत फिल्म गाइड से आप सुन रहे थे यादों की महफिल। ये प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है।

सुन नमस्कार। किसी कोने पर, घर के किसी कोने पर सजा रेडियो विविध भारती का सुरीला सफर कार्यक्रम आ चुका है आपके रेडियो सेट तक। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुरीला सफर में। आज की जो इबारत है दीवार, उसमें कुछ दीवारें बातें करती हैं, और ये इबारत जो हमने फेसबुक पर डाली है वो एक बार आपके लिए पढ़े देते हैं श्रोताओं। ये दर दीवारें जिनमें एक उम्र की कहानी होती है, कभी साथ बैठकर घुल मिलकर इन्हीं दीवारों के साए जिंदगी परवान चढ़ी। घर की ये दीवारें जिनसे कभी धूप तो कभी

विचारिणी को उतरते देखा था। चंदन की खुशबू की तरह आज भी आंखों में बसे हैं वो दिन वो रातें, कभी जुड़ते कभी टूटते रिश्तों की चश्मदीद हैं ये दीवारें। शादी ब्याह की धूम में साथ रत जगा भी करते देखा है इन दीवारों को, कभी प्यार कभी रंजो गम, कभी ढोल ताशे तो कभी शहनाइयों की धुन इन्हीं दीवारों में सिमट जाती थी। बचपन में जिन दीवारों पर चित्र बना देते थे, कभी जिनके सहारे बैठकर पढ़ाई किया करते थे, कभी इनके साथ छुपा छुपी का खेल भी खेला। दीवारों से बने घर उसी डर को भुला पाना आसान नहीं। माँ बाबा के घर से पिया के घर तक जाने के सफर की राजदार हैं ये दीवारें। सच सच बता ए दिल, क्या उसी डर को ढूंढती हैं आज भी ये आंखें जिनसे वादा था कभी लौट कर आने का। साथियों, हम जहाँ हैं आज यह हमारा शुरुआती जीवन जिस घर में बीता उनकी दरो दीवारों में आज भी समय की स्मृतियां हैं जो कहती तो कुछ नहीं लेकिन उनकी पुकार को हम सुन तो सकते ही हैं। दीवारों से मिलकर घर बनता है, कभी सीमेंट ईंट से तो कभी मिट्टी की दीवारें, लेकिन रिश्तों का सोंधापन साथ बैठकर रसोई में खाना खाना और दीवारों के सहारे ऊपर जाती वो छत। हम तो चले आए लेकिन यादें वहीं रह गईं। चलिए उन्हीं दीवारों के साए चलते हैं जिनकी मरम्मत का भी शायद समय आज के व्यस्त जीवन में किसी के पास नहीं। वैसे दोनों दीवारों को दुरुस्त करने की कहां तक जरूरत है, एक जो मन में है और दूसरी जो घर में इंतजार करती है। तो लॉग ऑन कीजिए www.facebook.com/vbsmumbai और जुड़िए हमारे इस कार्यक्रम से जिसका नाम है सुरीला सफर। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

ये गीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत मात्र एक घर की दास्तान नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की भावना है जो अपने मूल निवास, अपनी जड़ों और अपनों से दूर हो चुका है। भौतिक रूप से भले ही इंसान आगे बढ़ जाए लेकिन उसका एक हिस्सा हमेशा उस घर में छूट जाता है जहां उसका बचपन और उसका असली वजूद परवान चढ़ा था। एक और श्रोता ने लिखती है, घर छूट सकता है मगर घर की यादें कभी नहीं छूटती। कुछ दीवारें उम्र भर हमारे भीतर खड़ी रहती हैं, याद बनकर, अपनापन बनकर और माता पिता के आंगन की खुशबू बनकर। इन दीवारों ने घर में आती धूप और चांदनी के साथ साथ रिश्तों के बदलते रंग भी देखे हैं। प्यार रूठना मनाना, कहीं शहनाई की गूंज और कहीं विदाई की नम आंखें। और इन्होंने ससुराल की भी बातें लिखी हैं। एक और हमारी श्रोता लिखती हैं कि यादों की दीवारों पर आज भी हैं बचपन के वो निशान, जहां बेफिक्र होकर पाया था मैंने मान। भले ही अब दूर हूं मैं मेरे नए घर संसार में, पर जुड़ा मेरा दिल है मायके के प्यार में। ईंट पत्थर से बद्दा हर मकान है, जहां प्रेम बसी वो घर महान है। थक हार कर जब शाम ढलती है घर की याद दिल में मचलती है। तो कितनी ही प्यारी बात इन्होंने लिखी है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि घर की दीवारें सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं होती बल्कि हमारी जिंदगी के हर सुख दुख, हंसी आंसुओं और बदलते रिश्तों की चश्मदीद गवाह होती हैं। आज विविध भारती के सुरीला सफर कार्यक्रम में शायद यही बातें हैं। और जी हाँ, बिल्कुल यही बातें हैं। अब एक गीत आपको सुनवाते हैं, उसके कलाकार और गीतकार आपको बताने हैं।

0: जो होगा उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखें

नूतन और देवानंद पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है और इस गीत के रचनाकार हसरत जयपुरी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो पूरी इमारत चलचित्र की भांति मस्तिष्क पटल पर अंकित हो गई। बुलाए नहीं भूलती वो बचपन के घर की दीवारें, मात्र 10 फीट ऊंची दीवारें और उस पर टीन का शेड। घर की इसी एक दीवार पर 2 से 20 तक पहाड़े लिखे हुए थे, यानी टेबल्स की बात कर रहे हैं ये, जिन्हें रोज याद करता था। इसके विपरीत दीवार में एक छोटी ताक थी जिस पर लैंप केरोसिन तेल से भरी चिमनी भी रखी रहती थी जिसे शाम को जलाया जाता था। इस रोशनी में शाम को क्लास होमवर्क के साथ पढ़ाई होती थी। इससे आगे वाले छोटे कमरे में अंगीठी पर खाना बनाया जाता था। बचपन के घर की दीवारें भुलाई नहीं भूलती ये दीवारें, बचपन की कितनी यादें अपने आप में समेटी हुई हैं। वक्त के साथ अपने आप यादों के झरोकों से सारी दास्तां बयान कर देती हैं, लेकिन बोलती कुछ भी नहीं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि अब उस घर में हम नहीं रहते, ताला पड़ा हुआ है। यदाकदा समय मिलने पर वहां चला जाता हूँ, कुछ समय वहां अकेला बिताता हूँ। यही मेरा बचपन बीता, स्तब्ध और मूक दीवारें जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हैं और बचपन की घटनाओं को चलचित्र की भांति मस्तिष्क में अंकित कर जाती हैं। बचपन के बाद यही जवान हुआ, विवाह भी यहीं से हुआ, पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति भी यहीं से हुई, नौकरी वगैरह की भी बातें इन्होंने लिखी हैं। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है कि यादों के दरख्त बन चुकी दहलीज और दीवारों के दर्द बयां करती दमदार इबारत, जिन दहलीज दीवारों के दरमियान कभी बचपन दम भरता था, आज मूक साक्षी को दर्शक बन हसरत भरी नजरों से निहार रहे हैं। दूरियां दीवार ने नहीं दिलों ने बनाई है, दीवार नहीं दिल की दरारों से लुप्त हो चुकी उन अतीत रिश्तों खुशियों को आज भी दिल ढूंढता है, मगर दर्द दिल की ये हसरत दिल में ही दफन हो कराह उठती है। यादों के दर्पण में स्वयं को ढूंढने का ये सफर का बेसब्री और बेकरारी से इंतजार रहेगा। एक जो चिलमन होती है श्रोताओ, उसे भी हम एक हल्की सी दीवार मान सकते हैं जो दो लोगों के बीच होती है। यही गीत है और ये गीत किन पर फिल्माया गया ये आपको बताना है। और साथ ही जो हमने आपसे सवाल किए थे कि कुछ यादें जो दीवारों से वाबस्ता हैं आपके पढ़ने की पढ़ाने की, या फिर किसी एक ताक पर रेडियो तो क्या रखा होता था और उसमें विविध भारती से कुछ आवाजें आती थी क्या।

हमारे श्रोताओं ने पूरी एक तरह से कह सकते हैं कि डिटेल ही लिख दी है इस गीत की। महबूब की मेहंदी फिल्म का ये गीत है और लोकप्रिय और रोमांटिक गाना है ये। एक श्रोता ने लिखा है, आनंद बख्शी के बोल हैं और ये गाना एक प्रेमी की उस मीठी बेताबी को दर्शाता है जो अपनी शर्मीली प्रेमिका के चेहरे से हटते हुए पर्दे और बिखरी जुल्फों का दीदार करने के लिए बेचैन है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मिट्टी खपरेल वाला वो घर जहां मेरा जन्म हुआ आज भी गाँव में सलामत है, साल में एक दो बार जाता हूँ। ये मैं पूछने भी वाली थी श्रोताओं आपसे कि मिट्टी के जो घर होते हैं उनकी अगर कोई यादें आपके साथ हों, यानी गांव के घर, गांव में खासकर देखा जाता था पहले और अब तो वैसे सब जगह ईंट और सीमेंट की ही पक्की दीवारें हुआ करती हैं, लेकिन आज भी देखने को मिलता है घर भले ही मिट्टी की दीवारों का हो लेकिन जो दिल की दीवारें होती थी वो बड़ी मजबूत होती थी। तो ऐसे घरों की जो यादें हैं वो आप जरूर हमसे ताज़ा करें। और क्या कभी आप अपने घरों में यानी पुराने घर में कभी लौट कर जाते हैं? अगर जाते हैं तो ये भी हमें ज़रूर बताएं। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आजकल तो दीवारों पर कुछ ना नज़र आए तो अच्छा लगता है। बच्चों को पहले हम न जाने क्या क्या हाथों से बनाते और लगा देते थे, कई तोरण बनाए हर साल दिवाली पर, कुछ नया सा तोरण अब सब बाजार में मिल जाता है पर उसमें वो खुशबू नहीं होती और नहीं वो प्यार जो खुद बनाकर लगाने में मिलता है, वो खुशी कहीं खो सी गई है। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि जो गीत आज के हैं उनके बारे में लिखा है कि बेमिसाल गीत हो सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन में जब छुपन छुपाई का खेल खेलते थे तब दीवार की तरफ दोनों हाथों के बीच छुप कर मतलब सब छुप जाते होंगे और कितनी प्यारी यादें इन दीवारों से जुड़ी हैं। आज वो सब तो नहीं पर हाँ कभी अपनी तो लगती हैं ये दीवारें। जी हाँ जरूर होती हैं अपनी। एक और श्रोता लिखते हैं कि कुछ दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनती, उनमें हमारी पूरी जिंदगी बसती है, बचपन की शरारतें, माँ बाबा की आवाजें, हंसी आंसू, त्योहार और ना जाने कितनी यादें। घर छूट जाता है मगर उन दीवारों में बसा बचपन दिल से कभी जाता नहीं। तो ऐसे बहुत सारे खूबसूरत संदेश हमारे पास आए हैं और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप तक इन बातों को पहुंचाया जाए। वैसे शादी ब्याह की भी बड़ी सारी यादें होती हैं, वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। संगीतकार आपको बताने हैं श्रोताओं और कलाकार

देवर फिल्म का ये गीत था शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि दीवारें भी कितनी खास होती हैं, इन्हीं के बीच हमारा बचपन हंसता है, रिश्ते पलते हैं और जाने कितनी यादें चुपचाप बस जाती हैं, घर से दूर हो जाएं तो भी उन दीवारों में बसा अपना संसार दिल से कहां दूर होता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी लगता है बिछड़ना सिर्फ इंसानों से नहीं जगहों से भी होता है जहां हमने अपने हिस्से का समय जिया है। घर की सीढ़ी, छत का वो कोना, आंगन की दीवार, बरामदे की वो कुर्सी और लेस लगी वो कवर कुर्सी, खिड़की, ये सभी हमारे भीतर बस जाते हैं। आप श्रोताओं, आपने बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं। कुछ एक घर का कोना होता है जिसमें रेडियो की भी बड़ी सारी यादें होती हैं। क्या आपके घर में भी रेडियो था? क्योंकि उस समय रेडियो बड़ा खास हुआ करता था और साइकिलें भी बड़ी खास होती थी जो लोग एक दूसरे को दिया लिया भी करते थे। ऐसे कुछ यादें हो तो आप ताजा कीजिए। लिखते हैं आगे की दीवार, बरामदे की वो कुर्सी और लेस लगी वो कवर कुर्सी, खिड़की, ये सभी हमारे भीतर बस जाते हैं। जब हम उस जगह पर लौटते हैं तो लगता है कि ये सभी हमारा राज जानते हैं और हमें हमारी राह दिखाते हैं। होगा शायद ये कुछ बताने के लिए, कुछ बिस्सी यादों को जानने समझने के लिए। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं अपने घर बिहार आज भी बड़ी शिद्दत से जाता हूँ। कुछ ज्यादा दिन हो जाते हैं तो ऐसा लगने लगता है जैसे आंगन हमसे रूठ गया हो और पूछ रहा हो इस बार इतने ज्यादा दिन क्यों लगा दिए। जब वहां पहुंचता हूं तो लगता है दीवारें मुस्कुराने लगी हों, आंगन में बहारें थम सी गई हों। और इनका और भी संदेश आप तक पहुंचाएंगे श्रोताओं, सुनाते हैं ये गीत।

घर की दीवारों किस्साए आज गीत हैं कार्यक्रम सुरीला सफर में। श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे पालकी फिल्म से। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक फरमाया है, राजेंद्र कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गीत था। सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की पुरकशिश आवाजें थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि दीवारें सदियों से न जाने कितने राज, न जाने कितने रहस्य अपने में समाये खड़ी हैं। अचल और अस्थिर दीवारें तो कमोवेश एक जैसी होती हैं, बस उनको देखने का नजरिया अलग अलग होता है। अतीत को छोड़ देना बहुत आसान होता है, मगर दीवारें सब जानती हैं। दुनिया की हर दीवार पर मन की व्याख्या अंकित है, बस समय पर हम उसे पढ़ नहीं पाते। चुप्पियां और दीवारों पर ठहरे हुए गहरे निशान प्रतिध्वनि को जन्म देते हैं। जहां सब समा जाता है वो अंततः मौन हो जाता है, इसलिए दीवारें भी मौन हैं। कुछ दीवारें ऐसी होती हैं श्रोताओं कि जिन्हें अक्सर लोग गिरा दिया करते हैं, यानी दिल की दीवारें। जी हाँ, इन्हें गिरा देना ही अच्छा होता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि दीवारें और छत आपस में जुड़कर मकान बनाते हैं और पारिवारिक सदस्यों के आपसी जुड़ाव से मकान घर बन जाता है। जहां हमारी संस्कृति और संस्कार इसी घर और परिवार के सदस्यों की पहचान बन जाते हैं। वैसे तो घर से जुड़ी हर चीज से हमारा जुड़ाव होता है, लेकिन कोई एक दीवार ऐसी होती है जो दिल से ज्यादा जुड़ जाया करती है। किसी दीवार में झरोखा, अलमारी, आला या कारनेस हुआ करता था। किसी एक दीवार में दर्पण होता था जिसमें हम अपने आप को से बातें किया करते थे, जो कि उस दीवार से हमारा जुड़ाव एक खास वजह से हो सकता है। घर की दीवारें आधार होती हैं और हमारे मन में पनपी शंका या गलतफहमी की दीवारें संबंध को तोड़ देती हैं। कुछ एक घर का कोना होता है।

श्रोताओं, इस फिल्म को आपको पहचानना है और गीतकार बताने हैं। इस बड़े ही मकबूल गीत के गीतकार का नाम आपको बताना है। आप बता दें तो क्या ही बात है। एक और श्रोता ने लिखा है हमारे कि हमारे जीवन के सबसे मासूम और खूबसूरत दिनों की गवाह होती हैं ये दीवारें। जब बचपन में भाई बहनों के साथ छुपन छुपाई का खेल होता था तो इन्हीं दीवारों के एक कोने या अलमारी के ओट में छुपने की महफूज जगह होती थी। वक्त के साथ आदमी भले बड़े हो जाते, बचपन में जो दीवारों पर बनाई गई आड़ी तिरछी लाइनें, जो लिखावट और कार्टून बनाने का जो एक कार्टून बनाने की जो नाकाम कोशिश थी, और अपने नाम को लिखने की जिद और माँ पापा की डांट आज भी बहुत याद आती है। ऐसा हमारे इन श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी नानी का घर पहले कच्चे घर रहते थे, वैसा था, अब बहुत अच्छा बन गया है। और आज भी जब कभी जाते हैं तो आंगन, वो दलान सब याद आती है। नानी के घर की ओर जो बैठक रूम था उसमें जो कि आपने पूछा कि साथ में एक बड़ा सा रेडियो रखा रहता था नाना जी का, और हम सभी बच्चों को कंपलसरी रहता था न्यूज़ सुनना। तो हम लोग न्यूज़ सुनने के बाद नकल भी बहुत करते थे। अब आप सुनिए ऐसे मतलब बोलते थे, हम लोग रेडियो खेलते थे, तो हम लोग इसी टाइप से खेल खेलते थे, समाचार वाचक बनकर या उद्घोषक बनकर। बड़ा मजा आता था, उन दिनों की आज याद पूरी ताजा हो गई। एक और श्रोता ने लिखा है कि वो दीवारें आज भी याद आती हैं, जहां बचपन बीता वो मिट्टी की दीवार, वो फूस का घर जहां पानी की बूंदें भीगती तो सब भीगा भीगा सा लगता, वो हवा के झोंके, बिजली का चमकना, ऐसा लगता था मानो वो चारों दीवार के अंदर भी डर लगता था। आज सब कुछ बदल गया है, मगर कुछ नहीं बदला तो वो बचपन की यादें, वो मिट्टी का घर बहुत याद आते हैं। दिल यही कहता है कोई लौटा दे बीते हुए दिन। एक और श्रोता ने लिखा है कि इतना रोए थे लिपटकर दरों दीवार से हम, शहर में आके बहुत दिन रहे बीमार से हम।

ये गीत था श्रोताओ गंगा मैया तो है प्यारी चढ़े हुए इस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में और कुमकुम नजर आती हैं इस गीत में। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत घर और घर की दीवारों के उस पार ले चलने वाली है। सिर्फ पत्थर और सीमेंट से नहीं बनता, इसमें परिवार के हर सदस्य के प्रेम भाव रूपी सीमेंट भी जरूरी है और जो हर सदस्य को मजबूती से जोड़े रखती है। उस पर घर के अंदर रेडियो पर जब विविध भारती चल रही हो तब सोने पर सुहागा हो जाता था। रेडियो से जुड़े बचपन की वो दिन जो है वो याद आते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि एक दीवारों में पहले एक स्पेशल स्थान था। बचपन में चौक से पहले जो ड्राइंग निकाली टेढ़ी मेढ़ी वो दीवारों पर निकली। पिताजी मेरे और भाई जो थे वो चित्र निकालते थे। हमारे परिवार की बातें इन्होंने लिखी हैं कि माँ बोलती थी कि दीवार के भी कान होते हैं, तो हम बच्चे उनको ढूंढने जाया करते थे। और सच में जैसा पुराना घर था वैसे लोग के मन थे। मिट्टी जैसे सुगंधित लेकिन मजबूत, पहले महंगी डेकोरेटिव पीसेस नहीं थी लेकिन दीवारों पर वार्ली पेंटिंग्स दीवार सजाती थी। जी हाँ, वार्ली पेंटिंग्स जो होती है श्रोताओं, वो चावल को भिगोकर उसमें जो सफेद लेप होता है उससे बनाई जाती है और काले रंग से भी बनाई जाती है। ये महाराष्ट्र के आउटस्कर्ट्स में होती है जो वार्ली जनजाति द्वारा बनाई जाती है। तो ये बड़ी सुंदर बात इन्होंने लिखी है। आप जो है अगला गीत, इसमें कौन से कलाकार हैं वो आपको पहचानने हैं। और ये दीवारें आप देखिएगा श्रोताओ, मिट्टी से बना ये घर, इनकी कुछ यादें हैं तो आप साझा कीजिए। और हमने आपसे कहा था कि क्या कोई पशु आपने पाल रखा था, या क्या कोई पंछी आपकी दीवारों पर आता था, या जब आपकी सहेलियों से साथियों से बातें होती थी तो क्या किसी दीवार से लगकर आप घंटों बातें किया करते थे।

आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म ठोकर से बलदेव खोसा और अलका पर फिल्माया गया। सर्जन दहलवी का लिखा ये गीत था श्याम जी घनश्याम जी की तरह थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन छूटा तो दरों दीवार आंगन घर का वो सामान सब यादों में सिमट गया। पुरानी यादों में खो गए क्या लिखें शब्द कम पड़ जाएंगे। खूबसूरत समय यादों में बसा है जिसे अकेले में बैठकर तस्वीरों से साझा करते हैं। दिल को आज भी उन्हीं लम्हों की याद आती है उन्हें खोजता है ये दिल। और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं श्रोताओं। और जो घर की यादें होती हैं घर की बातें होती हैं वो बड़ी ही आलीशान होती हैं। क्या इन घरों की मरम्मत इन दीवारों की मरम्मत आपको जरूरी लगती है जहां कभी गुड्डे गुड़ियों का खेल खेला था। ऐसी यादें ऐसी बातें भी आप हमसे जरूर साझा कीजिए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ श्रोताओं कि किसी घर के सामने आप पहुंचे जिस घर में आपको जाना था लेकिन उस घर के सामने आकर भी आप उस घर को पहचान नहीं पा रहे हैं या फिर किसी ने आपको भटका दिया कि ये वो घर नहीं है और उस घर को बाद में आपने दीवार से पहचाना। ऐसा कुछ गुंजा यानी साधना सिंह की जो फिल्म आई थी नदिया के पार इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि वो अपने ही घर का पता सचिन को नहीं बताती हैं। आपको फिलहाल ये कलाकार बताने हैं जो इस गीत में है।

हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे बचपन के वो दिन याद हैं जब कितनी मेहनत से हमारे पिताजी ने जमीन लेकर चार दीवार तो खड़ी की पर उस पर छत डालने में कितना कष्ट उठाया। उनका स्वास्थ्य, उनके पास धन की तंगी, सब मिलकर एक घर बड़ी मुश्किल से बनता है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है।

संजीव कुमार और रीटा हक्सर पर फिल्माया गया सूरज और चंदा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आपने श्रोताओं, मुझे तो वो नहीं मिला कमेंट, हमने आपसे पूछा था कि क्या कोई घर ऐसा था जिसे आप ढूंढने गए लेकिन उसके सामने ही खड़े होकर भी आपको पता नहीं चला कि ये घर वही है जहां आपको जाना है। वैसे हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा कमेंट लिखा है, लिखते हैं कि हाँ, मैंने पहले एक मुर्गा पाल रखा था जब मैं बचपन में था तो मेरी उम्र अब शायद लिखते होंगे या पहले के 38 साल की हो चुकी है, मैं शायद पहले दूसरी कक्षा में पढ़ता था। मैंने एक मुर्गा पाल रखा था, उसका नाम मैंने चित्र रखा था और वो जहां भी मैं जाता था मेरे साथ ही जाता था कुट कुट करता हुआ। एक बार मेरे चाचा के यहाँ बैल बंधे हुए थे ऐसा इन्होंने लिखा होगा शायद, और वहीं पर जाता था बार बार तो कुछ तो बिखेर देता था वहां पर, तो चाचा ने मुर्गी को मार डाला तो मैं कम से कम 2 दिन तक रोटी नहीं खाया। इन्होंने जब बहुत माँ बाप ने समझाया तब जाकर मैंने सोचा कि छोड़ो।

बीना रॉय और प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया ताजमहल फिल्म का ये खूबसूरत नगमा आप सुन रहे थे। श्रोताओं, तो कुछ ना कुछ वादा तो आपने भी अपने घरों की दरों दीवारों से जरूर किया होगा उनको दुरुस्त करने का, और ये वादा कि वहां लौटकर फिर से आने का। तो आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम सुरीला सफर यहीं संपन्न होता है। आप रहिए रेडियो विविध भारती के संग।

श्रोताओं नमस्कार। त्रिवेणी में आज बातें पशुओं की। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वर्षों से मनुष्य का पशुओं के साथ कुछ अलग ही नाता रहा है। जहां कुछ पशु वनों और गहन जंगलों में ही वास करते रहे हैं, वहीं कई जानवरों ने मनुष्य का साथी बनकर उनका हाथ बटाया है, जैसे कि गाय, बैल, घोड़े जैसे जानवर हमें अलग अलग तरह से सहायता करते रहे हैं। पुराने समय में हमारे आवागमन और कृषि के लिए हमने इनकी मदद ली है। मनुष्य केवल इनसे सहायता ही नहीं लेता रहा है, बल्कि इन पशुओं को अपने साथियों के रूप में पाता है। वैसे एक समय था जब गाय, बैल, घोड़े के अलावा बंदर, भालू और हाथियों को भी पाला जाता था और वो साथी होने के साथ साथ जीविका का साधन भी बनते थे।

एक लंबे समय तक मनुष्यों ने पशुओं को अपनी आजीविका का साधन बनाकर उनका दोहन भी किया। वहीं सर्कस और सड़कों पर तमाशों के जरिए भी कई ऐसे जीवों को उनके आवास से दूर किया जिनके लिए मनुष्यों की बस्तियों में रहना उचित नहीं था। जल्द ही हम पशुओं के अधिकारों को लेकर जागे और हमने पशुओं के लिए उनके अनुकूल वातावरण और आवास बनाए। इससे पशुओं और मानवों के बीच एक संतुलन कायम हुआ। इस तरह हम पशुओं के मित्र बन गए और पशुओं ने तो अपनी मित्रता सालों साल निभाई है, खासतौर से पालतू पशुओं ने, जैसे कि बिल्ली।

जब भी पालतू पशुओं की बात करते हैं तो बिल्ली के साथ साथ श्वान यानी कुत्तों का उल्लेख भी आता है। कुत्ते को एक वफादार जानवर कहा जाता है। जब भी वो किसी व्यक्ति के परिवार या जीवन का हिस्सा बन जाता है तो उसका साथ अंतिम समय तक निभाता है। कुत्तों की वफादारी और उनके सूंघने की शक्ति का ही परिणाम है कि वो न सिर्फ आम घरों में हमारे साथ होते हैं बल्कि पुलिस और सेना में भी भर्ती होकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। केवल इन्हें पालना ही हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है बल्कि इनकी सही देखभाल, खान पान का ख्याल रखना और समय समय पर जरूरी चिकित्सा और टीकाकरण करवाना भी आवश्यक है। तभी तो हमारे ये साथी हमारे साथ मजे से खेलता नजर आएगा।

आज विश्व पशु दिवस के मौके पर पशुओं के संरक्षण और उनकी प्रजातियों की सुरक्षा तो सुनिश्चित कीजिए ही, साथ ही उनके प्रति होने वाली क्रूरता को रोकने का प्रण भी लेते हुए एक बेहतरीन मनुष्य बनने का संकल्प लें। इसी संदेश के साथ आज की त्रिवेणी से दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में भी प्रवेश कर रहा है।
1: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I'm sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
0: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना मजबूत हुई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस योजना का उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। योजना के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़, राज्य सरकार 20,000 करोड़ और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा। देश में सरकारी और निजी आईटीआई की संख्या 2014 में 9,000 से अधिक थी, जो 2026 में बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गई है। पीएम सेतु योजना के तहत अब तक 850 आईटीआई को चुना गया है। इनमें

0: 172 हब आईटीआई और 678 स्पोक आईटीआई शामिल हैं। योजना के तहत 200 आईटीआई क्लस्टर में इसे देश भर में लागू करने की मंजूरी दी गई है। 14 आईटीआई क्लस्टर के लिए 3,446 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजना को मंजूरी मिल चुकी है। आनंद और रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज की विशेष श्रृंखला में असम में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की जानकारी दी जा रही है। इस हवाई अड्डे के कारण अब पूर्वोत्तर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार बन गया है।
2: असम का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक क्षेत्रीय ट्रांजिट केंद्र से विकसित होकर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित हो गया है, जो पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को नई गति दे रहा है। प्रकृति से प्रेरित नए एकीकृत टर्मिनल 2 पर केंद्रित इस विशाल विस्तार परियोजना को केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को इस अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया था और 22 फरवरी 2026 को इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। नई सुविधा के साथ हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता बढ़कर 1,30,00,000 से अधिक हो गई है। टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस प्रकार का बुनियादी ढांचा और अन्य विकास परियोजनाएं युवाओं के लिए एक नए अवसर सृजित करती है।
3: इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश भारत की विकास यात्रा की पहचान बन रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता है, लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता है और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं।
2: दक्षिण पूर्व एशिया के रणनीतिक संपर्क बिंदु पर स्थित यह उन्नत हवाई अड्डा बैंकॉक, पैरो और सिंगापुर जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सुगम हवाई संपर्क प्रदान कर रहा है, जिससे असम भारत के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त बना रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमरीका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में 2 नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों को छोड़ा। श्री यादव ने कहा कि ये उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को जंगल में छोड़ने से इनके संरक्षण में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी पर चुप्पी साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि पूरा राष्ट्र कैप्टन स्मिथ के असाधारण साहस से गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि जहां कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की भारत और विश्व में प्रशंसा हो रही है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व इस उपलब्धि पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपना वोट बैंक खोने के डर से मौन है। दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हूतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सना और सदा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है।
5: हूती विद्रोहियों के दियात पर हमले के दावे को सऊदी अरब ने खारिज कर दिया है। सऊदी पक्ष ने कहा है कि यमन में मिली हार के चलते हूती एक इल्यूजरी विक्ट्री का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हूतियों ने दावा किया था कि उन्होंने रियाद के पास अरामको की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया और उनके मिसाइल और ड्रोन हमले टारगेट पर भी लगे। वही यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी आर्म फोर्सेस ने तैज और तूर अलबहा में हूती ठिकानों के खिलाफ 97 ऑपरेशन किए। इन ऑपरेशन में 260 हूती लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करने और 44 मिलिट्री व्हीकल्स और सप्लाई एसेट्स को नष्ट करने का दावा किया गया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा कि ताइज में हुए नुकसान के बीच हूती समूह अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हूतियों की अपने नुकसान से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अमरीकी तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि बरमूडा से बोस्टन जा रहे लापता चिकित्सा विमान का मलबा नेटकट तट के पास मिल गया है। इस विमान में कनाडा के 4 और बरमूडा के 2 नागरिक सवार थे जिनकी तलाश की जा रही थी। कनाडा के परिवहन मंत्री स्टीवन मैकिनॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। जापान के नागोया में एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह कुछ ही देर में 2:30 बजे शुरू होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि महिला निशानेबाज नीरू ढांडा भारत की ध्वजवाहक होंगी।
6: एशियाई खेलों में भारत शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई भी कर लिया है। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रच दिया। गोल्फ में प्रणवी उर्स एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक हासिल किया। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। जबकि कुमकुम मोहत व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी। तीरंदाजी में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते। समाचार कक्ष से कनकलता।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ क्षेत्रों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वायुसेना ने आज कई शहरों में सैकड़ों भारतीय वायुसेना मैराथन आयोजित की। इनमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने नई दिल्ली में दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर वाइस मार्शल शेखर यादव ने संवाददाताओं से कहा कि मैराथन फ्लाइंग ऑफिस

0: सर निर्मलजीत सिंह सेखों की स्मृति में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 86 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

विविध भारती से लीजिए पेश है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

0: फिल्म तीसरी कसम में आपने सुना आशा भोसले की आवाज, शैलेंद्र के बोलों को सुरों में ढाला शंकर जयकिशन ने, और इस गीत के पहले श्रोताओ दिल ही तो है फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था मुकेश की आवाज में। साहिल लुधियानवी के बोलते रोशन का संगीत था।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
3: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
3: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज। आपकी

0: सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आकाशदीप इस फिल्म का गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुर में ढाला चित्रगुप्त ने। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे में।

0: आप सुन रहे थे लागी छूटे, लागी नहीं छूटे राम, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी,
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

मोहम्मद रफी की आवाज फिल्म तीसरी मंजिल। मजरू सुल्तान पुरी के बोल राहुल देव बर्मन की तर्ज।

0: सी रामचंद्र की तर्ज साहिर लुधियानवी की बोल लता मंगेशकर की आवाज फिल्म बहू रानी का ये गीत था सदाबहार नगमे। ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

श्रोताओ नमस्कार, आपके रेडियो सेट पर आ चुका है आप ही के मनचाहे गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। आज इस प्रोग्राम में कौन कौन से गीत शामिल हैं और किन श्रोताओं की फरमाइशें शामिल हैं, इन बातों के लिए चलिए मनचाहे गीत कार्यक्रम के सफर में चलें हम और आप साथ साथ बनाकर आपके मनचाहे गीतों को अपना हम सफर। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

आप सुन रहे थे चरस फिल्म का गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की आवाजों में। आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। विनय अवस्थी ने इस गीत को पसंद किया। पालमपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के ये हमारे श्रोता हैं और इसी गीत की फरमाइश की अम्बाला कैंट हरियाणा से रतन लाल, विनोद कुमार, साहिल, सुदेश और मनीषा ने इस गीत को सुनना चाहते थे। काशी निवास बंगाली पंजाब महाराष्ट्र के हमारे श्रोता प्रकाश रंभांडे, भारती रंभांडे, नागपुर के श्रोता टोनी बोरकर, ललिता बोरकर की ये फरमाइश थी। रामनगर जिला गुना के हमारे श्रोता ज्योति प्रजापति, नरेश प्रजापति, सार्थक प्रजापति और पालदा नाका इंदौर के हमारे श्रोता हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी की फरमाइश हमने आपको सुनवाई और इसी गीत को सुनना चाहते थे। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मित पंचोलिया।

रूप तेरा मस्ताना फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर किशोर कुमार का गाया, असद भोपाली के बोलों को सुर में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुना चाहते थे बड़ोड़ा करेली बाग के हमारे श्रोता हर्ष, राधे, पारस, पूजा, रचना और इनके परिवार के सभी सदस्य, कटोल जिला नागपुर से सुरेश मलमकर, श्रीमती रजनी मलमकर की ये फरमाइश थी। और रेलवे कॉलोनी डी ब्लॉक आनंद विहार के हमारे श्रोता किशन वंजानी, नीलम वंजानी, स्वाति और कीशु वंजानी की ये फरमाइश थी। और ये हमारे श्रोता हैं इंदौर आड़ा बाजार के प्रतिभा पंचारे बबलू जिया राशि, नेहा मनीष शर्मा और भावना के साथ साथ एक और नाम है आशीष जाधव का। और ये हमारे श्रोता हैं आरुष आर कम्मत, इन्होंने कोची केरल से ये फरमाइश भेजी थी।

कैथल हरियाणा के हमारे श्रोता सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा, पूनम वर्मा, पूजा वर्मा ने इस गीत को पसंद किया। दत्तारेंगी भाटापारा से हीरामन वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र चिंतामणि और नोखिलाल वर्मा की फरमाइश थी। प्रबोध चंद्र कंडपाल, रेणु कंडपाल, अंजलि कंडपाल की ये फरमाइश आई इंदौर से। और गजवाटांड धनबाद से हमारे श्रोता हैं शाहीन बानो, समीना बानो, नाजिया और सायका बानो, और इसी गीत को सुनना चाहते थे। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र के हमारे श्रोता सिद्धार्थ गुंडा ने, अर्चना गुंडा ने और इनके प्रतिभा पद्माकर गुंडा ने और इनके परिवार के सभी सदस्य पगला कहीं का इस फिल्म का गीत इन्होंने सुनना चाहा था। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आपने सुना। नगमा निगार हसरत जयपुरी, मौसकार शंकर जयकिशन थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

फिल्म जंगली में आपने सुना मुकेश और आशा भोसले की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल थे, तर्ज थी शंकर जयकिशन की। इस गीत की फरमाइश भेजी जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र के हमारे श्रोताओं ने, जितेंद्र वाघमारे, प्रतिभा वाघमारे, मितांश वाघमारे और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश थी। ग्राम दरचुरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा मोतीलाल साहू ने इस गीत को पसंद किया। नूरे मुजस्सम रौमा, दिलावर हुसैन रौमा, अजहरुद्दीन तमामुद्दीन रौमा, इनकी फरमाइश है तहसील मालिया मियाना से। और परवेज अहमद, शहजाद अहमद, सरफराज अहमद, ये हमारे श्रोता हैं काशीपुर खालसा के, और इस गीत को सुनना चाहते थे जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चौरसिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया की ये फरमाइश है श्रोताओं।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में आंखें फिल्म का गीत, साहिल लुधियानवी का लिखा, रवि का संगीत था। अनारकली बाजार जगराओ के हमारे श्रोताओं ने इस गीत को पसंद किया। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका और सुच्चा सिंह पाठक ने इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे। नाचन गांव, जिला वर्धा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से आरती भगत, विशाली पूर्वी भगत, लता प्रदीप, विशाल भगत ने इस गीत को पसंद किया और इनके साथ ही रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश। अकोले संगम विहार दिल्ली के हमारे श्रोता हैं रणधीर गुप्ता, बबिता सल, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता, राजकुमार, भगवती, शकुंतला और ये हमारे श्रोता हैं, इन्होंने रामनगर जबलपुर मध्य प्रदेश से फरमाइश भेजी है। भगवान दास, सियाबाई, राजकुमार और दिनेश कुमार की ये

फरमाइश है और ये ही नाम इसमें है। और लेक सिटी उदयपुर के हमारे श्रोता प्रकाश चंद्र, अमिता, इंदिरा देवी, शैलेंद्र बाबू, अरुष जी और नेहा अमेटा ने इस गीत को सुनना चाहा था। और यही थी श्रोताओं मन चाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आज का मन चाहे गीत प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। आप रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग और मन चाहे गीत में अपना साथ बनाए रखिए। भेजते रहिए अपने पत्र। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग, आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं असद जैदी का लिखा नाटक वायलिन वादक। निर्देशक हैं मदन शर्मा।
1: मैं सूत्रधार हूं और इस नाटक में बीच बीच में इसी तरह टपकता रहूंगा।
2: जिंदगी के इस नाटक को समझना आसान नहीं होता। मैं अपनी जिंदगी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं अपनी मर्जी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं चाहता हूं घटनाओं पर मेरा स्वामित्व हो। मैं चाहता हूं बस मैं यही चाहता हूं कि मैं कुछ चाहता हूं। क्या कुछ पता नहीं।
3: अनाम भैया, वॉलन सुनाओ ना।
2: हाँ, जरूर सुनाऊंगा ऋतु, अभी सुनाता हूँ।

0: पूछू ना भैया?
1: पूछो।
0: ये वॉयलिन तुम कहां से लाए?
1: ये वॉयलिन
2: बेटे अनाम, कहाँ जा रहे हो?
1: बाजार माँ।
2: अरे कुछ पहन कर नहीं जाओगे? बाहर बहुत सर्दी है।
1: अरे माँ कुछ नहीं होगा।
2: लो अपना गला अच्छी तरह ढक लो। ये कोट के बटन भी तो बंद कर लो, सर्दी तेज है।
1: अरे माँ।
2: अरे हाँ बेटे, आज तुम्हारा जन्मदिन है, क्या लाऊं तुम्हारे लिए?
1: अरे माँ पैसे कहाँ है तुम्हारे पास?
2: इस महीने की तनख्वाह में से बचा कर रखे थे।
1: तब तो जो मर्जी आए ले आना।
2: मैं तेरे लिए वॉयलिन लाऊंगी। मैंने आज मिस्टर बत्रा से पूछा था, उन्होंने कहा कि बेटे के लिए वॉयलिन खरीदो। मैंने उन्हें तुम्हारी रुचियां बताई थी।
1: माँ ये मिस्टर बत्रा कौन है?
2: हमारे स्कूल में नए टीचर आए हैं, हिंदी पढ़ाते हैं और नाटक खेलते हैं।
3: ये थी अनाम की 18वीं सालगिरह। माँ के दिए हुए वायलिन को उसने सीखना शुरू कर दिया। उसे लगा वायलिन के रूप में उसे जिंदगी की नई खुशी मिल गई है। अनाम का कॉलेज सुबह का था और माँ जिस स्कूल में पढ़ाती थी वो शाम का था। अनाम कॉलेज से घर लौटता, माँ के हाथ से खाना खाता। जब माँ स्कूल चली जाती थी तो अनाम का वक्त काटना मुश्किल हो जाता। वायलिन आने पर उसका वक्त आसानी से गुजरने लगा। एक दिन की घटना है।
2: अनाम बेटे, तुम्हारे कॉलेज के नाटक का क्या हुआ?
1: अच्छा गया माँ।
2: तेरा रोल तो अच्छा रहा ना?
1: बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं स्टेज के पीछे रो दिया था।
2: क्यों?
1: माँ वो मैं श्रवण कुमार बना था। जब राजा दशरथ अंधेरे में पानी भरते हुए श्रवण कुमार को तीर मार देता है तो
2: क्या
1: मेरा रोल खत्म।

0: हो गया। मैं रोल खत्म होने पर स्टेज के पीछे खड़ा हो गया, मगर रोल सर से उतरा नहीं था। जैसे ही श्रवण कुमार के माँ बाप ने रोना शुरू किया, मेरे भी आंसू आ गए। सच, मुझे तुम याद आ गई माँ।
1: बेटे तुम बहुत भावुक हो, बहुत भावुक।
2: यही था वो अनाम जो जीवन के 18 बसंत गुजार कर भी बच्चा ही बना हुआ था। मां उसका संसार थी, उसकी सारी चीजें मां के इर्द गिर्द केंद्रित थीं, क्योंकि जब से उसने होश संभाला तभी से उसके लिए सिर्फ मां थी। पिता सड़क दुर्घटना में मारे गए थे, इसलिए अनाम की मां को स्कूल में नौकरी करके वैधव्य के लंबे दिन गुजारने पड़े। एक दिन की बात है।
3: अनाम, अनाम।
0: क्या बात है माँ?
1: अनाम, मिस्टर बत्रा ने तुम्हें बुलाया है, वो तुम्हें अपने नाटक में लेना चाहते हैं।
0: लेकिन माँ, वो तो मुझे जानते ही नहीं।
1: जानते हैं, जानते हैं। मैं तुम्हारे बारे में उनसे बात किया करती हूँ।
0: अब ठीक है माँ, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा।
1: नहीं, अकेले ही जाना।
0: क्यों?
1: मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा।
0: मगर क्यों माँ?
1: वो तुमसे अलग से बात करेंगे, मेरे साथ चलने से क्या होगा? आखिर रोल तो तुम्ही को करना है।
0: माँ, माँ।
1: आ गए तुम?
0: अच्छा नहीं रहा माँ।
1: क्यों?
0: वो उन्होंने नाटक के बारे में तो कोई बात ही नहीं की, बस मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते रहे, रुचियों के बारे में पूछा, मेरे दोस्तों साथियों की बात, आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हो, बस ऐसी ही बातें।
1: ठीक तो है, वो तुम्हें समझना चाहते होंगे, तुम्हारे बारे में जानना चाहते होंगे।
0: अब मुझे तो वो पसंद नहीं आए माँ।
1: क्यों?
0: बस कुछ आदमी पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते।
1: ये बचपना छोड़ो अनाम, इस तरह नहीं कहा करते, मिस्टर पत्रा बहुत अच्छे आदमी हैं।
0: होंगे मगर।
1: अनाम।
0: माँ, इसमें नाराज होने की क्या बात है? ठीक है माँ, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें दुख होगा। तुम चाहोगी तो मैं उनके नाटक में काम करूंगा। आज उन्होंने मुझे कुछ ऐसी नजर से देखा कि मैं बहुत परेशान हो गया, बस इतनी सी बात थी।
1: अनाम, अब तुम जवान हो, समझदार हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
0: मुझे दुख है माँ।
2: मिस्टर बत्रा के बारे में अनाम की बात सुनते ही माँ कितनी विचलित हो गई। माँ की वो संदेह भरी नजर, चेहरे पर अचानक चौंकने का ये भाव, नाराजगी भरी आंखें, अनाम को पहली बार माँ के साथ ये तजुर्बा हुआ। इस तजुर्बे से अनाम को धक्का लगा। मिस्टर बत्रा से मिलना अनाम को अच्छा नहीं लगा, और अनाम सोच भी नहीं पाया कि माँ को इससे दुख होगा। मिस्टर बत्रा के शुरू किए गए नाटक सुंदरता के सभी शिकारी में अनाम ने काम करना शुरू कर दिया। रिहर्सल होने लगी। रिहर्सलों के दौरान माँ मौजूद रहती, वो लगातार मिस्टर बत्रा से पूछती रहती,
1: कहिए बत्रा साहब, अनाम ठीक चल रहा है ना? एक्टिंग तो ठीक करता है। बस बस बस, यही कसर है, मगर सुधार से लेगा ना। हाँ, मुझे भी डर था, मगर ठीक है। बस बस बस, ज्यादा तारीफ मत करिए। आप उसे खुश तो है ना? बहुत बहुत शुक्रिया बत्रा साहब, सो काइंड ऑफ यू। प्लीज प्लीज बत्रा साहब, इसे मुझसे ना होगा, इसे मुझसे ना होगा, इसे मुझसे नहीं होगा, इसे मुझसे नहीं।

0: जानती हूँ, मैं अपना खुश रहने की कोशिश करूंगी।
1: अब तो आप जान ही गए होंगे प्रिय श्रोतागणों कि नाटक एक नहीं दो चल रहे थे। एक नाटक का नाम सुंदरता के सभी शिकारी और दूसरा नाटक ऐसा था जो जिंदगी के वास्तविक रंगमंच पर खेला जा रहा था, मिस्टर बत्रा और अनाम की मां के बीच, जिसमें अनाम भी था। इस दूसरे मगर अदृश्य नाटक में फंसे अपने तीनों पात्र कुछ अरसे तक अपनी अपनी दिशाओं में चलते रहे और अपने अपने अंतर्द्वंद्वों का शिकार होते रहे। अब यह जानना कतई जरूरी नहीं कि कब क्या कैसे हुआ, मगर एक दिन अनाम ने मां से कह दिया कि आगे से वो रिहर्सलों में ना आए।
0: आखिर क्यों?
2: अच्छा नहीं लगता मां, बत्रा साहब अच्छे डायरेक्टर
0: वे चाहे ना हो, वो अच्छा आदमी जरूर है अनाम।
2: नहीं मां, मेरा मतलब उनकी बुराई से नहीं था, मगर तुम रोज रोज रिहर्सल में बैठी रहती हो, ये अच्छा नहीं लगता।
0: देखो अनाम, तुम अपने मन से उल्टी सीधी बातें निकाल कर फेंक दो।
2: बुरा मत मानो मां, मैं तो ना समझ हूं, बच्चा हूं, मगर मां मेरे लिए संसार का अर्थ ही मां है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता मां, तुम का मतलब होगा संसार को खो देना।
1: और मां अनाम की कल्पनाओं के अंधेरे में हवा के उजले झरोखे सी मां अपनी उलझने लिए मिस्टर बत्रा के पास पहुंची।
0: अनाम ने कभी मुझसे अपने आप को काट कर नहीं देखा, बचपन से ही उसके साथ सिर्फ मैं रही हूँ, मेरे साथ उसके विचार चले हैं। मिस्टर बत्रा, अनाम नादान है, लड़कपन से आगे वो निकल नहीं पाया है। ये पहली बार हुआ है कि उसने मेरी बात की अवहेलना की और मेरे रोकते रोकते आप पर अपनी नापसंदगी की मोहर लगा दी है। कुछ कहिए मिस्टर बत्रा, चुप मत रहिए।
1: क्या कहते श्री बत्रा या कोई और? जिंदगी का अकेलापन कहीं तो 20-20 साल तक आपको नहीं खाता, और जब खाने लगता है तो एक दिन भी उसकी पूरी गिरफ्त में आने के लिए काफी है। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए और तसल्ली से बत्रा साहब से बातें कीजिए, जिनकी जिंदगी के 40 बरस कोरे गए, वे अब एहसास की तहरीरें देख रहे हैं। दूर समंदर में उठती किनारे की रोशनियों से जगमगाती लहरों की तरह उनके अंदर विचारों का उठाव है। द्वंद्व में सिर्फ आप ही नहीं हैं।
0: अनाम बच्चा है, वो नहीं समझेगा एक औरत की तकलीफ।
2: न मां कुछ समझेगी न मैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, और अब मैं भी अपनी नाराजगी वापस कैसे लूं?
1: अंतर्द्वंद्व चलता रहा, मां और बत्रा, बत्रा और मां। अनाम ने देखा कि संसार का सारा अर्थ सिमट कर मां के लिए सिर्फ बत्रा रह गया है। वो देखता रहता, रिहर्सल करता रहता, देखता रहता। रात होती, घर आता, मां कहती खाना खा, अनाम आता खाना खाता। मां कहती वायलिन ना बजा, जा बिस्तर में जा, जाकर सो जा। आ,
3: आ, आ, अनाम, खाना खा,
4: चल
3: घर चल,
4: जा
3: बाजा बजा,
4: बाजा बजा,
3: जाकर सो
4: सो जा,
3: चल
4: उठ
3: उठ कर हाथ मुंह धो,
4: हाथ मुंह
3: धोकर
4: नाश्ता कर,
3: चल
4: स्कूल चल,
3: आ अनाम,
4: आ
3: नाटक कर,
4: कर
3: नाटक कर,
4: अच्छा अभिनय कर,
3: चल
4: तू
3: उत्सव तू
4: हंस
3: खुलकर हंस,
4: आ
3: बाजा बजा,
4: वायलिन
3: बजा,
4: बस
3: बंद कर
4: अब बंद कर,
3: चल
4: कहना मान
3: आज्ञा
4: मत टाल,
3: खुश
0: रहे, बहुत अच्छा आदमी।

0: मिस्टर बच्चा बहुत अच्छा आदमी है, मिस्टर बच्चा बहुत अच्छा आदमी है। नहीं अकेले ही जाना, मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा, मेरे साथ चलने से क्या होगा? मैं तेरे लिए बॉय नहीं हूँ। मैंने आज मिस्टर बच्चा से पूछा था, उन्होंने कहा
1: अनाम
0: के लिए बॉय नहीं।
1: अनाम, अनाम क्या हुआ बेटे, क्या तुम डर गए थे? सपनों में डरो मत बेटा, डरो मत।
2: हाँ माँ, सपना था, सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के बाहर सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के बाहर सपना।

0: बस रितु,
1: और बजाओ ना नाम बजाओ।
0: बस रितु अब कल।
1: अच्छा अनाम भैया, आपकी मम्मी कहाँ गई?
0: मेरी मम्मी? पता नहीं रितु, मेरी मम्मी कहाँ गई? तुम्हारी मम्मी तो है ना?
1: मेरी मम्मी घर पर है, आपको मेरी मम्मी के पास ले चलूं?
0: नहीं रितु।
1: क्यों?
0: वो मुझे मेरी मम्मी याद आ जाएंगी।
1: अच्छा नाम भैया, मैं चलती हूँ।
2: अनाम, अनाम, अनाम।
0: हाँ?
2: ये वायलिन बंद करो, पहले मेरी बात सुनो।
0: सुन रहा हूँ।
2: मेरी बात टालोगे तो नहीं?
0: क्या बात?
2: इतने ठंडे सुर में क्यों बोलने लगे हो तुम अनाम? बेटे, मैं मिस्टर बत्रा से शादी कर रही हूँ। तुम्हारी क्या राय है?
0: मेरी राय कैसी?
2: तुम्हें दुख है?
0: कोई दुख नहीं, अच्छी बात है।
2: मेरी मर्जी पर चलोगे नहीं?
0: किसने कहा?
3: अनाम की मां अब मिसेज बत्रा हो जाती हैं। अब सिचुएशन यह है कि अनाम महोदय बेचैन है। घर पर ताला लगाकर वे अपनी मां के साथ अपने नए पिता के घर आ गए हैं। उनका मन बैरागी हो गया है।
2: अनाम, दिन भर से कहां गायब थे?
0: बाहर था।
2: बाहर से मतलब? मैं पूछ रही हूं कहां गायब थे?
0: शहर में घूम रहा था।
2: देखो अनाम, ये वायलिन उठाकर दिन दिन भर आवारागर्दी करना, किसी से बोलना ना चालना, पढ़ाई में मन ना लगाना।
0: बस करो माँ।
2: तुम्हारे पिता कह रहे थे तुम आज रिहर्सल में भी नहीं आए, ये सब कब तक चलेगा आखिर?
0: ठीक है।
2: क्या ठीक है?
0: आगे से ख्याल रखूंगा।
2: कहाँ जा रहे हो?
0: सोने के लिए।
2: खाना तो खा लो।
0: भूख नहीं है।
2: ठीक है, जाओ।
0: ये चिड़चिड़ापन तुम में क्यों माँ? ये असहिष्णुता मुझ में क्यों? मैं घटनाओं से समझौता नहीं कर पा रहा हूं। आखिर क्यों ये सूनापन क्यों घिराया है? अपनी मां को खोकर मुझे ऐसा क्यों लगने लगा जैसे मेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रह गया है? मैं इतना पराश्रय क्यों हूं? मैं तुमसे अपने आप को अलग क्यों नहीं कर पाता मां?

0: मां को मां कहना अनाम ने बंद कर दिया है। वो उसे मिसेज बत्रा कहकर पुकारता है अगर जरूरत होती है तो। एक अनजान बच्ची को वो वायलिन सुनाता रहता है। और एक संसार था मां का।
1: अनाम खोया खोया रहता है, उदास और मूर्छित। वो इस घर में नहीं रहना चाहता, उसे पुराने घर की स्मृतियां सताती हैं। वो वहीं लौट जाना चाहता है। दिन दिन भर आवारा करती वायलिन और पड़ोस की बच्ची रितु। आप ही बताइए मैं क्या करूं, कैसे संभालूं इसे।
0: मिस्टर बत्रा, चुप क्यों हैं? कुछ कहिए ना, हमारे श्रोता आपकी वाणी सुनने को तरस रहे हैं।
1: अब मैं और नहीं सह सकती। कब तक यह निश्चय, आखिर कब तक? मैं किसी की जंजीर से नहीं बंधी हूं, चाहे बेटा हो। उसकी भावुकता और बचकानेपन पर अपनी बलि मैं नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी।
0: जी हाँ, बलि ना होने दें। ये फैसला आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। खैर, देर आयद दुरुस्त आयद।
1: आपको पता है अनाम घर छोड़ के चला गया। कल रात को यह नहीं आया। स्कूल का एक लड़का बता रहा था कि पुराने घर में अकेला बैठा वायलिन बजाता रहता है। बहुत दिन हो गए अनाम को यहां से गए हुए। एक बार का ऐसा गया कि फिर इस ओर झांक कर भी नहीं देखा। उसकी खबर मिलती रहती है। मैं बेचैन हूं। पता चला है अनाम ने नौकरी कर ली, पास हो गया है।
0: कितने आश्चर्य की बात है कि मिनट, घंटे, पहर और दिन गुजारना मुश्किल लगता है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन ऊब, उकताहट और बोरियत हमें खाए लेती है। अनाम को यह सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो 20 बरस का हो गया है। मां से जुदाई के 2 वर्ष पल पल सदियों की तरह कटा, मगर ये सदियां कब मिलकर 2 साल बन गई पता ही ना चला। है ना आश्चर्य की बात?
2: वायलिन के साथ गुजारे गए 2 साल, बचपन के सुनहरे दिन, कैशोर्य के बदलाव के रंग से दिन।
0: मिस्टर अनाम,
2: पता नहीं कौन मेरे अंदर मुझे आवाज देता है।
0: मिस्टर अनाम,
2: बार बार खटखटाहट होती है, बार बार मैं जागता हूं, बार बार फिर खटखटाहट होती है। इसका रहस्य मेरी समझ में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। महीनों हो गए, मां की कोई याद नहीं। 2-1 बार मिलने भी आई, मैंने मिलने से इनकार कर दिया। पता नहीं अच्छा किया या बुरा। घटनाएं अब सिर्फ एक धुंधली सी स्मृति बनकर रह गई हैं। न किसी के प्रति प्रेम उमड़ता, नफरत। ये मुझे क्या हो रहा है धीरे धीरे?
1: अनाम एक दिन मेरा अपमान करेगा, मैं उससे मिलने जाऊंगी और वो मुझसे मिलने से इनकार कर देगा। ओह, ये कभी सोचा तक न था। मगर क्या करूं, उसको अपने से हटा नहीं सकती। मैं उतनी क्रूर और कठोर नहीं बन सकती, नहीं बन सकती।
0: अनाम ने मातृत्व ढूंढा था, वो मां के दूसरे किसी पक्ष की कल्पना भी नहीं कर पाया था।
1: मातृत्व वैधव्य के लंबे दिन गुजारने से ही सार्थक नहीं होता अनाम।
2: ये तुम्हारी भूल है मां, तुम मुझे समझ नहीं सकी।
3: कैसी भूल और किसकी भूल? जीवन के इन पेचीदा प्रश्नों का उत्तर किसके पास है?
1: कहाँ है उत्तर?
3: कहाँ है उत्तर?
2: कहाँ है उत्तर?
1: कहाँ है उत्तर?
3: कहाँ है उत्तर?
4: अनाम भैया।
2: हाँ रितु।

0: सारे शहर में खबर फैल गई कि समंदर के किनारे चट्टान पर बैठकर एक लड़का पिछले 12 घंटों से वायलिन बजा रहा है। बहुत सारे लोग उसे देखने जा रहे हैं, बहुत भीड़ है। यह भी सुना गया है कि एक 10 वर्षीय बच्ची निरंतर 12 घंटों से वायलिन वादक के साथ बैठी वायलिन सुन रही है।
1: जा रहा है, रितु के मामा भी परेशान हैं, वो भी इसी के साथ हैं।
0: विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि युवा वायलिन वादक जो पिछले 20 घंटों से लगातार वायलिन बजा रहा है, उसका नाम अनाम पाठक है। कुछ लोगों का अनुमान है कि संभवतः वो लगातार वायलिन बजाने में विश्व रिकॉर्ड कायम करना चाहता है। एक अन्य सूचना के अनुसार पुलिस थाने में एक बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बच्ची के माँ बाप ने किसी अनाम पाठक के प्रति संदेह व्यक्त किया है। विश्वास किया जाता है कि ये युवक संभवतः वही युवा वायलिन वादक है, और ऋतु नामक जिस बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, ये वही बच्ची है जो उक्त वायलिन वादक को पिछले 21 घंटों से सुन रही है।
2: भैया को वायलिन बजाते बजाते रात हो गई।
1: अभी भी पड़ोसी ने आकर खबर दी है

प्राप्त समाचारों के अनुसार एक युवा वायलिन वादक जिसका नाम अनाम पाठक बताया जाता है आज समुद्र के किनारे मृत पाया गया। संभवतः उसने आत्महत्या की है। इस आत्महत्या के पीछे दो दिन पूर्व की उस घटना का हाथ बताया जाता है जब उस युवक ने लगातार 25 घंटे तक बिना रुके वायलिन बजाकर पूरे शहर को चकित कर दिया था। बाद में युवक की मां ने उसके हाथ से वायलिन छीनकर तोड़ दिया था। मृत युवक अत्यधिक संवेदनशील और प्रतिभाशाली था, मगर एक चिकित्सक के अनुसार कुछ मानसिक व्याधियों से ग्रस्त था वो वायलिन वादक।

0: वायलिन वादक नाट्य तरंग में अभी आप असद जैदी का लिखा यह नाटक सुन रहे थे। इसे निर्देशित किया मदन शर्मा ने। यह रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी के जयपुर केंद्र के सौजन्य से। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: दिन की भागदौड़ के बाद

मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती,
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है दुश्मन
1: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: गदर एक प्रेम कथा।
2: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर। दास्तान बेमिसाल संगीत की।
3: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग। उत्तम जी नमस्कार। एक बार फिर से विविध भारती की स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद जी। नमस्कार जी। आप सब सुनने वालों को मेरा प्रणाम।
0: उत्तम जी, एक बहुत लंबा प्रोग्रेशन आपका रहा है। आपने 13 साल की उम्र में बतौर वायलिनिस्ट अपना सफर शुरू किया था
4: जी।
0: और उसके बाद म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। ये एक पूरी यात्रा है। और म्यूजिक डायरेक्टर में भी एक पहले उत्तम जगदीश की जोड़ी बनती है, फिर आप एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं। हमारे बहुत सारे सुनने वाले ये जानना चाहते हैं कि एक म्यूजिशियन का क्या काम होता है, म्यूजिक डायरेक्टर का क्या काम होता है, और अरेंजर असल में क्या करता रहा है।
4: जी, वैसे तो म्यूजिशियन बनना इटसेल्फ इज ए बहुत बड़ी बात है
0: जी।
4: एक बहुत विख्यात संगीतकार है जिनका नाम है इलैयाराजा साहब
0: जी,
4: दुनिया जानती है उनको। उन्होंने एक स्टेज पे या पता नहीं कहाँ कहा था उन्होंने, वो बात उनकी मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा था कि जी म्यूजिशियंस आर बॉर्न नेवर मेड।
0: वाह।
4: तो म्यूजिशियन बनना जो है ये एक कुदरत की देन है। कुदरत की देन को हासिल करना, कुदरत की देन को पॉलिश करना, कुदरत की देन को आगे बढ़ाना, ये इंसान के हाथ में है। क्योंकि म्यूजिक तो आपको मिल गया, ऊपर वाले ने दे दिया, लेकिन सुर की साधना, संगीत की साधना, इसके लिए जो पुराने लोग थे 20-20 साल रियाज करते थे। तो जब मेरी लाइफ शुरू हुई एज ए संगीतकार तो 4.5 साल की उम्र में पिताजी ने मटका सिखाया
0: जी,
4: फिर तबला सिखाया, सितार सिखाई, वोकल सिखाया, डांस सिखाया। बॉम्बे में आके वेस्टर्न क्लासिकल वायलिन शुरू किया
0: जी।
4: तो मुझे आज भी याद है 60 की एज में जब उन्होंने शुरू करवाया मुझे, तो उन्होंने टाइम टेबल बनाया था। यूनुस जी, ये आज बड़ी अनहोनी सी बात लगती है, उन्होंने मेरा टाइम टेबल बनाया था 13.5 घंटे का।
0: बाप रे बाप।
4: 13.5 घंटे प्रैक्टिस करनी है, 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे और 1.5 घंटा,
0: और उसमें खेलना और
4: कुछ नहीं,
0: कुछ भी नहीं,
4: कुछ नहीं। 3 घंटे के रियाज, उसके बाद 0.5 घंटा ब्रेक, खाओ पियो, फिर शुरू हो जाओ।

0: फिर खाओ पियो, फिर शुरू हो जाओ। तो 13.5 घंटे मैं खड़े होके प्रैक्टिस करता था, बैठना भी नहीं, खड़े होके। वायलिन की एक पोजीशन होती है खड़े होने की, बस उससे हिलना नहीं। अगर पाँव थोड़ा सा हिल गया तो शाम को माँ कंप्लेंट करती थी कि आज इसका पाँव हिल गया।
1: ओहो
0: तो ये तपस्या होती है
1: जी
0: जो आज के युग में खत्म हो गई है। लेकिन संगीत की साधना जो है ना, वो आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ या चर्च जाओ, उससे कहीं ऊपर है। आज हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, अगर आपने साधना कर ली संगीत की तो आप समझिए कि आपने चारों धाम घूम ली।
1: बिल्कुल
0: आप मक्का पहुंच गए, आप मंदिर पहुंच गए, आप अमृतसर पहुंच गए, क्योंकि आपने संगीत की साधना की।
1: जी,
0: संगीत की साधना जो है वो भगवान की साधना है,
1: क्या बात
0: और
1: है,
0: उसकी साधना है जिसको कोई देख नहीं सका आज तक,
1: वाह,
0: ये उसकी साधना है
1: बिल्कुल। शैलेंद्र जी ने लिखा भी है ना, स्वर की साधना परमेश्वर की।
0: परमेश्वर। तो यहां से संगीत की लाइफ शुरू हुई एज ए म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन में भगवान की कृपा रही कि 1962 में पहली रिकॉर्डिंग बजाई और 1964 में पहला सोलो बजाया नौशाद साहब के लिए।
1: जी
0: मुझे फिल्म याद नहीं
1: जी
0: लेकिन सोलो बजाया। सोलो म्यूजिशियन बनना एक बहुत
1: बड़ी बात होती
0: बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में 1965 में एज अरेंजर बनने की शुरुआत थी, भगवान ने शुरुआत करवाई, और वो शुरुआत दी मुझे शंकर शंभू
1: जी
0: कव्वाल जो थे उन्होंने
1: जी
0: दी,
1: जी
0: और वहां से शुरू हुआ सिलसिला। तो मैं चलता रहा एज ए अरेंजर, काफी काम करता रहा। यहाँ पे बड़ी खुशी की बात है कि अगर हिंदुस्तान में किसी एक कॉर्नर में एक फिल्म बनी है तो उसमें उत्तम सिंह ने अरेंज किया है,
1: वाह वाह वाह, मतलब तमाम भाषाओं में,
0: तमाम
1: तमाम
0: भाषाओं,
1: प्रदेशों में।
0: कोई भी भाषा हो, अगर फिल्म बनी है
1: जी
0: तो मैंने उसमें अरेंजमेंट जरूर किया है। मतलब वहां के म्यूजिक जो है उनको उत्तम सिंह चाहिए,
1: क्या
0: चाहे वो
1: बात है,
0: नेपाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो अपना हरियाणा हो या बंगाल हो या कहीं भी हो,
1: साउथ हो
0: कहीं भी हो, कुछ भी हो, पंजाब हो, कुछ भी हो, तो मैंने अरेंजमेंट किया। तो मुझे लगता है अगर मैंने सब अकाउंट रखा तो 15-20 हजार गाने तो मामूली बात है,
1: बाप रे बाप रे बाप, एक जीवन
0: इतना
1: काल में इतना
0: इतना
1: काम।
0: इतना काम हुआ।
1: जब काम एकदम से चारों तरफ बढ़ने लगा, पिताजी माँ कितने खुश थे?
0: बहुत खुश थे जी। और 60 में आए हम लोग और 66 में पहला घर ले लिया था,
1: वाह वाह,
0: और वो 17 हजार रुपये का घर था।
1: क्या बात है,
0: तो पहला घर अपना
1: किस इलाके में था?
0: खार में,
1: जी
0: खार 10th रोड में था, आज भी है वो बिल्डिंग।
1: जी
0: तो वो पहला घर था 17 हजार रुपये का, और 17 हजार रुपये में शायद मुझे लगता है 7 या 8 हजार रुपये कर्जा था।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: आधा कर्जा था,
0: आधा कर्जा था, लेकिन वो कर्जा खत्म हो गया क्योंकि
1: काम तो कर ही
0: काम तो
1: रहे थे।
0: कर ही रहे थे। तो मुझे बड़ी एक चैन भरी जिंदगी होती है ना, उसमें बहुत बड़ा चैन शांति मिलना होता है जब आपके मन की बातें पूरी हो जाए।
1: जी
0: तो मुझे शांति इस बात की है कि मेरे माता पिता को जो चाहिए था वो उनका पूरा हो रहा था।
1: जी जी जी
0: वो लड़के को म्यूजिशियन बनाया जाता है, लड़का भगवान की कृपा से सोलो वायलिस्ट बन गया।
1: जी
0: फिर वो चाहते थे कि लड़का तरक्की करे, तो लड़का अरेंजर बन गया।
1: जी
0: अरेंजमेंट में भी भगवान की कृपा से बहुत नाम हो गया, बहुत काम किया। फिर वो चाहते थे कि लड़का और तरक्की करे, तो और तरक्की, तो लास्ट स्टेज तो म्यूजिक डायरेक्टरी है।
1: बिल्कुल,
0: म्यूजिशियन की जो लास्ट स्टेज है वो
1: म्यूजिक
0: इस
1: डायरेक्टरी।
0: इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर है। खैर, वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि हमारे माता पिता की जो एक जर्नी है
1: जी
0: वो कैसे कैसे आगे बढ़ती गई, लेकिन माता पिता बहुत खुश थे। लिया
1: जी ये जो सर म्यूजिक अरेंजमेंट है, ये
0: जी
1: अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता रहा है। आज के जमाने में चीजें हालांकि बदल गई
0: जी
1: हैं, लेकिन उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम के जरिए हम चाहते हैं कि हम ये चीज संजो लें कि म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक अरेंजर के काम में क्या फर्क है, और म्यूजिक अरेंजर कितना महत्वपूर्ण काम रहा है
0: जी
1: भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास का,
0: जी जी
1: जिसकी वजह से कई गाने चमक गए और हमेशा के लिए अमर हो गए।
0: अमर हो गए जी, बिल्कुल, ये बात आपने अच्छी कही। देखिए जी, पुराने जो संगीतकार जिनमें मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, सी रामचंद्र, खयाम साहब, जो भी पुराने संगीत, जंगर जयकिशन, इनके पास हमेशा एक अरेंजर रहा है।
1: जी

0: और उसकी नॉलेज होना
1: जी,
0: वो बहुत जरूरी
1: और
0: है।
1: वही तय करता था कि इस गाने में वायलिन बजेगा इंट्रो
0: जी
1: में,
0: जी
1: M1 में क्या बजेगा, M2 में क्या
0: जी
1: बजेगा।
0: मोस्ट प्रॉब्ली 99% यही
1: जी
0: करते थे। फिर म्यूजिक डायरेक्टर की अपनी कंसेंट होती है,
1: जी
0: जैसे मदन साहब है, चलो हम मदन साहब की बात करते हैं। मदन साहब ने गाना बनाया, मास्टर जी ने अरेंजमेंट किया, मदन जी आपको पूरा भरोसा है कि मास्टर जी जो बनाएंगे वो अच्छा ही बनेगा। फिर मास्टर जी ने म्यूजिशियंस बोले कि भाई मुझे आज 24 वायलिन चाहिए, व्योला चाहिए, चलो चाहिए, चलो। उसमें मदन जी को कुछ पता नहीं है कि मैंने क्या क्या म्यूजिक है, पर मदन जी अपना म्यूजिक सुन रहे हैं, यस साउंडिंग गुड, ओके।
1: वो बदल भी सकते हैं चाहे तो।
0: वो चाहे बदल भी सकते हैं क्योंकि ही इज द सुप्रीम पावर। लेकिन कराने वाले कौन? मास्टर
1: अरेंजर है।
0: मास्टर जी अरेंजमेंट, और लिखने वाला उनके साथ, क्योंकि मास्टर जी तो ब्लाइंड थे लिखने वाले। मदन साहब के यहाँ बहुत से अरेंजर आए, मैंने जब शुरू किया तब मास्टर जी थे वहां पे,
1: मास्टर जी, यानी हम अपने सुनने वालों को बता दें कि सोनिक जी,
0: सोनिक जी,
1: सोनिक ओमी की
0: सोनिक
1: जोड़ी
0: ओमी।
1: थी।
0: हाँ सोनिक ओमी का जो जोड़ी थी उसमें सोनिक साहब, और सोनिक साहब के बारे में एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, वो
1: जी
0: ब्लाइंड थे
1: जी
0: और निहायत ही डेडिकेटेड म्यूजिशियन।
1: वाह
0: एक बार हम उनकी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे थे, मैं वह लिख रहा था, और ये बैकग्राउंड म्यूजिक हमने मदन साहब के म्यूजिक रूम में ये कंपोज किया था,
1: जी
0: क्योंकि मदन साहब के पास पियानो था,
1: हाँ
0: तो मास्टर जी वांटेड ए पियानो टू कंपोज, तो मैं उनके साथ लिख रहा था, वहां बैठ के हमने कंपोज किया। मदन साहब नहीं थे, मास्टर जी ने मदन साहब को कहा मुझे आपका रूम चाहिए, बोले हाँ ले लो। तो एक सीन ऐसा आया कि जिसमें जो हमारे साथ दूसरा आदमी था राज करके, जो लिखता था कि इस सीन के बाद, इस सीन के बाद क्या क्या होगा, तो वो सीन लिख के आया। तो हम लोग घर में बैठ के बना रहे थे, तो राज को पूछा राज क्या था, तो बोले जी इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था। उन्होंने बताया पूरा सीन, 1.5 मिनट का पीस था, मुझे आज भी याद है। बोले नहीं राज तुम कहीं मिस कर रहे हो,
1: गजब।
0: एक जगह ऐसी थी जहां पे वो हीरो चला था और टक करके पांव की आवाज थी, वो तुमने
1: वाह
0: शायद मिस किया है, तो तुम जाओ बाकी करके आओ। वो वापस गया मोबिला पे, फिर उन्होंने वापस देखा तो वाकई मिस था।
1: ये मेमोरी
0: ये
1: सोनिक जी की,
0: मेमोरी, क्योंकि
1: गजब।
0: ब्लाइंड थे तो ध्यान सारा पूरा, तो मुझे आज भी याद है उनका, मास्टर जी का। तो मास्टर जी वैसे फैंटेस्टिक अरेंजर, फैंटेस्टिक कंपोजर, उनके अपने पाने के भी कितने हिट हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमने इतना मास्टर जी को याद किया तो मास्टर जी की याद में गाना सुनते हैं।

0: मदन जी के कुछ कुछ गजलें तो ऐसी हैं, उनको निकाल दो, अपना मास्टर जी का म्यूजिक निकाल दो तो ऐसा लगेगा कि ये गजल है, लेकिन मास्टर जी के म्यूजिक ने उस गजल रूप रंग ही चेंज कर दिया। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक वाज टोटली कंपोज बाय मास्टर जी। हाँ, मदन साहब थे वहां पे, हमने बजाया बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक। सोनिक कौन सा पीस ले रहे हो अभी? जी फलाना पीस ले रहा हूँ, सुनो एक दफा। सुना ये कहाँ कहाँ पे आ रहा है जी? यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, देन मदन साहब यूज टू इमेज कि म्यूजिक कैसा लगेगा वहां पे। ओके, टेक करो।
1: क्या बात है।
0: तो म्यूजिक एंड अरेंजर की जो कॉम्बिनेशन है, नाम हम डेफिनेटली एक कंपोजर का सुनते हैं
1: जी
0: कि भाई ये कंपोज किसने किया, प्रशांत साहब ने, ये मैं किया मदन साहब ने, ये शंकर जयकिशन, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे हाथ होते हैं।
1: जी जी जी
0: म्यूजिशियंस हो गए, अरेंजर हो गया, आपके सिंगर्स हो गए, सिंगर्स का तो नाम आता है बट म्यूजिशियंस का तो नाम नहीं आता, अरेंजर का भी नाम नहीं आता। हाँ, स्क्रीन पर अगर नाम दे दिया हो कि भाई असिस्टेंट म्यूजिक एक्टर, वो अलग बात है। अच्छा, मैंने जब अरेंजमेंट शुरू किया तो मेरा अरेंजमेंट करने का ये होता था कि आपने गाना बनाया,
1: जी
0: आपने गाना बनाया और मैंने गाना लिख लिया। मैं जब तक गाना नहीं लिखता, गाना मेरा नहीं होता।
1: मतलब आप अपने हाथ से लिखते हैं
0: मैं
1: खुद।
0: अपने हाथ से जब नोटेशन लिख लूंगा उस गाने का,
1: जी
0: तो फिर वो गाना आपका है ही नहीं, वो गाना मेरा हो गया।
1: अच्छा
0: फिर मैं उसके बाद उसका म्यूजिक बनाता हूँ,
1: ओके
0: फिर मैं उसका पूरा म्यूजिक बनाया, मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या हो गया, यहाँ फ्लूट, यहाँ सरोद, यहाँ जो भी है, जो भी है।
1: और ये कैसे डिसाइड होता है कि कहां फ्लूट का।
0: ये मेरी डिसाइड है,
1: जी
0: ये मेरी चॉइस है, मेरी लाइकिंग है, मेरा म्यूजिक है। और उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग तक, फाइनल तक मैं वहां पे हूं, जब तक वो गाना पूरा फाइनल नहीं हो जाएगा। अभी जैसे मैंने प्यार किया, वो उसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक था,
1: जी
0: लेकिन एवरीथिंग वॉज डन बाई मी। म्यूजिक अरेंजमेंट से लेकर म्यूजिक बजवाना, म्यूजिक रिकॉर्ड करना, लता जी आती थी, लता जी को गवाना, दीदी को क्या चाहिए, क्या होता है, उसके बाद फाइनल मिक्सिंग तक आई एम देयर।
1: यानी इंट्रोडक्शन म्यूजिक में मान लीजिए कि गिटार के स्ट्रिंग्स हैं, जैसे किसी गाने में आते हैं आजा
0: जी
1: शाम होने आई में
0: जी जी
1: हॉर्न की आवाज आती है,

0: क्योंकि आपको एक स्केलेटन मिलता है
1: जी,
0: आज की जो जबान है वो ये है कि आपको एक स्केलेटन मिल गया, अभी फैशन डिजाइनर उसके ऊपर डिजाइन करेगा।
1: करेक्ट,
0: तो
1: ये काम है।
0: हाँ, ये कौन है, इसकी ड्रेस किसने बनाई है, सो एंड सो ने। इसकी ड्रेस, अरे यार इसकी ड्रेस बहुत अच्छी है, किसने बनाई, सो एंड सो ने। तो फीमेल तो वही है, बट ड्रेसेस जो है वो फैशन डिजाइनर है। तो ये गाना है, अब गाने को कैसे सजाना है।

0: और उसकी रूह कैसे कायम रहे और अपनी रूह जो है वो उसको लेके चले साथ में।
1: जी,
0: तो ये दो रूहों का मिलन है, एक संगीतकार और एक अरेंजर।
1: वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात कही।

0: दो रूहों का मिलन है।
1: वाह।
0: लेकिन वो एक बन के आपके पास आता है
1: जी,
0: आपको ये पता नहीं कि दूसरी रूह कब इसके अंदर ज्वाइन हो गई
1: और कहाँ कहाँ है,
0: कहाँ कहाँ है
1: जी।
0: लेकिन वो आपको जो सुनाई दे रहा है वो स्वयं
1: एक लंबी यात्रा बतौर म्यूजिक अरेंजर आपकी रही है, लेकिन तमाम म्यूजिक अरेंजर्स का काम आपने देखा है, तो ऐसे कौन से म्यूजिक अरेंजर्स हैं जिन्हें आप बहुत ज्यादा स्नेह और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, एक आइडियल की तरह देखते हैं?
0: देखिए जी, वैसे तो सारे ही अरेंजर बहुत कमाल थे।
1: जी,
0: सेबेस्टियन साहब तो बहुत ही कमाल थे,
1: शंकर जयकिशन के साथ,
0: शंकर जयकिशन के नए साहब के साथ और सबके साथ, बसंत देसाई के साथ साथ।
1: जी
0: फिर पाटी जी थे जिन्होंने काम किया कल्याणजनन जी के साथ, बासु मुरारी आरडी बर्मन के साथ काम किया, एसडी बर्मन के साथ किया। फिर मास्टर जी ने मदन साहब के साथ काम किया, उषा खन्ना के साथ काम किया। मेरी पसंद हमेशा मास्टर जी रहे,
1: सोनिक जी,
0: सोनिक साहब रहे,
1: क्या बात है।
0: और मैंने कई बार अपने अरेंजमेंट में उनको फॉलो भी किया।
1: किस तरह से?
0: उनके स्टाइल को।
1: अच्छा, उनकी स्टाइल
0: उनके
1: को।
0: स्टाइल को फॉलो किया
1: जी जी
0: मैंने, लाइक किया उनके स्टाइल को, उनके स्टाइल को। वो वायलेंस कैसे बजते थे, वो वायलेंस मैंने अपने अरेंजमेंट में भजवाए,
1: वाह।
0: तो वो एक फील जो है वो अलग है। तो उसमें मैंने हमेशा मास्टर जी को प्रेफर किया। बहुत बड़े अरेंजर थे हमारे प्यारेलाल जी,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: उन्होंने जो अपने साथ काम किया वो तो अलग, लक्ष्मी गाय प्यारेलाल तो अलग बात है,
1: लेकिन तमाम
0: वैसे
1: लोगों
0: भी
1: के
0: उन्होंने
1: साथ।
0: काम किया। क्या काम किया उन्होंने ऐसे अरेंजर, उनसे बड़ा अरेंजर कोई था ही नहीं उस टाइम पर। उनका नाम बहुत बड़े अरेंजरों में आता था। लेकिन सब घूम घाम के आया तो मुझे सोनिक साहब बहुत पसंद आया, क्योंकि वैसे उनका मैंने काम भी किया। तो मेरा अपना एक स्टाइल था, लेकिन मैंने उनके स्टाइल को अपने साथ रखा हमेशा।
1: क्या बात है
0: जी।
1: सोनिक जी के साथ कोई याद, कोई दिलचस्प याद, क्योंकि आपने उनके साथ बजाया बहुत है।
0: मैंने बजाया भी है, उनके साथ लिखा भी है, उनके साथ कंडक्टिंग भी किया है, सब किया उनके साथ। बहुत सारे
1: लंबा
0: काम
1: साथ
0: किए।
1: है।
0: और लास्ट का उनका जो पीरियड था वो सारा मेरे साथ गुजरा।
1: अच्छा
0: जी, वो हालात किसी के कभी एक जैसे नहीं होते।
1: जी जी
0: तो लास्ट में उन्होंने मेरे साथ कई बार रिकॉर्डिंग में बाजा बजाया,
1: अरे
0: क्योंकि हारमोनियम उनसे अच्छा कोई बजाता नहीं था।
1: जी जी
0: इतने बड़े हारमोनियम प्लेयर थे वो।
1: अच्छा,
0: तो उन्होंने बहुत मेरे साथ, क्योंकि मैं एज ए अरेंजर मेरे पास बहुत काम था,
1: जी
0: तो हालात कुछ ऐसे थे, फिर वो मेरे साथ उन्होंने बजाया।
1: एक समय ऐसा आया जब उन्होंने मदन जी का साथ छोड़ दिया था।
0: हाँ, वो उनको अपनी फिल्में बहुत मिल गई थी ना उस टाइम पर,
1: सोनी गोमी की जोड़ी।
0: हाँ,
1: आ गई
0: सावन भादों के बाद उनके पास काफी काम आ गया था।
1: हाँ।
0: मुझे आज भी याद है, एक महीना उनका ऐसा था 28 दिन रिकॉर्डिंग थी उनकी।
1: अरे बाप रे, यानी हर एक दिन
0: एवरीडे गाना था उनका।
1: गजब गजब गजब।
0: मैं उस टाइम के साथ बजाता था एवरीडे सॉन्ग, इतना काम था उनका। फिर उनका काम कम होता चले गया, जो भी है। तो अरेंजमेंट की पोस्ट बहुत बड़ी है जी। मैंने तो अरेंजमेंट की पोस्ट ऐसे संभाली है कि भाई गाड़ी को बनाना भी है
1: जी,
0: और गाड़ी को शिमला लेके भी जाना है बम्बई से,
1: वाह वाह,
0: और शिमला जाके छोड़ के भी आना है।
1: क्या बात है।
0: तो ये तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने गाने को समझिए मुंबई में ले लिया, उसको पूरा बनाया, उसकी पूरी पॉलिशिंग की, उसका इंजन सब ठीक किया, सब कर रहे। जब अच्छा लगा कि हाँ अच्छा लगा, तो इसका बाकी इंस्ट्रूमेंट कहाँ मिलेंगे, वो रास्ते में मिलेंगे। तो पूरा करते करते करते करते करते ये छोड़ के आया।
1: वाह वाह वाह,
0: तो इस तरीके से मैंने काम किया हमेशा।
1: अच्छी मिसाल दी आपने। हमने इतना मास्टर जी को याद किया, तो मास्टर जी की याद में दिल ने फिर याद किया, फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: जरूर सुनिए, बहुत कमाल के गाने थे वो
1: जी।

0: एक बात मास्टर जी की मैं सुनाना चाह रहा था लेकिन बातों में व्यस्त कर गया। देखिए, मैं रात को सीडिंग करके घर आ गया
1: जी
0: वो समझिए मेरे से 500 मीटर दूर रहते थे
1: अच्छा
0: कार में। हाँ वो
1: जी
0: 500 मीटर दूर थे, मैं यहाँ, मैं भी कार में था। तो मैं पूरा गाना लिख के घर में आ गया और रिकॉर्डिंग थी परसों, कल का दिन गैप था। तो सुबह सुबह उनका आदमी मेरे पास आया सुबह 6 बजे, बोले मास्टर जी ने कहा है कि आधे घंटे के लिए आके जाओ। मैं तो रिकॉर्डिंग में जा रहा हूँ, आके जाइए आप प्लीज, बहुत जरूरी है। तो मैं सुबह 7:30 बजे उनके पास पहुंचा। मैं कहा मास्टर जी क्या हुआ? बोलते यार उत्तम बैठ यार, मैं सारी रात सोया नहीं।
1: अरे
0: मेरे को क्या हुआ कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ मैंने गलती की है। तो एक बार एक काम कर प्लीज, वो इंट्रोडक्शन सुनाओ।
1: ये कौन सा गाना था?
0: ये मुझे याद नहीं,
1: अरे
0: लेकिन लेकिन इंट्रोडक्शन सुनाओ। तो मैंने इंट्रोडक्शन उनको सुनाया।
1: जी जी
0: तो बोलते ये तो ठीक है, तो पहला म्यूजिक सुनाओ। फर्स्ट म्यूजिक सुनाया, बोलते ये भी ठीक है, अपने आप ही बोल रहे हैं ये भी ठीक
1: हाँ
0: है। फिर दूसरा म्यूजिक सुनाओ, दूसरा म्यूजिक सुनाया, हाँ उत्तम यही गड़बड़ है।
1: अरे
0: मैं
1: बाप
0: क्या
1: रे
0: हुआ मास्टर जी? बोले ये जो तुम 4 बार गा रहे हो ना, ये मेरे नहीं है, ये धनी राम जी के हैं।
1: अरे बाप रे बाप
0: मैंने कहा मास्टर जी मैंने तो कहीं नहीं सुना। बोले तुमने नहीं सुना लेकिन ये धनी राम जी के 4 नोट हैं इस गाने के। उन्होंने वो गाना गा के सुनाया कि इस गाने के ये 4 नोट हैं। मैं ऐसा हैरान हो गया, मैं कहा ये, और उन्होंने वो चेंज किया।

0: गजब। और इसके लिए वो सारी रात परेशान भी रहे।
1: देखिए आप एक आज का टाइम देखिए, आज जो कॉपी मास्टर है वो सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है,
0: जी
1: सबसे
0: जी
1: बड़ा राइटर है, सबसे बड़ा वो है, क्योंकि वो कॉपी कर रहा है।
0: और ये कॉपी नहीं कर रहे हैं।
1: कि
0: इसके लिए
1: कॉपी,
0: परेशान
1: किसी की
0: रहे।
1: कॉपी हो गई गलती से तो वो बोल रहे हैं कि अरे यार ये तो उनका था, धनीराम जी का था।
0: बाप रे,
1: फिर उन्होंने वो चार बार चेंज किए, मैंने लिखे पूरे, और उसके बाद फिर मैं म्यूजिक में गया, दूसरे दिन रिकॉर्डिंग। कौन सा गाना था मैं भूल गया, मुझे याद नहीं,
0: जी
1: लेकिन ये इंसिडेंट था।
0: ये अद्भुत घटना है। ये एक डेडिकेशन और ईमानदारी की एक
1: ईमानदारी की,
0: बहुत ही अद्भुत घटना है।
1: यस,
0: उत्तम जी, ये जो पूरी आपकी यात्रा है, इसमें चाहे नौशाद हो, चाहे रोशन साहब हो, मदन मोहन हो, सी रामचंद्र हो, तमाम लोगों के साथ आपने बजाया है।
1: जी
0: बल्कि नैयर साहब की बाद वाली जो पारी है उसमें भी आप साथ में थे।
1: मुझे बुलाया था लेकिन कुछ कारणवश मेरा हो नहीं सका। मुझे तो एज ए अरिजन के लिए बुलाया था उन्होंने,
0: अच्छा
1: लेकिन हो नहीं सका।
0: जी,
1: जी,
0: सी रामचंद्र के साथ।
1: अन्ना के साथ मैंने बजाया बहुत, और अन्ना मुझे बहुत प्यार करते थे।
0: जी
1: अन्ना की एक जगह मैं आज भी नहीं भूल सकता, मैंने फर्स्ट टाइम मोपेट ली थी, डैडी
0: मोपेट, जी
1: मोपेट, डैडी ने 500 रुपए की या 450 रुपए की से मोपेट ली थी। तो मैं लिंकिंग रोड से मोपेट में जा रहा था,
0: अच्छा
1: तो मेरे बाजू से एक गाड़ी निकली,
0: हाँ,
1: हेराल्ड गाड़ी थी, तो
0: हेराल्ड।
1: जोर से निकल गई, तो आगे जाके वो गाड़ी ने रोक दी। तो मैंने कहा, तो ऐसे बाहर निकले तो अन्ना,
0: गजब।
1: तो मुझे रोका। मैंने कहा अन्ना आप कहाँ, मैंने तुमको देखा इसलिए मैंने गाड़ी रोक ली, तुम ये कहाँ बाइक में जा रहे। मैं कहा अन्ना डैडी ने ली थी तो मैं ऐसे ही चला रहा था, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी। मुझे आज भी याद है, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उत्तम बहुत आगे जाओगे, ये जो आशीर्वाद है,
0: जी
1: ये जो प्यार है यूनुस जी, ये मांगने से नहीं मिलता।
0: क्या प्यारी बात है, वाह वाह वाह।
1: आशीर्वाद कभी भी मांग नहीं सकते आप,
0: जी, उसके
1: आशीर्वाद
0: काबिल
1: आपको
0: होना पड़ता
1: लेना
0: है।
1: पड़ता है,
0: जी
1: हासिल करना पड़ता है। और मुझे याद है कि मैं अन्ना की रिकॉर्डिंग में हमेशा लास्ट तक, मेरी बड़ी किस्मत रही है बहुत अच्छी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, खयाम साहब, श्री रामचंद्र साहब, एन दत्ता, उसके बाद में आपके आर डी बर्मन, एस डी बर्मन, नौशाद साहब, मैंने शुरू इनके साथ किया
0: जी
1: और इनके जाने तक मैं इनके साथ था।
0: क्या बात है।
1: ये कितनी खुशकिस्मत की बात है कि मैंने उनके साथ शुरू किया,
0: जी, और
1: लेकिन उनके
0: लगातार साथ रहा।
1: लगातार साथ था, जब तक वो नहीं गए,
0: जी
1: जब तक वो चले गए मैं उनके साथ था।
0: जी जी जी
1: तो ये बहुत प्यार मिला सबका।

0: अच्छा मुझे ये बताएं कि बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात की, पर पंचम की बात रह गई है, और पंचम के साथ आपका काम भी है और एक साथ भी तो रहा है।
1: ऑलमोस्ट 25 साल
0: जी जी जी
1: जी।
0: कुछ यादें बांटिए।
1: पंचम जी के साथ जहाँ काम शुरू किया, मुझे लगता है वो भूत बंगला का बैकग्राउंड था।
0: ओहो,
1: हाँ
0: वो
1: भूत
0: तो बहुत ही
1: बंगला,
0: करामती बैकग्राउंड है भाई।
1: हाँ वो 65 का है शायद वो।
0: जी, महमूद की फिल्म।
1: तो वहाँ से मैंने एज ए म्यूजिशियन उनके साथ शुरू किया था। तो उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे मैं उनका सोलो वायलिनिस्ट हो गया।
0: हाँ,
1: फिर उनकी वायलिन का जो सेक्शन है वो पूरा मैं लीडर था। पहले मैं बजाता था, मैं सेट करता था, फिर सब लोग बजाते थे। तो मरोड़ जी आके रिहर्सल करते थे सुबह 9 बजे। तो 9 सवा 9 बजे के करीब हम लोग सेट करते थे और चलता रहा काम, चलता रहा। लेकिन जब कुछ सोलो बजाना होता था तो उत्तम बजाएगा सोलो होता है, क्योंकि उनके पास सोलो इंस्ट्रूमेंट जैसे मैं हो गया, भूपेंद्र जी गिटार हो गए, शिव जी संतूर हो गए, उसके बाद में हरि जी फ्लूट हो गए, मुरली
0: मनोहरी दादा
1: दादा की फ्लूट हो गए,
0: सेक्सोफोन।
1: सेक्सोफोन हो गए, चलो सोलो बजाना तो मेरे बसुदा हो गए। तो घर के रिदम में अगर कुछ सोलो बजाना है तो मारुति हो गया।
0: मारुति बजाते थे।
1: हाँ, और उनके मतलब ही हैड ए क्रीम ऑफ म्यूजिशियन, पंचम हैड ए क्रीम ऑफ म्यूजिशियन। तो मुझे किसी ने बोला कि क्या था, तो मैंने कहा जैसे अकबर के पास 9 रत्न थे,
0: जी,
1: ऐसे आरडी बर्मन के पास भी 9 रत्न थे।
0: क्या बात है, क्या बात है
1: और 9 रत्न कौन थे?
0: जी।
1: मनोहरी जी,
0: एक,
1: बासु जी के,
0: दो,
1: भूपी जी,
0: तीन,
1: उसके बाद भानु,
0: हाँ,
1: चार
0: चार,
1: मारुति,
0: पांच,
1: देवीचंद,
0: छः,
1: अमरुत,
0: सात,
1: होमी मुल्ला
0: आठ,
1: और एक चंद्रकांत।
0: नौ। गजब
1: ये
0: गजब
1: 9 लोग
0: जी।
1: उनके घर में बैठे होते थे, काम करते थे।
0: ये सब हीरे थे, नगीने थे, ये
1: और
0: सब
1: इसमें
0: फिल्म
1: कई लोग
0: म्यूजिक के।
1: तो मतलब जब होमी है, ये चंद्रकांत है, ये इनका काम था इंस्ट्रूमेंट लेके जाना,
0: हाँ,
1: रखना और इंस्ट्रूमेंट घर में लाना, ये भी उनका काम था। म्यूजिशियन भी थे और ये काम भी करते थे।
0: गजब गजब।
1: हाँ, चंद्रकांत
0: ये
1: हो
0: एक
1: गया,
0: पूरी टोली का।
1: पूरी टोली का काम था। और मतलब उनका काम जो मैंने कभी कभी, मैं तो ज्यादा जाता नहीं था उनके ड्रेसिंग रूम में, लेकिन पंचम ने अगर कुछ गाया है
0: जी
1: तो भूपी जी ने कुछ गा दिया, मारुति ने कुछ गा दिया, अपना मारुति ने कुछ बजा दिया, 15-20 मिनट के बाद गाना ओके हो गया, चलो चलते हैं
0: वाह वाह वाह,
1: खाना खाते हैं, दारू
0: ऐसी
1: पीते
0: सुपर क्रिएटिव।
1: हैं, ऐसा।
0: शान फिल्म के गाने में, यमा यमा में,
1: हाँ
0: आपने जो वायलिन बजाया वो बहुत अलग है, उसके
1: जी
0: बारे में
1: जी
0: बताइए।
1: वो मुझे याद नहीं, लेकिन मतलब हम तो रोज ही बजाते रहते थे। बट ये पीस ऐसा था तो मैंने कहा आप इसको ऐसे करें तो इसको ऐसे करें, तो करते करते वो हमारा फिक्स हो गया म्यूजिक। और फिर वो वजह, आप वो गाना सुनिए, आपको बहुत मजा आया, बहुत बहुत खूबसूरत वायलिन है उसके अंदर,
0: क्या बात है।
1: बहुत उतार चढ़ाव है उसके अंदर, और इसको इजिप्शियन स्टाइल बोलते हैं,
0: जी,
1: तो सुन लीजिए आप।
0: जरूर।

0: सर, इतने सारे गानों की बातें हुई, पंचम के साथ कुछ और याद हमारे साथ बांटना चाहें आप?
1: पंचम जी के साथ यादें तो बहुत सारी हैं, बट ऐसा है, एक बार मैं पंचम के साथ नाराज हो गया था।
0: अरे
1: वो क्या हुआ कि एक रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो केबीएन,

0: एक सेंटेंस आ गया था ना, केबीएन, केबीएन का मतलब कोई बात नहीं होता ना, अरे केबीएन कोई बात नहीं, हो गया कोई बात। तो ऐसे काफी दिनों से केबीएन चल रहा था,
1: जी
0: तो हम लोग भी अच्छा लगा कि आशा जी ने गलती कर दी केबीएन, उन्होंने गलती कर दी केबीएन, एक तीसरे ने गलती कर दी केबीएन, कोरोस ने गलती कर दी केबीएन। तो ये केबीएन कुछ 4-5 महीने से चल रहा,
1: एक जुमला बन गया
0: एक
1: था।
0: जुमला बन गया। तो अभी एक रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो एक पीछे से कि वायलिन वाले की गलती हो गई
1: ओ
0: और उसको कट करना पड़ा। तो पंचम नाराज हो गया, ही स्टार्टेड शाउटिंग, काम नहीं करते ध्यान से, ध्यान कहाँ रहता है, ये होता है वो होता है, इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग जा रही थी, ये हो गया वो हो गया, चलो टेक करते हैं, अभी गलती मत करना। सब साइलेंट हुआ तो मैं खड़ा हो गया, कहा पंच जी मैं पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ केवीएन केवीएन केवीएन, आशा जी की गलती हुई थी केवीएन, गोपी जी की गलती हुई थी केवीएन, इनकी गलती, एक वायलिन वाले ने गलती कर दी तो आप इतना शाउट कर दे, व्हाट इज दिस। अरे उत्तम, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। उस आदमी का एक कमाल था, उस आदमी में कहीं ईगो नहीं था,
1: क्या बात है,
0: ही लाइक ए फ्रेंड एंड आई एम सॉरी, आई एम सॉरी उत्तम, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी।
1: वाह।
0: फिर मैंने कहा केबीएन केबीएन। फिर सब लोग, सब म्यूजिशियन हंस पड़े, वायलिन वाले भी हंस पड़े कि वायलिन में कोई बोला तो सही, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में किसी बोलने की हिम्मत नहीं होती। तो ये सोलोस जो है वो तो है, अरे एक बेचारे से किसी से गलती हो गई तो एकदम शुरू हो गया। तो ये किस्सा। फिर एक बार ना पंचम, क्या क्या था, पंचम का क्रिएटिविटी बहुत थी,
1: जी, आपको कुछ पीसेस याद आते हैं?
0: पीस तो वैसे बहुत सारे मैंने ठीक करवाए ले जो भी है, लेकिन आपका एक बहुत, आपकी एक फिल्म है सागर,
1: हाँ,
0: तो सागर में बहुत बड़ा पीस था,
1: जलपरी वाला।
0: वायलिन सोलो का पीस था
1: अच्छा
0: सागर फिल्म,
1: जी,
0: तो जो वो कमल हासन बजाता है,
1: अच्छा, वो जी।
0: तो मुझे आके बोला गया कि इतना बड़ा पीस है, ऐसे ऐसे है, ये है, और वो बजाते बजाते तार टूट जाती है,
1: हाँ
0: ये हमको पिक्चर में दिखाना है।
1: जी,
0: तो मैं बड़ा परेशान हो गया, पहले तो पूरा पीस बनाया, पीस वहीं बैठ के कंपोज किया, ऐसे बजेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये चलो मेरा पीस कंपोज हो गया, अभी तार टूटे कैसे,
1: तो तोड़ना पड़ेगा सचमुच
0: टूटेगी नहीं ना ऐसे, तार ऐसे नहीं टूटते,
1: जी।
0: कितना भी मारो टूटेगी, जब कभी कभी टूट जाती है, ऐसे
1: हाँ
0: नहीं जोड़ते। फिर मैंने, अभी वो वायलिनिस्ट नहीं है, किशोर सिंह करके एक बहुत अच्छा वायलिनिस्ट थे,
1: जी,
0: उनको बुलाया, जैसे वो चैम्बर है ना, मैं वहां खड़ा होकर गया, जिस उस चैम्बर में लता जी आशा जी वगैरह सब वहां उसी चैम्बर, तो उस चैम्बर में मेरे को जगह दी गई कि उत्तम ये यहां से बजाओ, क्योंकि बाहर से उनको हॉल में नॉइस, तो ठीक है। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा किशोर जब मैं पूरा पीस बजाऊंगा तो मैं तुमको साइन दूंगा, मैं ऐसे करूंगा तो तू ट्रंक करके साइन दे, जैसे ये ऐसे,
1: स्नैप आ
0: तो
1: जाए
0: हाथ से करना,
1: जी
0: जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे ये वायलिन है ना,
1: जी
0: अभी
1: हाँ
0: ये साउंड है,
1: जी
0: ये चाहिए, तार टूट गई,
1: हाँ
0: तो की 2-3 रिहर्सल की, जब वो किशोर पूरा समझ गया तो रिकॉर्डिंग की। तो फिल्म में दिखाया कि उन्होंने तार टूटी है,
1: हाँ
0: लेकिन वो हाथ से किया हुआ है,
1: वो पीस आप बजाएंगे हमारे लिए?
0: नहीं, वो पीस अब नहीं बज सकता।

0: एक दिन कुछ पता नहीं अजीब सा गाना लेके आया।
1: हाँ
0: हम लोगों ने बजाया, मैं कह यार क्या बात है। तो मैं वेट कर रहा था पंचम के, पंचम आए तो मैं पूछूं। तो पंचम जी आए तो मैं पंचम दा ये कहाँ से लाते हो रोज रोज यार।
1: हाँ
0: बोलता है उत्तम हो जाता है यार, काम करते रहते ना हो जाता है। वो जो हो जाता है ये बात जो है ना, ये जब मैं डायरेक्टर बना तब मुझे समझ में आया कि ओ
1: काम करते रहने से हो जाता है।
0: काम करते
1: ये जो
0: समझ
1: अजीब सा गाना था ये कौन सा
0: में
1: था?
0: याद नहीं।
1: वो याद नहीं। अच्छा

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का तीसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: वादा,
3: हाँ जी वादा।
4: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
5: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
4: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी,
5: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
4: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
6: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
7: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
8: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं और हम कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं अपने युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खुश और स्वस्थ होंगे। साथ ही साथ अब कुछ दिनों में त्योहारों की शुरुआत हो रही है, तो उसकी तैयारी भी कर दिए होंगे। और त्योहारों के साथ साथ ही सुबह शाम हल्की हल्की ठंड ने भी दस्तक दे दी है, तो मौसम तो धीरे धीरे अच्छा हो ही रहा है। इस मौसम का और खुद का भी ख्याल रखिए और साथ ही साथ सुनते रहिए अपना वन ऑफ द डेली यूथ प्रोग्राम युवाणी, जो लेकर हाजिर है आपकी रेडियो हम सफर एकता। तो साथियों, हर बार की तरह आज भी करेंगे ढेर सारी बातें चर्चा से जुड़ी, जिसमें होंगी ढेर सारी जानकारी और चर्चा के साथ साथ हम सुनेंगे प्यारे प्यारे सॉन्ग्स भी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आज दिन है रविवार और रविवार को होता है हमारा खास क्रम आज की शाम आपके नाम, जिसमें मैं आप पढ़ूंगी आपके द्वारा भेजे गए पत्रों को और सुनवाऊंगी आपकी फरमाइश के गीत। इसलिए बने रहिए अपनी रेडियो हम सफर के साथ। दोस्तों सोचिए, एक तरफ हमारी धरती है जहां हमारे साथ पेड़ पौधे, पशु पक्षी और अनगिनत जीव रहते हैं, और दूसरी तरफ वही इंसान आज अंतरिक्ष की अनंत दुनिया को समझने और नए ग्रहों की खोज करने में जुटा है। यानी हमारी दुनिया धरती से लेकर अंतरिक्ष तक लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन उस आगे बढ़ने की होड़ में हम अपनी धरती को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंसान अपनी सुविधा और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने की होड़ में हमारी धरती धीरे धीरे खतरे की ओर आगे बढ़ रही है। ऐसे विषय पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि ये धरती हमारी है। अगर हम इस धरती के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारी पृथ्वी धीरे धीरे खतरे की ओर बढ़ने लगेगी। इसलिए ऐसे विषय पर हमें चर्चा करने की जरूरत है। और दोस्तों, इस पृथ्वी पर हर चीज का अपना अपना अस्तित्व है। जैसे हम इंसान हैं, वैसे ही हमारी धरती पर पशु पक्षी का भी उतना ही महत्व है, और आज जैसा उनका अस्तित्व है वो भी खतरे में है। इसलिए ऐसे विषय के प्रति जागरूकता के लिए बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, जैसे आज मनाया जा रहा है विश्व पशु दिवस। तो चलिए जानते हैं इस विषय के बारे में। फ्रेंड्स, हर वर्ष आज के दिन 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य केवल पशुओं के प्रति प्रेम दिखाना नहीं, बल्कि उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी को समझना भी है। पशु हमारी प्रकृति और पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गाय, कुत्ते, पक्षी, हाथी, बाघ, हर जीव का इस धरती में संतुलन है। ये अपने संतुलन और महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। साथियों, हर इंसान अपने ज्ञान और बुद्धि पर गर्व करते हैं। इसमें विज्ञान की मदद में बड़ी बड़ी इमारतें बना ली, समुद्र की गहराइयों तक पहुंच गए और अंतरिक्ष तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर ली। लेकिन हमारी असली महानता केवल हमारी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम अपने से कमजोर और बोल ना पाने वाले जीवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। पशु हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जंगलों में रहने वाले जीव प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पक्षी बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। मधुमक्खियां प्रांगण में मदद करती हैं। कई जीव खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है, यानी प्रकृति का पूरा क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर किसी एक कड़ी को भी हम लगातार नुकसान पहुंचाएंगे तो उसका प्रभाव पूरी प्रकृति पर पड़ेगा। और आज सबसे बड़ी चिंता यही है कि बढ़ते शहरीकरण, जंगलों की कटाई, प्रदूषण और प्लास्टिक के कारण अनेक पशु पक्षियों का जीवन प्रभावित हो रहा है। हम अक्सर कहते हैं कि गर्मी बहुत बढ़ गई है, बारिश का समय बदल रहा है, कई पक्षी और दूसरे जीव पहले की तुलना में कम दिखाई देते हैं। पर इन बदलाव के पीछे की वजह हम जानना नहीं चाहते। इन बदलाव के पीछे का कारण हमारी जीवन शैली भी जिम्मेदार है। इसलिए विश्व पशु दिवस केवल पशुओं को प्यार करने का दिन नहीं, यह अपनी जिम्मेदारी समझने का भी दिन है। दोस्तों, इसीलिए अपने आसपास के पशु पक्षियों का ख्याल रखें, उन्हें दाना पानी दें, उन्हें भी उतना ही प्यार दें जितना हम आसपास के इंसान एक दूसरे से करते हैं, क्योंकि हमारा असली इंसानियत पशु पक्षियों को प्यार करना, उन्हें समझना है। फ्रेंड्स, इन्हीं बातों के साथ हमारे इस विषय पर बातें बस यहीं तक। अब चलिए चलते हैं म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी।

मानव की जिज्ञासा ने असंभव को संभव बनाया। साथियों, इसलिए हर वर्ष 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। ये सप्ताह अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष तकनीक और मानव जीवन में इनके योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर है। फ्रेंड्स, अंतरिक्ष केवल चांद और सितारों की खूबसूरत दुनिया नहीं है। आज अंतरिक्ष तकनीक हमारे रोजमर्रा के जीवन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मौसम की जानकारी से लेकर संचार व्यवस्था तक, कृषि से लेकर आपदा प्रबंध तक और नेविगेशन से लेकर पृथ्वी के अध्ययन तक, अंतरिक्ष विज्ञान हमारे जीवन के अनेक तरीकों से प्रभावित करता है। भारत ने भी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को सीमित संसाधनों के बावजूद दुनिया को ये दिखाया है कि दृढ़ संकल्प, वैज्ञानिक सोच और मेहनत के बल पर बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। हमारे लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, ये युवाओं के लिए प्रेरणा भी है। दोस्तों, बच्चों और युवाओं के मन में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा पैदा करता है ये दिन। आज हमें युवाओं को केवल ये नहीं बताना पड़ता है कि रॉकेट कैसे उड़ता है, हमें उन्हें ये भी बताना पड़ता है कि रॉकेट बनाने वाला वैज्ञानिक बनने के लिए कौन सी सोच रखनी चाहिए। विज्ञान हमें सिखाता है, सवाल पूछो, तथ्यों को समझो, अंधविश्वास से बचो, प्रयोग करो, गलतियों से सीखो और लगातार आगे बढ़ते रहो। युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है। कई बार हम जीवन में पहली असफलता के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन अंतरिक्ष विज्ञान हमें बताता है कि हर असफल प्रयास हमें अगली सफलता के करीब ले सकता है। अंतरिक्ष की खोज केवल दूसरे ग्रहों तक पहुंचने की कहानी नहीं है, ये इंसान की उस यात्रा की कहानी है जिसमें उसने अपनी सीमाओं को लगातार चुनौती दी है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे इस विषय पर बातें बस यहीं तक। अब चलिए फिर से चलते हैं म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते एक प्यारे सा गीत।

वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक समाज को वास्तव में महान क्या बनाता है? क्या ऊंची इमारतें, बड़ी सड़कें, नई तकनीक या आर्थिक विकास? ये सभी जरूरी हैं, लेकिन एक समाज की असली पहचान इससे नहीं होती है, बल्कि इससे होती है कि वहाँ इंसान को इंसान के रूप में कितना सम्मान मिलता है। इसलिए आज की हमारी चर्चा का विषय है सम्मान और समानता सबके लिए। समानता का अर्थ ये नहीं कि दुनिया में मौजूद हर व्यक्ति एक जैसा हो। हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारी पसंद अलग हो सकती है, हमारी क्षमता अलग हो सकती है, हमारी परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन इन सभी अंतर के बावजूद हर व्यक्ति का सम्मान समान होना चाहिए। किसी व्यक्ति को उसकी आर्थिक स्थिति के कारण छोटा समझना, किसी को उसके लिंग के कारण कमतर समझना, किसी की भाषा या क्षेत्र का मजाक उड़ाना या किसी की सामाजिक पहचान के आधार पर उसके साथ भेदभाव करना, ये सभी हमारे समाज को कमजोर करते हैं। सम्मान की शुरुआत बहुत छोटी जगह से होती है, हमारे घर से। दोस्तों, हम अपने परिवार में एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, स्कूल में अपने सहपाठियों से कैसा व्यवहार करते हैं, काम करने वाले व्यक्ति के साथ किस तरह पेश आते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को देखकर हमारी सोच क्या कहती है, यही छोटी छोटी बातें हमारे व्यक्तित्व और समाज की तस्वीर बनाती हैं। फ्रेंड्स, युवाओं की इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है। आज सोशल मीडिया ने हमें एक दूसरे के बहुत करीब ले आया है, लेकिन इसी के साथ गलत भाषा, मजाक, ट्रोलिंग और साइबर बुलिंग जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं। फ्रेंड्स, किसी की तस्वीर या वीडियो पर टिप्पणी करने से पहले हमें सोचना चाहिए, क्या जो बात मैं लिख रहा हूँ वही बात मैं उस व्यक्ति के सामने कह सकूँगा? अगर जवाब नहीं है तो शायद वह बात लिखनी भी नहीं चाहिए। सम्मान का मतलब केवल दूसरों से सम्मान की उम्मीद करना नहीं है, सम्मान का मतलब है हम भी दूसरों को सम्मान दें। और समानता का अर्थ है हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। एक लड़की को ये महसूस ना हो कि उसके सपनों की कोई सीमा है, एक लड़की को ये दबाव ना हो कि उसे हर परिस्थिति में अपनी भावनाएं छिपानी है,

एक गरीब बच्चे को ये ना लगे कि बड़े सपने केवल अमीर बच्चों के लिए होते हैं। हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर युवा को अवसर मिले, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार मिले और हर इंसान को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले, यही एक मजबूत समाज की पहचान है। लेकिन समानता की शुरुआत केवल कानूनों से नहीं होगी, समानता हमारी सोच में आनी चाहिए। दोस्तों, हमें अपनी भाषा बदलनी होगी, अपने व्यवहार को बदलना होगा, दूसरों के प्रति अपने नजरिए को बदलना होगा। किसी को ऊपर उठाने के लिए जरूरी नहीं कि हम किसी दूसरे को नीचा गिराएं। दूसरों की सफलता हमारी असफलता नहीं है, दूसरों की खुशी हमारे लिए खतरा नहीं है। अगर हम एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करें तो पूरा समाज आगे बढ़ेगा। आज की युवा अगर ये तय कर लें कि वो जाति, धर्म, लिंग, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर समाज बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, आइए एक छोटा सा संकल्प लें। हम हर व्यक्ति का सम्मान करेंगे, भेदभाव का विरोध करेंगे, दूसरों की बात सुनेंगे, कमजोर समझे जाने वाले व्यक्ति का साथ देंगे और अपने व्यवहार को समानता और इंसानियत का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि एक सुंदर समाज केवल सरकार या कानून से नहीं बनता, एक सुंदर समाज हम सबकी सोच और व्यवहार से बनता है। फ्रेंड्स, सम्मान वो भाषा है जिससे हर इंसान समझता है और समानता वो अधिकार है जो हर इंसान का है। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ हमारे इस विषय पर बातें यहीं तक। अब चलिए चलते हैं अपने आज के खास क्रम की ओर। दोस्तों, अब मैं शामिल करने जा रही हूँ अपना पत्र जो हमें भेजा है खैरटिया ओबरा से। भेजने वाले साथी हैं प्रिया, रीता, गीता, अनिल, श्रेया, अमित और इनके मित्रगण, जिन्होंने सुनना चाहा है मेरे ब्रदर की दुल्हन फिल्म का कोई भी गीत।

वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, अब समय है आज के विचार का, जो मैंने लिया है पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी के से, जिन्होंने कहा है, अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी हमारा लक्ष्य है, हमें हर चीज़ छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना होगा। हर परिस्थिति में, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हैं, हमें अपने लक्ष्य को जरूर पूरा करने के लिए कोशिश करनी होगी। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज के कार्यक्रम यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और अपनी रेडियो फ्रेंड एकता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। कार्यक्रम के साथ थी एकता। FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फोन कॉल्स पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति रानी राजश्री की है।
1: हेलो, दिल की धड़कन बीट का वाइब्रेशन,
2: आपकी चॉइस हमारा डेडिकेशन।
1: कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
3: हेलो,
2: आपके दिल की आवाज आपके रेडियो सेट पर।
4: कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस सफर में आपके साथ हूँ रानी राजश्री। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आपसे बातचीत का ये सिलसिला।
5: हेलो, नमस्ते
4: जी। कार्यक्रम हेलो फरमाइश सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
5: मंगल प्रसाद चौरसिया ओबरा से लेता हूँ सर।
4: अच्छा, कैसे हैं सर आप?
5: हम तो अच्छे हैं। नाम है मंगल है, क्या होता है।
4: बिल्कुल, नाम से ही सब कुछ मंगल मंगल है। और बताइए सर, क्या कुछ चल रहा है आजकल?
5: नाश्ता कर रहे हैं सर, समोसा बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं सर।
4: अच्छा, और मतलब खुद नाश्ता कर रहे हैं और लोगों के भी पेट भरने का एक उपाय आप कर रहे हैं। बहुत बढ़िया।
5: 5 बजे दुकान लगाए थे, 9 बजे वहाँ, 9:15 बजे बढ़ाए।
4: जी जी,
5: अभी नहा धो के फ्रेश होकर नाश्ता कर रहे हैं।
4: बहुत बढ़िया। तो सर, जैसा कि आज 2 अक्टूबर को हमारी आपकी बातचीत हो रही है और ये कार्यक्रम एक दिन के बाद प्रसारित किया जाएगा, तो सर स्वच्छता को लेकर क्या कहना चाहेंगे?
5: ऐसा हम तो बेटा ना, हम ज्यादातर हम अपना कचरा सीधा हम अपने ठेले पे रखते हैं, चौराहे पे लेके जाते हैं
4: जी।
5: अगर कूड़ा की गाड़ी वहाँ आती है उसी समय वहाँ पर करते हैं और चला जाता है।
4: बिल्कुल,
5: मेरी शिकायत यह है बेटा
4: जी,
5: लोग दूसरे देश का बड़ा बड़कई बतियाते हैं
4: जी जी।
5: अपने खुद पी करके जहाँ मन करता हूँ फेंक देते हैं, जहाँ मन करता हूँ थूक देते हैं।
4: बिल्कुल बिल्कुल सही बात, क्योंकि

0: अगर किसी अच्छे चीज की अगर शुरुआत करनी है वो खुद से करनी पड़ेगी, और जब हम खुद से शुरू करेंगे और तभी ये सफलतापूर्वक पूर्ण होता है।
1: बिल्कुल
0: तो सर आज फरमाइश क्या रहेगी आपकी?
1: पिक्चर का, दिया का प्यारी पिक्चर का गाना सुना दीजिए।
0: कौन सा गीत?
1: जमाना हो गया सर पिक्चर देखे मैडम, क्या बताएं।
0: बिल्कुल सर, तो चलिए इस फिल्म का हम आपको सुनाते हैं गीत।

0: हेलो
1: कार्यक्रम
0: हेलो
1: हेलो।
0: फरमाइश।
1: जी जी बिल्कुल, कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अपना परिचय दें, कौन बोल रही हैं आप?
0: मैं रंजना वर्मा बोल रही हूँ, ओबरा सुमन नगर से।
1: और मैम, और क्या करती हैं आप? अपने बारे में कुछ बताएं।
0: बस घर के काम में करना, निपटाना,
1: बिल्कुल
0: गाने सुनना, हेलो फरमाइश सुनना और अच्छे अच्छे प्रोग्राम सुनना, यही मेरा काम है।
1: बिल्कुल। मतलब कि मनोरंजन के साथ साथ आप घर के जो बड़े बड़े काम हैं वो आप
0: हाँ
1: बहुत आसानी
0: हाँ
1: से निपटा देती हैं।
0: हाँ बिल्कुल,
1: और
0: गाने के साथ प्रोग्राम सुनते सुनते मेरा काम हो भी जाता है आसानी से और थकान भी एकदम दूर हो जाती है।
1: बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का भी काम है, क्योंकि जो घर के मेंबर्स होते हैं वो आप पर ही डिपेंड होते हैं।
0: बस बस बस सब लोग हो जाता है, कर लेते हैं, फिर मन भी बहुत हल्का हो जाता है, बहुत अच्छा महसूस होता है।
1: जी बिल्कुल। तो हमारी अपनी जो दिनचर्या है, अगर कहें तो वो स्वच्छता के साथ ही शुरू होती है। एक बहुत अहम हिस्सा है स्वच्छता। क्या कहना चाहेंगे आज?
0: सुबह उठ करके तो सब वही झाड़ू पोछा करो,
1: जी
0: बर्तन करो, फिर उसके बाद जो है चाय नाश्ता पानी बनाओ, नहाओ, ये सब तो दिनचर्या के रोज के ही काम है। बाकी
1: बिल्कुल
0: ये है कि थोड़ा छुट्टियां जब रहती हैं तो छुट्टी के दिन थोड़ी और एक्स्ट्रा सफाई घर की हो जाती है,
1: बिल्कुल।
0: साफ सफाई का
1: और
0: ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है।
1: जी, जैसा कि आपने कहा, स्वच्छता का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो हम अपने
0: बिल्कुल
1: समाज
0: बिल्कुल
1: को समाज
0: हाँ
1: और देश के प्रति स्वच्छता में कैसे अपना योगदान दे सकते
0: हाँ
1: हैं?
0: अरे सबसे बड़ी बात यह है ना, साफ सुथरा अगर माहौल बन जाए
1: जी
0: पूरी दुनिया का ही,
1: जी जी
0: तब तो कोई बीमारी भी ना रहे,
1: बिल्कुल
0: स्वस्थ रहे आदमी। लेकिन जो है इस वक्त जितनी प्रदूषण जितने फैल गए हैं, जितना वातावरण जैसा अजीब सा हो गया है, धुआं
1: जी
0: देख लो, चिमनी का धुआं देख लो, पानी गंदे हैं देख लो।
1: जी जी
0: हाँ
1: बिल्कुल सही कहा आपने। स्वच्छता एक जीवन का इतना अहम हिस्सा है कि अगर किसी भी
0: हाँ
1: चीज को उठा के देखें तो
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: सफाई
0: हाँ
1: से ही शुरू होती है और उसी पे
0: बिल्कुल
1: खत्म।
0: हाँ बिल्कुल, सब चीज मतलब खाना पहनना ओढ़ना और स्वास्थ्य का हर चीज का हमको जो है
1: बिल्कुल
0: ध्यान रखना जरूरी है। और सफाई जितनी रहेगी उतनी ही बीमारियां दूर रहेंगी, उतनी परेशानी टेंशन भी नहीं रहेगी,
1: जी
0: मन भी अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा हाँ बहुत अच्छा काम किया, अपना मन खुश हो जाता है, जैसे लगता है कि हम खुद ही बोल रहे हैं, अपने आप को ही धन्यवाद कर रहे हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कितना काम।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने। जो हमारे युवा वर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो सुनेंगे और समझेंगे कि सफाई वाकई कितनी जरूरी है और ये हमें शुरू करना ही चाहिए। तो आज फरमाइश क्या रहेगी आपकी?
0: माता रानी का कोई अच्छा सा गीत सुना दीजिए।
1: बिल्कुल, तो चलिए आपके लिए हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: रानी जी, नमस्ते
0: जी। नमस्ते सर, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी। थैंक यू सो मच। मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: तो सर बताइए कैसे हैं आप
1: बहुत अच्छे हैं, आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आप कैसे हो?
0: जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और अब ये जो त्योहारों का जो सिलसिला शुरू हुआ है और अभी लंबा चलेगा।
1: जी बिल्कुल चलेगा, अभी नवरात्र भी आने वाले हैं
0: जी जी
1: और अभी पितृपक्ष का श्राद्ध भी चल रहा है।
0: जी जी सर, जैसा कि आपने पितृ पक्ष का नाम लिया तो जीतिया भी आ रहा है, तो इस
1: जी
0: त्योहार के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: पितृपक्ष में तो अपने पूर्वजों की अलग अलग तिथि होती है ना, उस पे
0: जी
1: मतलब पूजा करते हैं सभी लोग अपने अपने घर पे।
0: जी जी
1: और नवरात्र में तो माता जी का 9 दिन का व्रत भी रखते हैं और आराधना पूजा 9 दिन तक रेगुलर करते हैं हमारे यहाँ पर। कुछ लोग कटाई भी कर रहे हैं, कुछ अपने अपने खेतों में थ्रेसर से निकाल भी रहे हैं
0: जी
1: और ये त्योहार भी चल रहे हैं। तो मतलब इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि दिन भर खेतों में काम करो और शाम को जाओ भगवान की पूजा आराधना करो और अपने काम में फिर से सुबह आ जाओ। तो मतलब बहुत ही अच्छा मौसम अभी है यहाँ पर और
0: जी
1: माहौल भी बढ़िया अच्छा है।
0: जब आप आध्यात्म के साथ जुड़ते हैं तो एक मन में एक अलग सा सुकून भी होता है।
1: जी बिल्कुल, और काम में काफी उत्साह भी बना रहता है।
0: जी बिल्कुल। तो सर, जैसा कि स्वच्छता पर हम लोग आज बात कर रहे हैं, क्या अहम रोल है हमारे जीवन में, इसके बारे में आज क्या कहना चाहेंगे?
1: अच्छी बात और साथ में बड़ी बात यह है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखे, स्वच्छ रखे और अपने आसपास का जितना भी एरिया है उसको बिल्कुल साफ क्लीन रखे। और
0: बिल्कुल
1: आसपास का तो ठीक है, लेकिन अगर हम कहीं बाहर भी जाते हैं ना,
0: जी
1: जैसे कि पब्लिक प्लेस हुआ, बस स्टैंड हुए, रेलवे स्टेशन हुआ, कुछ लोग गंदगी कर देते हैं या फिर ऐसे कचरा फेंक देते हैं,
0: जी
1: तो जहाँ पर डस्टबिन होता है उनका उपयोग करें और ऐसे उधर उधर कचरा ना फेंके और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए।
0: बिल्कुल सही बात है। अगर छोटा सा भी, अगर एक प्लास्टिक का टुकड़ा है या कुछ भी है, जैसे कि हम सोचते हैं कि कहीं भी फेंक दे, छोटा सा ही तो है, ये नहीं करना
1: जी
0: चाहिए।
1: बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आजकल तो काफी सुविधा हो गई है और डस्टबिन रखे हुए हैं
0: जी
1: तो लोग काफी जागरूक भी है और साफ सफाई का पूरा ध्यान भी रखते हैं। इंदौर जो शहर है हमारे नजदीक में ही है,
0: जी जी
1: उसे तो पूरे भारत में साफ एवं क्लीन के रूप में मतलब

0: चुना गया है, उसे अवार्ड भी मिला गया है।
1: जी,
0: छोटे से लगे के बड़े तक का मतलब सहयोग रहता है ना,
1: जी
0: तो अपने आप स्वच्छता और साफ सफाई बनी रहती है।
1: बिल्कुल सर, जैसे हम सोचते हैं ना कि कोई सफाई कर्मी जैसे आते हैं, वो बहुत तल्लीनता से अपनी ड्यूटी करते हैं, और हम सोचते हैं कि नहीं, उनके द्वारा सफाई करने पर ही सब कुछ साफ हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें
0: जी
1: अपना
0: बिल्कुल।
1: सहयोग बिल्कुल देना पड़ेगा।
0: और आजकल तो स्कूलों में भी मतलब काफी बच्चों को समझाया जाता है,
1: जी
0: और आजकल के बच्चे भी इतने इंटेलिजेंट है कि इधर उधर गंदगी नहीं करते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो सर ये बताएं, आज फरमाइश क्या रहेगी आपकी?
0: जी, फिल्म का नाम है आप तो ऐसे न थे,
1: जी
0: और गाने के बोले तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।

0: जी, कार्यक्रम हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अपना परिचय दें।
1: मेरा नाम पल्लवी वर्मा है, मैं
0: जी
1: उबरा सोनभद्र से बोल रही।
0: जी मैम, तो मैम आप क्या करती हैं, अपने बारे में कुछ बताएं।
1: मैं अभी फिलहाल ऐसा तो कुछ नहीं, हाउस वाइफ ही हूँ
0: जी जी
1: और ठीक है, घर के काम में और थोड़ा बहुत अपना एग्जाम वगैरह देने में बिजी, टीचिंग एग्जाम के लिए।
0: बिल्कुल, मतलब एक जो घर की जो जिम्मेदारी है, जो कि बड़ी जिम्मेदारी है, उसको उठाते हुए आप अपने फ्यूचर की भी तैयारी कर रही हैं।
1: हाँ, जो कि जरूरी भी है।

0: बिल्कुल बेहद जरूरी है। और अभी के समाज को देखते हुए कहते हैं ना नारी शक्ति, तो कभी भी वो हारती नहीं है, बस वो लगी रहती है अपने प्रयासों के माध्यम से। तो मैम जैसा कि अब त्योहारों का ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है, जुतिया है, नवरात्रि है, तो क्या कहना चाहेंगी इस विषय पे?
1: जूतियाँ तो जो मेरी मदर इन लॉ है
0: जी
1: वो व्रत रखती है, तो
0: जी जी
1: हमारे यहाँ उसकी भी तैयारी हो ही रही है जो कि कल ही है।
0: जी
1: और नवरात्रि आएगी तो उसके लिए भी 9 दिन फास्ट है, तो कुछ साफ सफाई ये वो उनकी पूजा करना नॉर्मल तरीके से सारी चीज बीत जाती है।
0: सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार जब आपस में मिलजुल कर किसी भी त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं तो उसकी खुशी बिल्कुल दुगनी हो जाती
1: हाँ
0: है।
1: जी, पर अब
0: और
1: वो भी नहीं ज्यादा हो पाता है क्योंकि भाई सबके काम के अलावा सब लोग जो है अलग
0: जी
1: अलग जगहों पर
0: जी
1: जाके
0: जी
1: बस जाते हैं,
0: जी जी
1: तो सब लोग का मिलना हो ही नहीं पाता है, बच्चों के स्कूल तो ये वो उसमें
0: बिल्कुल
1: रह जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और सुख और शांति के साथ अगर किसी त्योहार को अगर हम सेलिब्रेट करें तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और मैम ये कहते हैं ना कि किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो हमारी दिनचर्या हो, पूजा पाठ हो, कोई भी आध्यात्म का कोई भी कार्य हो, वो हमारी स्वच्छता से ही शुरू होता है। तो स्वच्छता पे क्या कहना चाहेंगी?
1: स्वच्छता जो कि बहुत जरूरी भी है, हर जगह सफाई होनी चाहिए, मुझे
0: जी
1: लगता है सिर्फ घरों में नहीं
0: जी
1: अपने
0: जी
1: अंदर भी आपको जो है वो स्वच्छता रखनी चाहिए,
0: जी
1: जो बुरी चीजें हैं उनको नहीं लानी चाहिए, हमेशा अच्छी चीजें ही बना के रखनी चाहिए।
0: जी
1: आप अगर लोगों का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करना चाहिए, तो सिर्फ ये नहीं कि अपनी स्वच्छता अपने घर तक ही सीमित रखे, हमें लगता है कि वो अपने अंदर भी लानी चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि मन की स्वच्छता बेहद जरूरी है। जी तो आज फरमाइश क्या रहेगी कार्यक्रम में?
1: आज ऐसी मेरी फरमाइश है, क्योंकि हम लोग 90s से रिलेटेड हैं,
0: जी जी
1: तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 90s ही वाले ही सॉन्ग पसंद आते हैं,
0: जी
1: थोड़े पुराने सॉन्ग भी पसंद आते हैं। मैं चाहती हूँ कि एक पुराना गाना है तू तू है वही, वो
0: जी
1: आप जो है वो बजा सके तो ठीक है, मेरे लिए बहुत अच्छी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम अगर दो लाइन आप अगर गुनगुनाना चाहें।
1: तू है वही दिल में जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तेरे बिन है सजा।
0: गीत तो बेहद खूबसूरत है और आपने गाया भी बहुत खूबसूरती के साथ है। आपकी आवाज सुन के ये लग रहा है कि किसी खास को आप ये डेडिकेट कर रही हैं।
1: जैसा कि सॉन्ग में दिया गया है, वन एंड ओनली एक ही मैन हो सकता है हम लोग की लाइफ में,
0: ओके
1: तो जो भी डेडिकेट अपने हस्बैंड को ही करूंगी।
0: तो चलिए आपके डेडिकेट किए हुए सॉन्ग को आपके रेडियो सेट पे।

0: ये था आज का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और कार्यक्रम में मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो हम सफर रानी राजश्री। और कार्यक्रम में आज का सफर बस यहीं तक। आकाशवाणी के माध्यम से कार्यक्रम में हमसे जुड़े रहिए, बातचीत का ये सिलसिला यूं ही बनाए रखिए।
1: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
4: अभी आप सुन रहे थे फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति रानी राजश्री की थी और प्रस्तुतकर्ता थे सचिन वर्मा।

श्रोताओं, इस वक्त आप हैं आकाशवाणी ओबरा के साथ और सुन रहे हैं हमारे स्टूडियो से आज के प्रसारण को। शाम के 6 बजने को है, थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे गोरखपुर केंद्र से समाचार भोजपुरी में।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम शिवानी अरोरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भदोही में 1340 करोड़ रुपया का 112 परियोजनन का लोकार्पण और शिलान्यास कैले। यह मौके पर मुख्यमंत्री कई गो योजनन का लाभार्थियन का प्रमाण पत्र वितरित भी कैले। अपन संबोधन में श्री योगी कहले कि डबल इंजन का सरकार अपन कार्यकरण का हुनर दुनिया भर में मान्यता दिलावे पदे निरंतर कार्य कई रहल हो।
1: अब हमारे कारीगर के लिए टेक्नोलॉजी है, ट्रेड की सुविधा है, एक्सपोर्ट की सुविधा है,

0: कारपेट एक्सपो जैसे आयोजन के माध्यम से उसके प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता प्रदान करने की सुविधा भी आज डबल इंजन की सरकार प्रदान कर रही है। विकास भी हो रहा है, विरासत का सम्मान भी हो रहा है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर युवा को, हर महिला को, हर कारीगर को, हर श्रमिक को प्राप्त करके प्रदान किया जा रहा है। सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ सबको जोड़ने की गारंटी दी जा रही है।
1: एक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भदोही में इंडिया कारपेट एक्सपो का स्वर्ण जयंती संस्करण का शुभारंभ कैले। पीएम सेतु योजना का आज एक बरिस पूरा हो गई हो। इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के जरिया से कौशल विकास और रोजगार का संभावना मजबूत भेल हो। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का ई योजना पछला बरिस आज के दिन शुरू भेल रहे। ब्यूरो हमारे संवाददाता से।
2: इस योजना का उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। देश में सरकारी और निजी आईटीआई की संख्या 2014 में 9000 से अधिक थी, जो 2026 में बढ़कर 13000 से ज्यादा हो गई है। पीएम सेतु योजना के तहत अब तक 850 आईटीआई को चुना गया है। इनमें 172 हब आईटीआई और 678 स्पोक आईटीआई शामिल हैं। योजना के तहत 200 आईटीआई क्लस्टर में इसे देश भर में लागू करने की मंजूरी दी गई है। आनंद और रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा का क्षेत्र में 25 बरस पूरा कैल रहल हो। ई जनसेवा से देश सेवा का मंत्र और लगातार जारी रहे वाला समर्पण से मुमकिन भेल हो। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिया से ई समर्पण लोगन की जिंदगी बदल रहल हो। आज आपन विशेष श्रृंखला में हम मन बाती कई रहल है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से ई संकल्प के कैसे वास्तविकता में बदल गयी।
3: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर एक रुपए में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुँचते हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि डीबीटी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहा है।
4: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
3: इस साल अगस्त तक डीबीटी के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। आकाशवाणी समाचार के वाराणसी से मनीष सिंह।
1: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज अयोध्या मेडिकल कॉलेज में आयोजित कॉन्फ्रेंस में शामिल भेले। यह मौका पर अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री कहले कि अयोध्या मेडिकल कॉलेज में 4 को नया विभाग खोलल जाए। यह में प्रमुख रूप से हृदय रोग, किडनी, गैस्ट्रो जैसन ऑडियो जरूरी विभाग शामिल हुए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज भी नहीं शहीद सूबेदार मेजर सत्यवान का पार्थिव शरीर लेके घरे जा रहल एम्बुलेंस सड़क के किनारे खड़ा ट्रक से टकरा गयी, जिससे एम्बुलेंस में सवार 4 लोगों के मौती हो गयी। हादसा अयोध्या सुल्तानपुर सीमा के लगे हलियापुर थाना क्षेत्र में भयल। पुलिस का मुताबिक देवरिया निवासी सूबेदार मेजर सत्यवान कछु दिन पहले पंचकुला में शहीद हो गयल रहले। उनकर पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार खातिर परिवार के लोग पंचकुला से एम्बुलेंस के जरिया से देवरिया ले जाते रहले। अभी उस सुल्तानपुर के लगे ही पहुंचल रहले कि हादसा के शिकार हो गए। समाचार पूरा भेल, नमस्कार।

0: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। समय है स्थानीय सूचनाओं और कार्यक्रम विवरण का, तो आइए सुनते हैं ये सूचना।
1: विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 से संबंधित एक विशेष सूचना। वाराणसी खंड स्नातक और वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन

0: क्षेत्र के सभी मतदाता कृपया ध्यान दें। कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी सोनभद्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग ने विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही पूरे जनपद में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। कृपया मुख्य तिथियों पर विशेष ध्यान दें। चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तारीख मंगलवार 29 सितंबर 2026, नामांकन की आखिरी तारीख मंगलवार 6 अक्टूबर 2026, नामों की वापसी की अंतिम तारीख शुक्रवार 9 अक्टूबर 2026, मतदान का दिन शुक्रवार 23 अक्टूबर 2026, मतदान का समय प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक, मतगणना का दिन मंगलवार 27 अक्टूबर 2026। वाराणसी खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सभी सम्माननीय मतदाताओं, याद रखें, लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं और सही समय पर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। जिलाधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सोनभद्र द्वारा जनहित में जारी।
1: और आइए अब हम आपको जानकारी दें खोए हुए व्यक्ति के संबंध में ये सूचना। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार सैयदा पुत्री मोहम्मद इरशाद लंका कॉलोनी वार्ड नंबर 7 तुर्रा थाना पिपरी तहसील दुद्धी जनपद सोनभद्र जो दिनांक 4 जुलाई 2026 से लापता हैं। आपका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 15 वर्ष, लंबाई 4 फीट, रंग सांवला। आपने नीले रंग की कुर्ती और नीले रंग की पैंट पहनी हुई है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर निकटतम थाना अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित अवश्य करें। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, आइए आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे दें। रात 10 बजे आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम 9:30 पर अनुप्रसारित होगा। ये दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस। पुराने फिल्मी नगमे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुनेंगे रात्रि 9:16 पर। 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 8 बजे कार्यक्रम होगा सुगम संगीत का। 8:30 पर आप सुनेंगे एक बार पुनः सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा। बच्चों के लिए जो हमारे ग्रामीण बच्चे होंगे उनके लिए कार्यक्रम लेकर आएंगे बाल गोपाल शाम 6:40 पर। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत। स्थानीय सूचनाओं और कार्यक्रम विवरण का समय अब समाप्त होता है। FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के उपरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम। नखड़ू भैया तो हूँ के राम राम हो, कही सुनाओ का हाल चाल।
1: राम राम भैया, देख हाल चाल पूछा था आवा वाला जो त्योहार बा भैया नवरात्र, ओकर पहले ही से तैयारी। और देखा अभी जोन एक जुतिया भैया त्योहार रहल, ओमिन चारों तरफ चहल पहल रहल।
0: बिल्कुल भैया,
1: एक भक्ति मैं चारों तरफ
0: वातावरण। हाँ, एकदम सही बात कह तो भैया। देख पुत्रन के दीर्घायु बदे जौन माता बाई वो ज्योत पुत्र का व्रत करानी भैया हो, बड़े धूमधाम से काल मनावल गल। आज मात्र नवमी है, देखा।

0: पानी के सहारे खेती बा, और पानी इस समय बहुत जरूरी होला। बिल्कुल भैया, देखा, और आज के दिन खास ये बदे भी बा भैया के 4 अक्टूबर के दिन हर साल विश्व पशु दिवस मनावल जाला। और ये दिन का उद्देश्य भैया यह बा कि पशुअन के प्रति प्रेम, दया और संवेदनशीलता बढ़ावल जाए और उनके संरक्षण बदे लोगन के जागरूक करल जाए।
1: बिल्कुल सही
0: और
1: बात।
0: पशु जौन है हमरे जौन है वो वातावरण, पर्यावरण और जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे भैया गाय, भैंस, बकरी, कुकुर, बिलार, पक्षी, हाथी, हिरण और अनेक जौन वन्य जीव आया, देखा, प्रकृति के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभावन।
1: बिल्कुल सही बात कहत हो। तो देख नखड़ू भैया, ये जौन विश्व पशु दिवस का शुरुआत भर हल ई सन 1925 में जर्मनी का जौन पशु प्रेमी और लेखक रहना
0: अच्छा भैया,
1: हेनरिक जीमर मैन इनके द्वारा भैया कल गए रहल। एकरे बाद भैया 1931 में इटली में
0: अच्छा,
1: फ्लोरेंस में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एके वैश्विक स्तर पर मनावे का निर्णय लेवल गल। भैया हो 4 अक्टूबर के ये बदे ई चुनल गल, काहे से कि दिन सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी का पुण्यतिथि है,
0: अच्छा,
1: जिनमें पशुअन और प्रकृति का जौन भैया संरक्षक बा उनकर उनके एकर संत मानल जाला।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एकर जरूरत भैया यही बदे भी पड़ल ना। देखा, जैसे हमन जीव भाई, हमन की भूख प्यास लगला,
1: बिल्कुल
0: चोट लगला तो कष्ट होला, वैसे ही भैया जौन जानवर बायान बोलता, जीव बायान, उनके भी देखा ये महसूस होला बहुत। एकरे बदे जौन मनुष्य जाति बा उनके संवेदनशील हो के पड़ी, जौन पालतू पशु बाया उनकरे बदे समय पर पर्याप्त भोजन दिहल जाए,
1: बिल्कुल
0: स्वच्छ पानी और सुरक्षित स्थान पर उनके रखे के प्रयास करल जाए। अगर कहीं बीमार हो गए ना भैया, तो जौन पशु चिकित्सक बाया उनके उनसे उनका इलाज करवावल जाए, तो स्वस्थ रही हैं। और देखा, जानवरन कि कोनो अगर कष्ट होत बा तो बतौता नहीं भैया, जे उनके पल्ले बा उन जरूर उनकर भाषा समझ
1: बिल्कुल
0: पावन।
1: भैया, वो देखें ऐसा बात बना नखड़ू भैया का जौन अपन पशुपालक भाई लोग हम वो हर समय सुबह दोपहर शाम अपने पशुअन के देखता। अब पशु इतना जानकार होला कि अगर भैया वो आपके चिन्हता, आप अगल बगल भैया दिखाई दे देला, तो वो तुरंत बोली के माध्यम से आपके बुलाई।
0: बिल्कुल
1: जैसे जौने समय उनके कोनो चीज खाए पिए के देता है या हरा चारा लिया के देता है, या कभी भैया जैसे आजकल लोग साइकिल से मोटरसाइकिल से भी जाना, तो जाए का अगर वो हरा चारा वही से लिया के देता है, तो जब वो मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई ना तो वो लग है बोला समझ
0: बिल्कुल,
1: जाई है कि अब जौन हमार खुराक बा
0: अब मिला
1: वो
0: वाला
1: आवे वाला बा। तो पशु भी संवेदनशील होला, तो ऐसे भैया पशुअन के प्रति जौन दया और संवेदनशीलता बा कहीं न कहीं ओके विकसित करे के चाहिए हम लोगन
0: और
1: के।
0: भैया देखा, कभी कभार देखा के सुनाए में मिला ला कि पशु कोनो कारणवश घायल हो गल बा, ओके भूख लगल बा,
1: बिल्कुल
0: तब हम लोगन जौन हो नजरअंदाज कर दिला जा, आगे बढ़ जाइला। कभी कभी तो कुछ लोगन भैया पशुअन के डरावे और परेशान करे में बड़ी आनंद महसूस करना। तो भैया हम तो कहब कि पशुअन के परेशान कह कर आनंद लेब कहीं से भी उचित नहीं।
1: एकदम नहीं भाई,
0: पशुअन से मवेशियन के बीच में हम लोग अगर बाई तो अगर उनके महसूस होत बा, असुविधा महसूस होत बा भैया, तो उनसे उचित दूरी बना के रखल जाए।
1: बिल्कुल
0: अगर घायल पशु बाए तो भैया उनके पशु चिकित्सक से इलाज करवावल जाए। हमन कभी चूंकि कर्तव्य होला कि जवन जीव बाया अगर कष्ट में बाया तो उनकर मदद और उन जहाँ तक हम लोग मदद कर सकीला वहाँ जरूर उनके करे के प्रयास करल जाए।
1: बिल्कुल सही बात कहो नखड़ू भैया। देखो पशु जौन हो ना अपने पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण श्रृंखला हम। अब भैया हो वो खाद्य श्रृंखला, कृषि, पर्यावरण संतुलन और मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभावना।
0: बिल्कुल भैया,
1: यदि पशुअन का जौन प्रजाति बा विलुप्त तो होतिया, तो नखड़ू भैया हो जौन प्रकृति का संतुलन बा
0: वो
1: ना
0: बिगड़ता भैया,
1: बिल्कुल बिगड़ सकला। ऐसे कि भैया हो ये प्रकृति में

0: चाहे पेड़ पालो हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे नदी पहाड़ हो, चाहे मनुष्य हो, भैया सबकर कहीं ना कहीं भैया महत्वपूर्ण योगदान बा। आ वो अपने प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बाया, वो प्रकृति का संतुलन बदे कुछ न कुछ करना,
1: भैया बिल्कुल सही कहा था
0: यही
1: एक
0: से सृष्टि में उनकर रचना भई।
1: बिल्कुल बिल्कुल। आ देखा भैया, पशु पक्षी जोन बाया वो एक तरह से बहुत गहरा नाता बा प्रकृति और पर्यावरण से।
0: बिल्कुल
1: पक्षी देखा बीज के एक जगह से दूसरे जगह तक फैलावे का भी भैया काम कराना, जैसे जंगल अगर होत बा तो कहीं ना कहीं उनका योगदान बा। और ये जो खाद्य श्रृंखला के बात के ना होकर एक बहुत बड़ा हिस्सा है जंगल में। देखा वन्य जीव को उपस्थिति और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखे में इनकर महत्वपूर्ण भूमिका होला।
0: बिल्कुल
1: भैया कौनों भी प्रजाति अगर संख्या में कम होते हैं, जैसे कि आप कहना कि विलुप्त हो जाते हैं, तो ओकर सीधा असर हमन के जीवन पर भैया पड़ला।
0: बिल्कुल
1: तो हमन के जिम्मेदारी बनत बा कि जौन भी अनबोलता जीव बाएं, पशु बाएं, पक्षी बाएं, उनकर संरक्षण करल जाए, उनके बचावे के प्रयास करल जाए भैया।
0: बिल्कुल एकदम सही बात कहत हो। तो बचावे के बात अगर करत हो नखरू भैया, तो देखे अपने पंच भैया लोगन के पशुओं के साथ है दयालु व्यवहार करे के चाहिए। जौन माने पालित पशु बाएं उनकर उचित देखभाल करें, वन्य जीव और उनके आवास का रक्षा करें, पशु क्रूरता घटना का जौन सूचना बा तो संबंधित अधिकारियों तक दें। विश्व पशु दिवस जौन बा हम लोगन के याद दिया वाला भैया कि पशु केवल संसाधन न हुआ बल्कि एक संवेदनशील जीव हुआ,
1: बिल्कुल भैया
0: उनके संरक्षण और कल्याण का जिम्मेदारी हम सबका है। एक दयालु समाज वह है भैया जौन अपने पशुअन और प्रकृति का सम्मान करला। तो अभी बात बत कही तो हम लोगन अपने पंच भैया लोगन से करब, लेकिन आज जानकारी अपने पंच भैया लोगन बदे का ले के आल बा तनी
1: भैया,
0: यो बतावा।
1: पशुअन से जुड़ल जानकारी पर चर्चा भी हमन करत रहली विश्व पशु दिवस के रूप में।
0: बिल्कुल
1: तो देखा यही से जुड़ल जानकारी भी हमन के बीच में बा कि पशु मनुष्यों के जीवन के रक्षक ब्रज किशोर यादव भैया जानकारी देवत हैं और जगत नारायण भैया बतियावत हैं। अब भैया आज चूंकि इतवार के दिन है, बागेश्वर प्रसाद और साथी लोगन के कर्मा भी सुनल जाये, लेकिन सबसे पहले हम तो कभी जो जानकारी बा कि पशु मनुष्यन के जीवन में रक्षक कैसे हैं, तो आवाज जानकारी सुन लिया जाए।
0: बिना देर के लिए सुना जाए।
2: सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी बला के टेढ़ा गांव में श्री ब्रिज किशोर यादव जी प्रवक्ता से मुलाकात हो रही है। आप बहुत ही उत्कृष्ट व्यक्ति हैं, आप शिक्षा दीक्षा से लेकर के सामाजिक कार्य और शिक्षण कार्य सब में बहुत ही रुचि रखते हैं, साथ साथ पशुपालन और पशुओं को किस तरीके हमारे जीवन में उपयोग किया जा सकता है, उनका मानव जीवन में क्या कुछ भूमिका है, इस सब के बारे में आपसे बात विचार होगी, आप जानकारी रखते हैं। ब्रज किशोर यादव जी, अब प्रत्येक प्राणी लगभग कहीं न कहीं से एक दूसरे के पूरक है, और यहाँ तक कि जंतु वनस्पति की बात ली जाए या मनुष्य की बात ली जाए तो सारे लोग कहीं न कहीं से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसे में पशुओं का कितना योगदान है हम मनुष्यों के जीवन में?
3: जी, सबसे पहले मैं श्रोताओं को अपने तरफ से नमस्कार करता हूँ। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश है तो कृषि में हम सिर्फ कृषि ही नहीं, फसल उगाना ही नहीं, बल्कि पशुओं को अपने अभिन्न अंग मानते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पशु हमारे जीवन का एक एक कण में सहयोग करता है।
2: जी
3: जैसे फसल उगाना है तो उनके जो जैविक खाद हैं उससे हम फसल उगाते हैं और उस
2: गोबर प्राप्त होता है,
3: गोबर प्राप्त करते हैं
2: बिल्कुल
3: जिससे
2: बिल्कुल
3: फसल उगाते हैं, और हमारा निरोग होने का एक सार्थक सिद्ध होता है, क्योंकि उससे जो हम फसल उगाते हैं तो बहुत कामयाब या स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होता है।
2: जी।
3: और पशुओं की रक्षा, एक पशुपालक भाई देखिए व्यायाम के लिए तो समय नहीं निकाल पाता है,
2: जी
3: लेकिन जब वह सुबह उठता है तो उसे चारा पानी देना, घास देना, भूसा लगाना, एक उसकी आधे घंटे या घंटे की व्यायाम हो जाती है,
2: जी जी
3: जो
2: बिल्कुल
3: मनुष्य की एक रामबाण साबित होता है।
2: बिल्कुल

0: क्योंकि हर मनुष्य भी चाहता, स्वस्थ रहना चाहता है, तो पशुओं के से हमें बहुत ही लाभ मिलता है। जैसे उनकी गोबर की खाद हो गई, उससे हम फसल उगाते हैं, उनसे हमें दूध उत्पादन होती है,
1: जी
0: जिससे दूध प्राप्त होती है, उसका हम सेवन करते हैं, जिससे हम हष्ट पुष्ट होते हैं। हाँ, संपूर्ण आहार मिलता है
1: हाँ
0: उससे,
1: जी जी जी
0: जिससे हम अपना मानसिक संतुलन बना पाते हैं। जैसे कहा भी गया है कि बकरी का दूध दवाई के लिए, गाय का दूध पढ़ाई के लिए,
1: जी
0: और भैंस का दूध लड़ाई के लिए अर्थात
1: बाप
0: पहलवानी के लिए।
1: पहलवाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: हमारे बाप दादा लोग, हमारे बाबा ये बताते थे,
1: हाँ
0: जो
1: हाँ
0: आज हम लोग अपने जीवन में चरितार्थ भी करते हैं कि वास्तव में ये सब बहुत अमृत साबित होते हैं।
1: जी जी जी
0: इसलिए हमें पशुओं के प्रति दया भाव रखना अनिवार्य है।
1: जी
0: ऐसा नहीं है, उसका भी अगर वो नहीं बोलता है तो ये नहीं समझता, वो भी प्रेम की भाषा समझता है।
1: समझता है बिल्कुल बिल्कुल
0: जी, हमें याद है जब हमारे पिताजी डेथ किए थे, तो
1: जी
0: हमारी एक भैंस थी,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: लगभग
1: हाँ
0: वो 2 दिन तक भोजन नहीं की थी,
1: वाह वाह
0: यानी उसके आंख से आंसू आता था। इसमें मतलब कि वो भी
1: बिल्कुल
0: अपने प्रेम की भाषा या अपने स्वामी की हर
1: हाँ,
0: गुणवत्ता
1: हर
0: को
1: गुणवत्ता को समझता है
0: समझता है। इसलिए हम ना समझे कि पशु पक्षी भी हमारे कारनामों को नहीं समझते,
1: बिल्कुल
0: समझते हैं,
1: माने उनको भी स्वतंत्रता चाहिए, उनको
0: स्वतंत्रता
1: भी जो है
0: चाहिए।
1: सहानुभूति चाहिए, उनको भी
0: जी जी
1: मतलब एक आत्मीयता चाहिए।
0: आत्मीयता चाहिए,
1: जी जी
0: उनकी सजगता संवेदनशीलता पर हमें भी सचेत रहना चाहिए,
1: जी जी
0: क्योंकि ईश्वर ने हमें बोलने के लिए, हम बोल सकते हैं, अपने कष्टों को बता सकते हैं, लेकिन पशुओं में ये क्षमता है, यानी कि ये थोड़ा बोलते जरूर हैं लेकिन कह नहीं
1: उनके
0: पाते, अपने
1: हाँ
0: दर्द को,
1: उनके भाषा को हम समझ नहीं
0: हाँ,
1: पाते
0: अभिव्यक्त
1: हैं।
0: नहीं कर
1: जी जी
0: पाते।
1: जी
0: तो इसका भी हमें ध्यान रखते हुए उनकी सुरक्षा करने का, उनके प्रति उनकी देखभाल करने का ये भाव हमेशा हमें तत्परता से करनी चाहिए,
1: जी जी
0: क्योंकि वो हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग हैं, यानी कि जीवन के पल पल में जुड़े हुए हैं।
1: जी
0: अगर कह लीजिए गाय का बछड़ा है,
1: जी
0: हमारे हल जोतने के लिए काम आता
1: काम
0: है,
1: आता है
0: जिसे
1: बिल्कुल
0: हम फसल उगाते हैं, और सबके लिए, अपने ही नहीं, एक सरकार कह लीजिए कि फसल पर टिका हुआ, एक
1: बिल्कुल
0: किसानों किसानों के
1: हाँ
0: पशु
1: बिल्कुल बिल्कुल पूरा पूरा
0: पशुपालकों के कर्म
1: मानव जीवन
0: कर्मों पे पूरा मानव जीवन
1: जी जी
0: टिका
1: जी
0: हुआ है। इसलिए हम कहेंगे कि पशुओं के प्रति हमें सचेत रहना चाहिए,
1: जी
0: लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। अक्सर देखते हैं पशुओं को बर्बरता पूर्वक, कभी कभी किसान आवेश में आ जाते हैं, क्रोध में आते हैं,
1: हाँ
0: पीटते
1: हाँ
0: हैं। ये पीटने का अधिकार किसानों के या पशुपालकों भाई का नहीं है, क्योंकि वो भी, उसे भी दर्द होता है,
1: और कहीं न कहीं से हमको लाभ पहुंचा भी रहा
0: हमें
1: है।
0: लाभ पहुंचा रहा है,
1: जी
0: और लाभ ही नहीं कह लीजिए कि हमें एक अनमोल जीवन दे रहा है
1: जी
0: वो।
1: जी जी
0: सिर्फ हम उसे चारा पानी देते हैं, बल्कि उसमें संपूर्ण आहार देता है। इसलिए पशुओं की सुरक्षा करना, उनकी देखभाल करना, और लोगों में यह जागरूक करना, क्योंकि प्रतिवर्ष हम 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस भी मनाते
1: जी
0: हैं।
1: जी जी
0: इसकी आवश्यकता तब हुई कि देखे, जैसे जर्मनी के हेनरिक नाम के एक लेखक थे, उनके मन में आया होगा कहीं ना कहीं पशुओं के प्रति बर्बरता या कहीं निर्दयता देखा होगा उन्होंने, तब
1: जी
0: जाकर हर वर्ष 4 अक्टूबर को पशु दिवस के रूप में भी मनाना उन्होंने शुरू
1: हाँ
0: किया,
1: हाँ हाँ
0: कि लोगों में जागरूकता पैदा हो, उनके
1: जी
0: अधिकार कर्तव्य, पशुओं को अगर बोल के नहीं बताते हैं तो
1: जी
0: छीने भी न जाएं।
1: बिल्कुल
0: जैसे
1: बिल्कुल
0: मनुष्य अपना अधिकार कर्तव्य बता लेता है या कष्ट होता है तो कहीं जाकर कानूनी प्रक्रिया में ले लेता है, लेकिन वो पशु हैं, वो कहीं जा नहीं सकते, लेकिन उसके जो पशुपालक स्वामी हैं उनका हनन न करें, इसलिए उन्होंने 4 अक्टूबर को पशु दिवस के रूप में
1: जी जी जी
0: मनाने का एक संकल्प लिया, जो हम सब के हिसाब से बहुत सराहनीय कदम उन्होंने उठाया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और लोगों को, किसानों को, पशुपालक भाइयों को, यह हर संभव किसी भी जीव जंतु को सुरक्षा करना चाहिए, क्योंकि जीवों की रक्षा पर्यावरण की सुरक्षा,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: यानी जीव की जब हम रक्षा करेंगे तभी हमारी पर्यावरण की सुरक्षा होगी, और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सदुपयोग और लाभकारी सिद्ध होगा।
1: अच्छा पहले पशु बहुत अधिक मात्रा में रखे जाते थे
0: जी
1: और आज भी उसका कुछ कमी भी हो रही है,
0: जी
1: तो कहीं न कहीं से पशुओं की कमी पर्यावरण प्रदूषण के कारण हो सकता है
0: जी
1: क्या?
0: जी पर्यावरण प्रदूषण का

0: हो सकता है। कहीं एक मैं पढ़ रहा था, कहीं ये पक्षियों का, एक पक्षी गौरैया पक्षी का,
1: जी
0: उसमें जिक्र था कि वहां पर उनके किसानों की फसलों को नुकसान करते थे,
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: वहां पर उन्होंने पक्षियों को, मैंने गौरैया को मरवा दिया,
1: अच्छा।
0: मरवा दिया। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि
1: हाँ
0: एक दिन ऐसे कीट पतंगे उत्पन्न हो गए कि वो फसलों को खत्म कर दिए, और वहां लोग खाए खाए बिना मरने लगे।
1: जी
0: यानी
1: जी
0: कि पक्षी पशु वो जो पक्षी रहते थे, तो जो उनके नुकसानदेह कीट
1: हाँ,
0: पतंग
1: जो
0: थे, उनको,
1: हानिकारक कीट थे। जी
0: हाँ, पर्यावरण के लिए निगल जाते थे और उनका लाभकारी सिद्ध होता था।
1: जी तो बिल्कुल ब्रिजकिशोर यादव जी, आप सोनभद्र जनपद के दुधी ब्लॉक से,
0: जी
1: टेढ़ा गांव से हैं, और आप इतना बढ़िया पशुओं के बारे में और पक्षियों के बारे में, सबके बारे में जानते हैं। आपने एक
0: जी
1: बहुत ही अच्छा बात बताया कि विश्व पशु दिवस के रूप में जो 4 अक्टूबर को
0: अक्टूबर
1: मनाया जाता है,
0: जी
1: ये वास्तव में उनको भी स्वतंत्रता देने की ज़रूरत है।
0: जी
1: जैसे हम
0: जी
1: लोग के जन्मदिन मनाया जाता है या
0: जी
1: और भी कोई त्यौहार मनाए जाते हैं, वर्षगांठ मनाए जाते हैं, शादी विवाह का इत्यादि, तो उस दिन आदमी कुछ न कुछ नया नया पहनना ओढ़ना, खाना पीना, केक
0: जी
1: काटना इत्यादि
0: जी
1: तमाम
0: जी
1: चीज़ें रखे आ जाता है। तो हमको लगता है कि इनके भी दिवस के
0: के रूप
1: उपलक्ष्य
0: में
1: में
0: मनाया जाए,
1: वो खाने पीने के अच्छा खासा प्रबंध करना चाहिए
0: करना चाहिए।
1: पशुओं को।
0: जी
1: तो इतना बढ़िया आपने जानकारी दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद मुनि भैया। हाँ भैया, भैया देखा, पशुअन पशु मनुष्यों के जीवन के रक्षक पर ब्रज किशोर यादव भैया जानकारी देवत रहना, जगत नारायण भैया बतियावत रहना।
3: बिल्कुल भैया, देखा बात बड़ा बढ़िया भइल है। भैया जो बतौले ना कि भैया हो, अगर हम लोगन पशुपालक हई, पशु का पालन करत हई, तो हम लोगन के कभी भी अपने पशुअन के कष्ट न पहुँचावे के चाहिए, कष्ट न देवे के चाहिए, उनके साथ क्रूरता न करे के चाहिए।
0: बिल्कुल।
3: कहीं न कहीं देखा, पशु भी अपन सहयोगी होना, कभी न कभी वो अपन रक्षा सुरक्षा भी कराना।
0: बिल्कुल बिल्कुल
3: भैया हो, आज मने बचपन का कीमत नहीं, नहीं पहले के जमाने में हलई से भैया पूरा खेत जोत जाए, तो वो बर्दन का, बैलन का बड़ा कीमत रहल, बड़ा महत्व रहल, उनकर बड़ा सेवा सुसुरखा होत रहल भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी कुछ ऐसा गांव आया भैया, जहाँ बैल और हल से भैया
3: खेती
0: खेती
3: होती है।
0: होला अभी भी, तो दिन जरूर ताजा हो जाला जो एक समय रहल कि जहाँ केवल हल बैल से ही खेती करल जात रहल है। बिल्कुल सही कहते हैं। और देखा, जब घरे के बड़ बुजुर्ग लोग जब माल मवेशीन के अपने सेवा करिए, ध्यान रखिए, तो जौन बचवा लोग भाया भैया ना, वो भी देखा उनके भी संदेश जाई कि वो भी जौन माल मवेशी बाया उनकर सेवा सिफारिश करी हैं,
3: बिल्कुल
0: जिसन की
3: देखभाल
0: देख।
3: करी है। या देखा, आप अपने कार्यक्रम के हम लोगों ने आगे बढ़ाई जा। भैया हो बगेश्वर प्रसाद और उनकर संघाती लोगन बाया, एक भैया कर्मा सुनावल चाहता पूर्ववा के देशमा,
0: तो भैया वो का कर्मा सुनावत है उन्हीं की जबानी सुनल जाए।
3: सुनल जाए भैया।
4: साधु ही होना चाहिए, लेकिन जब साधु अपने चरित्र से अलग होकर दुनियादारी में फंस जाता है तो समाज में अच्छा संदेश,

0: भैया,
1: हाँ भैया,
0: देखो हमन के अंचल गई रचल बसल जोन कर्मा रहल भैया बगेश्वर प्रसाद और साथी लोगन सुनावत रहना हाँ। और देखा एक मानर कथाप और जोन करे पौजेब के झनकार रहल है, एक अनूठा संगम रहल है। कितना बढ़िया भैया सुनावत रहना हाँ। और देखा भैया

0: एक चीज हम कहब कि अपने देश में हर कोई चाहला कि आगे बढ़े के प्रयास करला और अधिकार भी बा, लेकिन ए बीच में देखा जौन एक कुरूति समाज में देखे के मिलाला कि बाल विवाह कर दिया जाला, ओकरे वजह से का होला कि जौन लड़की बाई या लड़का बाया कम उम्र में शादी होने के वजह से उनकर शारीरिक मानसिक विकास नहीं हो पावा,
1: बिल्कुल
0: और वो बीच में जब अवरुद्ध हो जाला तो आगे चल कर अपने भविष्य की उज्जवल
1: अस्वस्थता का शिकार हो जानी, उनकर स्वास्थ्य भैया ठीक नहीं रहे,
0: बिल्कुल
1: उनके भविष्य बदे देखें हम लोगन के हर समय ध्यान देवे के चाहिए कि जौन बाल विवाह बा ये भैया एक कुरीत बा, ऐसे हर समय दूरी बनावे के चाहिए। बचवा लोगन का जौन पढ़ाई लिखाई का समय बा भैया, उनमें पढ़ाई लिखाई में जौन भी बालक या बालिका बा उनके आगे बढ़ावे का काम करे के चाहिए। काहे से कि देखा शादी ब्याह एक जिम्मेदारी का कार्य है, और जिम्मेदारी का जौन कार्य बा वो एक बालिक व्यक्ति ही, जिम्मेदार व्यक्ति ही, चाहे वो माने लड़की हो या लड़का हो, वह ही निभाई सकला। तब
0: बिल्कुल
1: भैया हो जैसे इतना दिन पाल पोस का अपने लड़की लड़का के बड़ा कैलेन गार्जियन, वैसे ही उनके थोड़ा दिन और जिम्मेदारी उठाए का जब वो बालिक हो जाए, ये समझ में आवे कि अब ये जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकाना, अपने परिवार का भैया पालन पोषण कर सकाना, तब उनकर विवाह चाहे वो लड़की हो या लड़का। लड़कन का देखा शादी का उम्र जोन बा वो 21 बरिस बा, और लड़किन का शादी का उम्र जोन बा वो 18 बरिस बा।
0: बिल्कुल, तो ये बात की जरूर अभिभावक लोग जे घरे के गार्जियन बा वो जरूर ध्यान रखें, ताकि उनकी जब पर्याप्त अवसर मिली समय मिली तो अपने अंदर जोन गुण बा उकर विकास कर सकें,
1: बिल्कुल
0: अधिक से अधिक समय दे सकें अपने भविष्य की उज्जवल बनावे। तो बिल्कुल भैया सही कहते हैं, और साथे साथे हम तो कहब कि जौन बचवा लोग बाया जिनकर उम्र 18 साल से कम बा, लड़की लोग और 21 साल से कम बा, उनके भी ध्यान से अपने भविष्य के बनावे के प्रति सचेत रह के पड़ी,
1: बिल्कुल
0: कहे से कि एक बड़ा जिम्मेदारी उनके ऊपर आवे वाला बा, ये बात के ध्यान में रख कर अगर करी है तो निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल होंगे।
1: बिल्कुल सही बात कथो नखड़ू भैया। अब देखा यही अपने पंचायती के समिति जा छनी जा तो सब मंचन के
0: बिल्कुल
1: राम
0: बिल्कुल,
1: राम।
0: बिल्कुल।

अभी हमारे ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभरे केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे ग्रामीण बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल गोपाल।

0: बचवा बोला जय हिंद।
1: नकड़ो भैया,
0: हमने भैया
1: देखा आज अपने बचवा लोगन के कार्यक्रम में हम लोग जुट गल है।
0: और जैसे भैया फुलवारी सजाए वैसे बचवा लोग रंग बिरंगा कपड़ा पहन का भैया जुटल बा। और देखा उनकरे चाहे उनकर वस्त्र हो, परिधान हो या उनकर जौन बोली हो, एक अनूठा रंग भैया जब भी जहां भी रहना बिखेरत रहना। भैया जैसन की बचवा लोगन कोनो भी देश या समाज हो भैया देखा भविष्य होना। और यही बदे देखा जौन फुलवारी बा इनकी सुंदर सुरक्षित और खुशहाल बनावे में बचपन का बड़ा जिम्मेदारी भैया बना।
1: बिल्कुल भैया, जौन बाल फुलवारी का बात करत हो नखड़ो भैया, तो देखा बाल फुलवारी एक ऐसा स्थान या समूह होला जहाँ छोट बचपन के सर्वांगीण विकास पर भैया विशेष ध्यान देवल जाला। एमे जौन अपन बचवा लोगन हुआ खेल खेल में शिक्षा

0: नैतिक संस्कार स्वच्छता का जोन आदत बा भैया वो डालना, एकरे साथे साथे सामाजिक व्यवहार और जोन रचनात्मक गतिविधि बाई एकर अवसर भी ए स्थान पर अपने बचवा लोगन के मिलला। बाल फुलवारी का सफल बनावे में स्वयं बचवा लोगन का भी जोन बा बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होला और वो भूमिका का निर्वहन अपने बचवा लोगन के जरूर करे।
1: बिल्कुल भैया, जिसे स्वच्छता का बात कही ना तो हम तो कहब कि अगर जिसे साफ सफाई के ध्यान बचवा लोग रखत हैं तो जोन भी कूड़ा में सामान फेंके भाई इधर उधर न फेंके, कूड़ेदान में डाले, पानी के व्यर्थ न करें भैया, और खेल का जो स्थान भाव के साफ सुथरा रखें। और उनकर एक और जिम्मेदारी जो नैतिक जिम्मेदारी आप कहते हैं भैया, देखे अनुशासन में रह कर अगर हर समय अपन काम करें तो जरूर अपने काम में सफल हुए हैं। और अपने बारी के इंतजार करें, नियम का पालन करें, दूसरे ऐसे कहा कि दूसरे की परेशानी न हुई और इसे आपको प्रशंसा भी हुई, आपको सम्मान भी हुई।
0: बिल्कुल सही बात कथो नखड़ू भैया। भैया हो देख जौन बचवा लोगन हो अगर फुलवारी लगवले हो यानी पौधा बा उनके बाग बगीचा में या उनके विद्यालय में, तो पौधन का नियमित रूप से भैया वो पानी दें, फूल पौधन के नुकसान न पहुंचावें, वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण में भाग लें, और जो पक्षी और अन्य जीव बाया उनके प्रति जो दयालु व्यवहार बा भैया ओके अपनावें। एकरे साथे साथे समय पर आना और गतिविधियन में भाग लेना।
1: बिल्कुल
0: शिक्षक का या जे उनसे बड़ बा ओकर सम्मान कयल, नियम का पालन कर, जे भी अगर केहू भी छोट बा चाहे बड़ बा सबके साथ भैया विनम्र व्यवहार कर बहुत जरूरी बा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहते हैं भैया। देखो बचवा लोगन जब स्कूली में जाना साथ में या गली मोहल्ला में खेलाना तो अलग अलग तरह के बचवा लोग अलग अलग क्षमता का रहना, तो उनके साथ ऐसा ना हो कि दुर्व्यवहार हो या उनकी नीचा दिखावे के प्रयास हो, उनके साथ भी सम्मान के साथ पेश आवे। तो इससे कहा हुआ कि एक दूसरे के जब सम्मान करिए तो आपका भी सम्मान हुई।
0: बिल्कुल
1: हर काम अगर समय से करिए तो आप खुश रही हैं, हर काम जब समय पर पूरा हो ले तो आपके समय भी मिली खेले के या अन्य काम में जोने में आपको बहुत ज्यादा रुचि बा। भैया देखा अच्छा आदत छोट छोट जरूर होला लेकिन ओकर असर बहुत बड़ा होला।
0: बिल्कुल
1: जैसे कूड़ा में जो कूड़ा बा इधर उधर हम फेंका थे डिब्बा में डाल दिया जाए, और साथे साथे भैया ऐसे कहा कि पर्यावरण सुरक्षित रही साफ रही। जैसे देखा जाला कि अगर कहीं कोनो चीज अगर दिहल जाता बांटल जाता स्कूल में तो भीड़ लगा लिया जाला। ऐसे कहाला कि सब बचवन के बारी बारी से जब जो लेवे के खड़ा बाया उनके पहले नहीं मिल पावे भैया अव्यवस्थित हो जाला। तो ऐसे का होला कि बचवा लोगन के तमाम तरह का परेशानी होला, तो इससे अच्छा कि अपन अपने बारे के इंतजार करें।
0: बिल्कुल सही बात कहते हो,
1: अनुशासन में रह कर एक दूसरे के प्रति सम्मान पूर्ण व्यवहार करें। ऐसे का हो कि एक अच्छा आदत आप लोगों के अंदर आई और अच्छा आदत आई तो जीवन में आगे जहाँ भी जाइए वहाँ सफल हुई है भैया।
0: बिल्कुल बचवा लोगन के देखे नई बात सीखे का प्रयास करे के चाहिए, पुस्तक कहानी या शैक्षिक गतिविधि जोन बा उनमें भाग लेवे के चाहिए। अब प्रश्न पूछ के भैया आपन जो जिज्ञासा बा उनके बढ़ावे का प्रयास करे के चाहिए। एक साथे साथे जोन खतरनाक वस्तु बाई उनसे भैया दूर रह, खेलत समय सावधानी बरत कि कौनो भी समस्या या दुर्घटना का सूचना जौन बा तुरंत अपने शिक्षक और अभिभावक के दया। अब भैया हो बाल फुलवारी बचवा लोगन में आत्मविश्वास नेतृत्व क्षमता सामाजिकता रचनात्मकता और जिम्मेदारी का भावना विकसित करल है। यहाँ सीखल गयल आदत जौन बा बचवा लोगन के भविष्य और व्यक्तित्व का निर्माण करला। तब भैया हो अगर उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता तो जरूर अपने बचवा लोगन के बाल फुलवारी से जुड़े के चाहिए। अब ही हम लोगन अपने बचवा लोगन से बात बत कही करब, लेकिन आज अपने कार्यक्रम में होई काका ये भी अपने बचवा लोगन के बताए दही। मानव जीवन में स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण, मीरा कुमारी जो छात्रा है इनसे जगत नारायण भैया को बातचीत बा। एक साथे साथे अपन बचवा लोगन अपने मुख से भी कुछ स्वच्छता गीत सुनई हैं, तो हम तो कहत रही है ना कि मानव जीवन में स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण। मीरा कुमारी जो छात्रा बाई इनसे भोला भैया का बातचीत बात तो बिना देर के लिए सुन ले।
2: मानव जीवन में स्वच्छता बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। स्वच्छता हमारे स्वस्थ जीवन और सुंदर समाज का मुख्य आधार है। स्वच्छता से रोगों से बचाव होती है और मानसिक शक्ति तथा आकर्षक भी लगता है। घर, स्कूल, मंदिर, पार्क, बच्चों की किताब, बैग सहित लिखावट आदि भी स्वच्छ होने के कारण आकर्षक होता है। इसीलिए कहावत है एक कि मन को रखो एक ही सपना, मन रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना। इसी के साथ सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी बला के कठौंधी से छात्रा मीरा कुमारी से मुलाकात हो रही है और एक बातचीत के क्रम में देखा गया कि सफाई व्यक्ति चाहे जहाँ पर भी हो कितना महत्व रखता है, चाहे स्वास्थ्य हो या मानसिक वृद्धि या फिर किसी भी प्रकार से लिखावट में आकर्षित करने का माध्यम हो। किसी किसी का देखा जाता है कि दांतें ऐसे होते हैं जो आसपास बैठने से बदबू भी करते हैं, तो सफाई मानव जीवन के लिए या सभी जीवधारियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज बात करते हैं मीरा से। मीरा कुमारी, ये स्वच्छता के बारे में बात करना था, स्वच्छता क्या है आपके समझ से?
3: स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही संस्कार है और महात्मा गांधी जी ने कहा था स्वच्छता ईश्वर के निकट है। साथियों, स्वच्छता केवल झाड़ू लगाने का नाम नहीं है। स्वच्छता एक सोच है, एक आदत है, एक संस्कार है। जैसा कि कहा गया है, स्वच्छ मन स्वच्छ तन, तभी बनेगा स्वच्छ वतन।
2: बिल्कुल बिल्कुल। स्वच्छता का महत्व क्या है?
3: स्वच्छता का महत्व है, यदि हमारे आसपास गंदगी होगी तो बीमारियां फैलेगी। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां गंदगी से ही पैदा होती है। स्वच्छ वातावरण में हमारा मन प्रसन्न रहता है, पढ़ाई में मन लगता है और हम स्वच्छ रहते हैं। कहा भी गया है, जहाँ स्वच्छता वहाँ प्रभुता।
2: बिल्कुल, इसमें बहुत सारे चीज़ें, स्वच्छता पर व्यक्ति को ध्यान देना होता है कि स्वच्छता निश्चित रूप से चाहे स्थान हो, चाहे व्यक्ति के शरीर हो, चाहे वस्त्र इत्यादि हो, ये बहुत ही महत्व रखता है। तो स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ महत्व है इसका, स्वच्छता का?
3: स्वास्थ्य के लिए महत्व, गंदगी ही सभी बीमारियों की जड़ है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ मक्खी मच्छर पनपते हैं और डेंगू मलेरिया हैजा जैसी बीमारियां फैलती है। स्वच्छता हमें बीमारियों से बचाती है। कहा गया है, स्वच्छ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और मन भी प्रसन्न रहता है, तो मन की प्रसन्नता के लिए क्या कहना चाहेंगे?
3: मन की प्रसन्नता के लिए स्वच्छ जगह पर मन स्वस्थ प्रसन्न रहता है। यदि हमारे कक्षा साफ होगी तो पढ़ाई में मन लगेगा, यदि घर साफ होगा तो सकारात्मक ऊर्जा आएगी।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और व्यक्तित्व विकास में स्वच्छता का महत्व?
3: व्यक्तित्व विकास में जो व्यक्ति साफ सुथरा रहता है समाज में उसका सम्मान होता है। स्वच्छता हमारे चरित्र और सकारात्मक को दर्शाती है।
2: तो हम लोग तो भाई देश में रहते हैं, जिससे कि घर में साफ सफाई जरूरी है, तो देश भी अगर साफ सुथरा रहे तो और अच्छा है जी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
3: देश के लिए महत्व है, एक स्वच्छ मोहल्ला, एक स्वस्थ शहर ही स्वच्छ भारत बनाता है। स्वच्छ भारत में विदेशी पर्यटन आकर्षित होते हैं और विदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। इसलिए सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, जहां स्वच्छता वहां देवता का वास होता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वच्छता कितने प्रकार के हो सकते हैं?
3: स्वच्छता तीन प्रकार के होते हैं। पहला, व्यक्तिगत स्वच्छता, रोज नहाना, साफ कपड़े पहनना, नाखून काटना। दूसरा, घर की स्वच्छता, अपने घर आंगन को साफ रखना। तीसरा, सामाजिक स्वच्छता, अपने गली मोहल्ले और विद्यालय को साफ रखना।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा आप काम कर पाते हैं, साफ सुथरा रखते हैं गली मोहल्ला?
3: जी सर।
2: तो आपके यहाँ कुछ पशु भी हैं, मवेशी, गाय भैंस बकरी?
3: जी।
2: तो उनका साफ सफाई किसे करते हैं, गोबर करते होंगे, जहाँ बांधते होंगे,

0: तो वो उनके स्थान को भी तो साफ करना होता है,
1: जी
0: तो करते हैं कभी? अच्छा,
1: जी
0: तो उससे पशु भी स्वस्थ रहेंगे, साफ रहेंगे, नहीं तो उनसे जो है कि बहुत सारे मच्छर काटेंगे, मक्खियाँ काटेंगी, उनके पैर में सड़न होगा,
1: जी
0: तो ये तो बिल्कुल अच्छी बात है। और वातावरण साफ रहे तो इसके लिए और थोड़ा मनोरम लगे, इसके लिए पेड़ पालो भी आवश्यक होती है।
1: जी
0: कुछ पौधे रोपण किए हैं?
1: जी
0: कितने लगाए हैं?
1: पाँच
0: 5-6 लगाए हैं। फलदार वृक्ष है कि ऐसे?
1: फलदार
0: आपके घर के आसपास तो महुआ बहुत काफ़ी है।
1: जी
0: महुआ खाती हैं कभी? नहीं।
1: नहीं
0: तो ये स्वच्छता के प्रति और कुछ क्या कहना चाहेंगे स्वच्छता के बारे में?
1: हम सभी को पढ़ लेना होगा कि हम कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंकेंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे, अपने विद्यालय को साफ रखेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है। उनका सपना है कि भारत स्वच्छ बने। इस सपने को पूरा करना हम सभी विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल, तो जिम्मेदारी के साथ हम लोग काम करना भी चाहिए, पढ़ाई भी मेहनत से करनी चाहिए। चलते चलाते आप कुछ क्या कहना चाहेंगे निष्कर्षता?
1: स्वच्छता हमारी पहली जिम्मेदारी है। हमें कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, प्लास्टिक कम उपयोग करना चाहिए और दूसरों को भी जागरूक रखना चाहिए। स्वच्छ रहो और देश को स्वच्छ बना। धन्यवाद।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें हैं। और स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उज्याला फैलाएंगे, ये भी कहावत है। और स्वच्छता है एक बड़ा अभियान, आप भी दे अपना योगदान। इसी के साथ इतना अच्छा जानकारी दी मीरा कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: Hey girls, आज तो पार्टी चाहिए,
3: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी,
2: पिज्जा पार्टी। पार्टी चाहिए,
3: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी,
2: पिज्जा पार्टी। चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मुन्ने भैया।
6: हाँ भैया।
5: भैया देखो कितना बढ़िया बच्ची का जो विचार रहा है, मानव जीवन में स्वच्छता सबसे बड़े सबसे महत्वपूर्ण जगत नारायण भैया बतियावत रहना। और देखो एक चीज बच्ची लोगन के मन में भी बात बा कि स्वच्छता जवन हो अपनावे बदे खुद प्रयास करब जरूरी बा।
6: बिल्कुल,
5: तब बस स्वच्छ पूरा स्वच्छता आई अपने जीवन में
6: भैया। हो देखा एक एक आदमी जब अपने काम के आगे बढ़ाई तब वो एक अभियान के रूप में आगे बढ़ी। इतना बढ़िया जानकारी बदे दे जाए धन्यवाद। लेकिन बचवा लोगन भी अपने मुख से एक स्वच्छता गीत सुनावल चाहता हूँ, तो बिना देर के लिए सुन ले।
0: बच्चों आज हम सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी बला के कठौंधी में आपको ले चलते हैं और यहाँ मुलाकात हो रही है कुमारी कविता, दीप्ति भारद्वाज, शिव कुमारी और मीरा से। आप लोग एक स्वच्छता गीत प्रस्तुत कर रहे हैं, आइए इसे सुनते हैं और अमल करते हैं। गीत का बोल है ए हवा दे बता।

0: धन्यवाद।
1: बहुत सुंदर स्वच्छता गीत प्रस्तुत किया आप लोगों ने। इसी क्रम में एक और कक्षा 8 से कविता प्रस्तुत कर रहे हैं कुमारी शिवानी, रेखा, रूबी और सोन कुंवर। कविता का बोल है पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। सुनाइए।

0: धन्यवाद।
1: बहुत सुंदर, इतने अच्छे प्रस्तुति आप लोगों ने किया। पेड़ों के संग बढ़ना सीखें। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मुनि भैया।
3: हाँ भैया।
2: भैया बच्चों लोग देखा आपने स्वच्छता गीत में स्वच्छता का बात कही ना, पेड़ पौधा के संरक्षित करे बदे का करे के चाहिए अपने गीत में पिरो को सुनावत रहना। और देखा एक संदेश रहल बच्चों लोगन के माध्यम से बड़े लोगन के भी कि पेड़ पौधा जीवन बदे कितना महत्वपूर्ण बा, उनके संरक्षण कर पर्यावरण बदे खासतौर पर बहुत जरूरी
3: बा। बिल्कुल भैया, एकदम जरूरी बा। लेकिन एकरे साथे साथे नखड़ू भैया, अपने बचवा लोगन के समय से पढ़ल, समय से उठल, समय से सूतल आ समय से भोजन पानी कयल, समय से घूमल टहरल, भैया इहो बहुत जरूरी बा।
2: बिल्कुल, कुछ कुछ बचवा लोगन के भैया ऐसा नहला कि एक काम में बहुत ज्यादा समय दे देवा ना, फिर उसके बाद दूसरे काम में समय ही नहीं मिला।
3: बिल्कुल,
2: तो सही बात आपका ना कि हर चीज काम करे के समय सारणी अगर बना ली है तो हर काम के समय पर निपटा के पूरा करिए, और समय पर जो पूरा करिए तो पर्याप्त उनके समय जो हो खेल कूद या अपने मनोरंजन वाले काम में उनके मिले।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कथ हुआ। तो देखा बचवा लोगन के सही समय सारणी बनाए का पढ़ाई लिखे के भी चाहिए। ये नहीं कि अगर आपके पास छठे सातठे आठठे विषय बा तो एक का विषय पर अधिक बल दे दा और शेष विषय आप कमजोर हो जाए। देखा प्रत्येक विषय के प्रत्येक दिन आप पढ़ाई का प्रयास करे, एक समय सारणी बनायला, जिसे जो कठिन विषय बा नखड़ू भैया ऊपर अगर आप एक घंटा समय देते हो तो उसे थोड़ा सा जौन कठिन बा ऊपर 45 मिनट समय दा, उसे और जौन कम कठिन बा ऊपर 30 मिनट समय दा, और अधिकतम प्रत्येक विषय पर 20 मिनट समय देवे का प्रयास करे, और यही समय सारणी के अनुसार आप लोगन पढ़ा लिखा। बचवा लोगन देखा अपने बाल गोपाल कार्यक्रम का जो समय बा हो गल, अब हम लोगन के चले के चाहिए। अगले रविवार से के फिर आप लोगन से मुलाकात हुई, बात हुई, तो चले के तब बचवा बोला जय हिंद।

0: अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल FM 102.7 पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत, लेकिन उससे पहले लीजिए सुनिए ये संदेश।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात,
0: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
0: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
0: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

लता मंगेशकर और एसवी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में ये गीत आपने सुना, देव कोहली का लिखा हुआ। संगीत राम लक्ष्मण का था और फिल्म थी मैंने प्यार किया।

श्रोताओं, ये था कार्यक्रम का आखिरी गीत, गुलजार का लिखा हुआ एआर रहमान के संगीत निर्देशन में। मुर्तजा कादिर और साधना सरगम की आवाज थी फिल्मजी साथिया। इसके साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे लखनऊ से रिले कार्यक्रम।

0: जाइए, चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
1: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
1: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
1: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही आरपीएलआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही में इंडिया कारपेट एक्सपो के स्वर्ण जयंती संस्करण का किया शुभारंभ। जिले में 1340 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। श्री योगी ने की घोषणा, भदोही जिले को अब संत रविदास नगर भदोही के नाम से जाना जाएगा। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अयोध्या मेडिकल कॉलेज में जल्द ही हृदय, गुर्दा और गैस्ट्रो रोगों से संबंधित चार नए विभाग खोलने की घोषणा। और सुल्तानपुर में शहीद जवान का पार्थिव शरीर ले जा रही एम्बुलेंस हुई हादसे का शिकार, चार की मौत, मुख्यमंत्री ने जताया शोक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भदोही में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हस्तनिर्मित कालीन व्यापार मेले इंडिया कारपेट एक्सपो के स्वर्ण जयंती संस्करण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार कारीगरों और हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है, और इस क्रम में विभिन्न योजनाएं और सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं, जिसका परिणाम है कि भदोही सहित कई जिलों में एक मजबूत एक्सपोर्ट इकोसिस्टम बन गया है।
5: इस जनपद के पास जीआई की पहचान है, ओडीओपी का प्लेटफॉर्म है, कारपेट एक्सपो मार्ट जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है और सीपीसी का इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी है। एक मजबूत एक्सपोर्ट इकोसिस्टम है, इंटरनेशनल बायर से उनका डायलॉग भी है, और पूरे उत्तर प्रदेश की तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर इनका नेटवर्क है। हमने कनेक्टिविटी को कितना बेहतर किया है, यानी आने वाले समय में गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार विंध्य एक्सप्रेसवे के रूप में जब सामने आएगा तो संत रविदास नगर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने में मात्र 6 घंटे में आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होंगे, और वहां के कार्गो का उपयोग करते हुए आप सीधे अपने कारपेट को दुनिया के किसी भी मार्केट तक पहुंचाने में सफल हो सकते हैं।
4: इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भदोही जिले को अब संत रविदास नगर भदोही के नाम से जाना जाएगा, और उन्होंने

0: जिले में करीब 1,340 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ ही कालीन उद्योग से जुड़े निर्यातकों, विक्रेताओं और उद्यमियों से संवाद भी किया। इससे पहले आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ स्थित डॉ राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के डॉ भीमराव सभागार में आयोजित अखिल विश्व गायत्री परिवार के शताब्दी वर्ष के तहत आयोजित प्रांतीय शिक्षक गरिमा कार्यशाला में शामिल हुए। इस दौरान श्री योगी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना पर जोर देते हुए कहा कि जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटना राष्ट्र के प्रति अपराध है।
1: कैसा भारत चाहते हैं? बिखरा हुआ भारत, बटा हुआ भारत, जातीय खेमों में आपस में ही लड़ता हुआ भारत। याद रखना, अगर इस प्रकार के भारत की कल्पना करते हैं तो फिर हम अपने पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं रखते हैं। एक ऐसा भारत जो एक भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो, हम सबको मिलकर के उस भारत के लिए काम करना है।
0: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज अयोध्या के मेडिकल कॉलेज के शैक्षणिक परिसर में आयोजित मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री पाठक ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या मेडिकल कॉलेज में जल्द ही 4 नए विभाग खोले जाएंगे।
2: हमारी सरकार 4 नए विभाग खोले जाएंगे, हृदय रोग, किडनी, गैस्ट्रो, इसके अलावा जो अन्य आवश्यकताएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उसको भी हम बढ़ाएंगे और SGPGI लखनऊ से अयोध्या धाम के मेडिकल कॉलेज को हम स्पोक एंड हब से जोड़ेंगे। इसके ICU को हम स्पोक बनाएंगे और हब SGPGI रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि कैसे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से इस सपने को वास्तविकता में बदला गया है।
3: आत्मनिर्भर भारत केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसकी शुरुआत साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य देश में उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI, कृषि अवसंरचना कोष, मेक इन इंडिया और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता जैसी योजनाओं के जरिए देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर पिछले साल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भरता विकसित भारत की नींव है।
4: एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त कमोडोर श्रीकांत केसनूर ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है। पहले भारत रक्षा उपकरणों का बहुत बड़ा आयातक था, लेकिन आज यह एक उभरता हुआ निर्यातक बन रहा है।
5: मैं समझता हूं कि पिछले 10-12 साल में बहुत बढ़ावा मिला है आत्मनिर्भरता को डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस प्रोडक्शन में और इंडिजिनाइजेशन में। जहाँ पे हम आर्म्स को इम्पोर्ट करते थे, अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं।
3: आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य एक मजबूत, सक्षम और संकटों का सामना करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है, ताकि वह अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सके और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। इटावा जिले में पुलिस ने आज ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले अंतर जनपदीय सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। इस संबंध में पुलिस ने युवती और किशोर सहित गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर इन सदस्यों को 22 चौराहे पर घेर कर पकड़ लिया। पुलिस ने तलाशी में कई मोबाइल फोन, लैपटॉप, पासपोर्ट, ग्राहकों की सूची और करोड़ों के लेन देन का डिजिटल डेटा भी बरामद किया है। सुल्तानपुर जिले में आज सुबह शहीद जवान का पार्थिव शरीर ले जा रही सेना की एम्बुलेंस एक अज्ञात ट्रक से जा टकराई, जिसके नतीजे में चालक सहित 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अयोध्या सुल्तानपुर बॉर्डर के हलियापुर के पास हुआ। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि यह एम्बुलेंस शहीद सूबेदार मेजर सत्यवान का पार्थिव शरीर चंडीगढ़ से उनके पैतृक निवास गहिला दुधैला देवरिया ले जा रही थी। जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि सूबेदार मेजर का इलाज चंडीगढ़ के अस्पताल में चल रहा था, वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए अधिकारियों को परिजनों से संवाद कर हर संभव सहायता देने का निर्देश दिया है। जापान एशियाई खेलों में कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। पेश है एक रिपोर्ट।
6: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पुनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंगाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही में इंडिया कारपेट एक्सपो के स्वर्ण जयंती संस्करण का किया शुभारंभ। जिले में 1340 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। श्री योगी ने की घोषणा, भदोही जिले को अब संत रविदास नगर भदोही के नाम से जाना जाएगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अयोध्या मेडिकल कॉलेज में जल्द ही हृदय, गुर्दा और गैस्ट्रो रोगों से संबंधित 4 नए विभाग खोलने की घोषणा। और सुल्तानपुर में शहीद जवान का पार्थिव शरीर ले जा रही एम्बुलेंस हुई हादसे का शिकार, 4 की मौत, मुख्यमंत्री ने जताया शोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: आपकी चाय। EMI किराया कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना इजी? काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है। इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
8: ना भाई ना।
9: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है
10: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम समरस।

श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में आपने सुना आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में जावेद अख्तर के लिखे गीत को। संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। फिल्म का नाम

था सागर। आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस, और कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं आनंद बख्शी का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। गायिका लता मंगेशकर और मनहर दास हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम का यह गीत आपने सुना आनंद बख्शी की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। आवाजें लता मंगेशकर और मनहर की थी। फिल्म का नाम था हीरो। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस वक्त आपने ट्यून किया है 102.7 एफएम और फिल्मी गीतों के सफर के साथ है आपके रेडियो हम सफर आरती।

आकाशवाणी के उबरा केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का सफर कार्यक्रम, और फिल्मी गीतों के सफर के साथ है आपके रेडियो हम सफर आ

आशा भोसले, ऋषि कपूर और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत सुना कर्ज फिल्म से। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, सबरस कार्यक्रम का ये था आखिरी गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। गीत की बोल एसएच बिहारी की थी, तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम था प्यार झुकता नहीं। इसके साथ ही फिल्मी गीतों का सबरस कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं गुलाम अली साहब की गाई इस गजल के साथ।

गुलाम अली साहब की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये गजल। कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से।

FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का फिल्म संगीत कार्यक्रम।

आशा भोसले और अभिजीत की आवाजों में ये गीत आपने सुना, जतिन ललित के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा हुआ। फिल्म का नाम था दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

कार्यक्रम का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी, धुन बनाई थी उत्तम जगदीश ने और फिल्म का नाम था दिल तो पागल है। कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं बाजीगर फिल्म से।

श्रोताओं, ये था कार्यक्रम का आखिरी गीत बाजीगर फिल्म से। आवाजें विनोद राठौर अलका याग्निक की थी, शब्दरचना नवाब आरजू की थी, तर्ज बनाई थी अनु मलिक ने। इसके साथ ही फिल्मी गीतों का फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

कार्यक्रम की ये गजल आपने सुनी चंदन दास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से।

श्रोताओं, ये गजल थी अनुराधा पौडवाल और चंदन दास की आवाज में। कार्यक्रम की आखिरी गजल लीजिए, सुनिए मिताली सिंह की आवाज में।

0: श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम की आखिरी गजल भूपेंद्र सिंह की आवाज में। इसके साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का उपरा केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी देर में दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3,00,000 मकान सौंपे। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। ईरान ने कहा, अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा, हुर्मुज जलरंगों मध्य बंद रहेगा। ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना। और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 घरों का निर्माण किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार राज्य भर में विकास को गति देने और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिलकर काम कर

0: रही है।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3 लाख मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
0: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों का असर अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रहा है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वित्तीय शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र में सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि दिवालियापन और दिवालिया संहिता, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और रचनात्मक नियामक निगरानी जैसे सुधारों से भारत का वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकास का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है।
2: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile 5 economy, we become the 4th largest economy and I'm sure soon we are going to be the 3rd largest economy of the world.
0: नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैन परंपरा में क्षमा को आध्यात्मिक अनुशासन में परिवर्तित किया जाता है जो आज समूची मानवता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थन्नट चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे 3 नए आपराधिक कानूनों के जरिए न्याय को आसान और सुलभ बनाया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य

0: अधिनियम 2023 शामिल हैं।
1: नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत जीरो एफआईआर, त्वरित जांच, सीमित स्थगन, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह और वीडियोग्राफी तथा लैंगिक रूप से तटस्थ अपराध जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले एफआईआर करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब जीरो एफआईआर को भी कानूनी रूप दे दिया गया है।
1: संगठित अपराध से निपटने और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। पहली बार भीड़ द्वारा हत्या को धारा 103 की उपधारा 2 के तहत एक अलग अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यदि 5 या उससे अधिक लोगों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के साथ साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा,
3: 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
1: पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान था। अब इस प्रावधान में संशोधन किया गया है। वहीं अब 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अपराध के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हुर्मुज जलडमरुमध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2023 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। खेलों के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा।
4: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहां भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहिन ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में पांच दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। मौसम विभाग ने अगले दो से तीन दिनों के लिए कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देश के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। और जापान में एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says changing global landscape opens new avenues for cooperation among emerging and middle powers, highlights peace, supply chain resilience and connectivity as their key agendas. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan hands over 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh, lays foundation stone for country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology. Campaigning ends for by-polls to 5 assembly seats across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and a Lok Sabha constituency in Assam, voting on Tuesday. Iran says Strait of Hormuz to remain closed until US meets its 7 conditions, plans to expand range of missiles. And Asian Games 2026 draw to a close in Japan in a dazzling ceremony. India sign off in 4th place with 85 medals comprising 21 gold. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jaishankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers. He said it is marked by the repositioning of the United States, the rise of China and growing global interdependence.
6: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing. And I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
5: Citing the Quad as an example, Dr. Jaishankar said it demonstrates cooperation among middle powers with an established major power.
6: Today in a maritime space, in the Indo-Pacific space, we have Quad as an example of, I would say, emerging middle power cooperation with an emerged power. A second example would be in the field of connectivity, where you have something like the IMEC initiative, the India Middle East Europe Connectivity Corridor, the International North-South Transport Corridor, even the Polar Route, the Northern Sea Route could be the subject of cooperation.
5: Second Principal Secretary to the Prime Minister Shaktikant Das has said restoration of the health of the financial sector has been the defining feature of India's resilience in recent years. He was speaking at the Kautilya Economic Enclave in New Delhi today.
7: India's financial sector has emerged as a strong pillar of economic growth, supported by reforms such as the Insolvency and Bankruptcy Code, bank recapitalization, and constructive regulatory oversight. Gross non-performing assets have fallen sharply to 1.68% in June 2026, while bank profitability have improved.

0: श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको सुनाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी के लिखे गीत को। संगीतबद्ध किया था आर डी बर्मन ने और फिल्म का नाम था आपकी कसम।
1: Hey girls, आज तो पार्टी चाहिए।
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी के उबरा केंद्र से आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी नगमों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम के साथ है आपके रेडियो हमसफर आरती और कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा हुआ। आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र की है। फिल्म का नाम है बॉबी।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है,
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
4: पहले तुम,
5: पहले तुम,
4: पहले तुम,
5: पहले तुम,
4: पहले तुम,
5: तुम,
4: तुम,
5: तुम,
4: तुम,
5: तुम,
4: तुम।
5: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
4: अच्छा मैं कहती हूँ

श्रोताओं, FM 102.7 पर इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जिसमें हम सुनवा रहे हैं आपको कुछ पुराने फिल्मी नगमे।

श्रोताओं, आप सफर कर रहे हों और पुराने फिल्मी नगमे बज रहे हों और रात का समय हो तो सफर और खुशनुमा हो जाता है। ऐसे ही प्यारी प्यारे नगमे आज

0: हम आपको सुनवाए पुराने फिल्मी नगमों के कार्यक्रम बोले मिस्र गीत में। कार्यक्रम का यह आखिरी गीत था किशोर कुमार आशा भोसले जी की आवाज में, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की थी, तर्ज बनाई थी राहुल देव बर्मन ने, फिल्म का नाम था सितमगढ़। तो पुराने फिल्मी नगमे अब समाप्त होते हैं, भोले मिस्र गीत ये कार्यक्रम था। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में प्रस्तुत है वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित रूपक मन के मौसम उम्र के साथ, आलेख डॉक्टर बानी आनंद, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक मन के मौसम उम्र के साथ।
2: सूरज हर सुबह लगभग एक ही जगह से उगता है, लेकिन हर उम्र में उसकी रोशनी एक जैसी नहीं लगती। कभी वही सुबह एक नई शुरुआत लगती है, तो कभी वही सुबह एक बहुत लंबा दिन।
3: उम्र बढ़ती है तो शरीर में बदलाव दिखाई देते हैं, बालों में सफेदी, चाल में धीमापन, चश्मे का नंबर, दवाइयों की संख्या, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिन्हें कोई एक्सरे नहीं पकड़ता।
2: काम से रिटायर होने के बाद खाली हुआ समय, बच्चों के घर से चले जाने के बाद खाली हुआ कमरा, जीवन साथी के जाने के बाद खाली हुई कुर्सी, और धीरे धीरे कम होती बातचीत के बीच मन में पैदा हुई एक खामोशी।
3: हम अक्सर पूछते हैं उम्र कितनी हो गई, लेकिन शायद एक और सवाल पूछा जाना चाहिए, उम्र के इस पड़ाव पर मन कैसा है? क्योंकि उम्र बढ़ना केवल शरीर की कहानी नहीं है,
2: ये रिश्तों की कहानी है, भूमिकाओं की कहानी है, पहचान की कहानी है, और साथ ही बिछोह की कहानी है, और इन सब से बढ़कर ये सुने जाने की कहानी है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में हम इसी अनकहे संसार में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं।
3: दिल्ली स्थित एक प्राइवेट ओल्ड एज होम से कुछ आवाजें और कुछ आवाजें सुदूर बिहार से।
4: मेरा नाम आशुतोष मुखर्जी, इलाहाबाद से आए हैं। हम इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री में ऑफिसर थे, रिटायर हो गए। म्यूजिक इज माय हॉबी, बोंगो कॉन्गो। हमारा पूरा ऑर्केस्ट्रा था वहाँ इलाहाबाद में, अब कोई है ही नहीं। मेरा हमारे दो डॉटर्स हैं, दोनों ऑस्ट्रेलिया में हैं। लड़कियों की शादी हो गई, वाइफ की डेथ हो गई।
5: माय नेम इज कृष्णा मिश्र। आई यूज्ड टू लिव विद माय डॉटर, बट शी हैज एक्सपायर्ड। आई केम हियर, आई फील वेरी लोनली। जनरली आई लाइक टू वॉच टीवी एंड लाइक टू स्टोरी बुक।
6: मेरा नाम है विजेंद्र सिंह शेखावत, आर्मी से रिटायरमेंट हूँ चुपदार से, और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। उनकी देख रेख जैसे रात बिरात हारी बीमारी होती है, 10 का मेरा स्टाफ है। नहीं ऐसे को नहीं, सभी आते हैं, एक दो दिन तो उनका मन नहीं लगता, फिर यहाँ पे माहौल में डल जाते हैं, सब खुश रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, यहाँ पे टीवी देखते हैं, न्यूज पेपर देखते हैं, यहाँ कीर्तन भाव होते हैं हफ्ता में एक दिन। कॉलेज के स्कूल के स्टूडेंट आते हैं, वो डांस करते हैं, तमोला खिलाते हैं, अंताक्षरी करते हैं, गाना सुनाते हैं, तो उनका अच्छा टाइम पास हो जाता
7: है। मेरा नाम बेबी सिन्हा है, मैं खगड़िया चित्रकूट नगर डीएवी रोड से हूँ। मैं यहाँ पर अपने लड़का के नाम से स्कूल खोली हुई हूँ। मैं अकेले अपने घर में रहती हूँ, तो स्कूल खोलने का मकसद मेरा यही था कि बच्चे के बीच में रहूंगी, मैं खुश रहूंगी।
8: मेरा नाम श्यामा कांति सिन्हा है, मेरी उम्र 69 बरस है। मैं बिहार शरीफ में रहती हूँ, अपने पति के साथ अकेले। मैं पहले सर्विस करती थी, अब मैं रिटायर हो गई हूँ, अकेले दोनों रहती हूँ। कभी कभी बहुत मुश्किल होती है, गिर जाती हूँ मैं भी, मेरा पति भी। पूरे दिन अकेले काटती हूँ, पेपर पढ़ती हूँ, कभी मोबाइल देखती हूँ। मेरे बच्चे हैं जो दूर में रहती हैं, दो बेटियाँ, उनको आना भी मुश्किल है। मैं सोचो के कभी कभी रोना आता है, रोते रहती हूँ।
9: धुंधले दर्पण में गालों की अरुणाइयां अपनी आंखों को दिखला के छलता रहा। उम्र के उंगलियां दस्तखत कर गई, मैं भुलावे का उबटन ही मलता रहा। कौन से रास्ते जाने किस मोड़ पर, कब बिछड़ कर मेरा पाकपन रह गया। पत्ते झरने लगे, बूढ़ा बरगद हुआ, बस गए उम्र का आकलन रह गया। पत्ते झरने लगे, बूढ़ा बरगद हुआ, पत्ते झरने लगे, बूढ़ा बरगद हुआ।
3: भारत को लंबे समय तक युवा देश के रूप में देखा गया, लेकिन अब भारत की जनसंख्या की तस्वीर बदल रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की एल्डरली इन इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी का हिस्सा 2021 में लगभग 10.1% अनुमानित था और 2031 में 13.1% तक पहुँचने का अनुमान लगाया गया था।
2: और इससे आगे की तस्वीर देखें तो UNFPA की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की हिस्सेदारी 2022 के 10.5% से बढ़कर 2050 में 20.8% होने का अनुमान है। यानी आने वाले दशकों में भारत में हर 5 लोगों में लगभग एक व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो सकता है।
3: ये सिर्फ जनसंख्या का बदलाव नहीं है, ये परिवार की संरचना बदलेगा, स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत बदलेगा, सामाजिक सुरक्षा की जरूरत बदलेगा और मानसिक स्वास्थ्य की हमारी समझ को भी बदलना होगा। क्योंकि सवाल ये नहीं कि हम कितने लोगों को लंबी जिंदगी दे पाएंगे, सवाल ये भी है कि क्या हम उस लंबी जिंदगी को अर्थपूर्ण, सम्मानजनक और सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ बना पाएंगे। कई वर्षों तक भारत में और वर्तमान में दोहा कतर में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में सेवाएं दे रहे डॉक्टर नवाब खान कहते हैं,
10: केयर सिस्टम है ना इंडिया में चेंज हो रहा है। पहले एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, वो अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में तब्दील हो रहा है। केयर टेकर्स थे पहले के कंपैरिजन में कम हो रहे हैं एक्चुअली। दूसरा है कि जो चीजें उनके अंदर होती है, एंजाइटी है, जो लोनलीनेस है, जो फॉरगेटफुलनेस है, डिमेंशिया से रिलेटेड चीजें होती है, जो उनका लॉस है, जिसमें लॉस ऑफ पार्टनर है, इस चीजों की। तो बेसिकली होता क्या है कि इंसान जब हार जाता है तो उनका गुस्सा खुद की तरफ होने लगता है, लेकिन जब गुस्सा बाहर की तरफ होता है तो फिर वो फाइट की स्पिरिट में दिखता है कि अपने राइट्स के लिए लड़ना, स्पेस के लिए लड़ना, अपने इमोशनल कनेक्टिविटी के लिए लड़ना, मतलब आई एम समथिंग, ये सेल्फ हो जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी इसको फैमिली वाले अलग वे में ले लेते हैं कि अच्छा इस उम्र में इतना ईगो दिखा रहे हैं। ये एक ब्लेसिंग है एक्चुअली, जिसको फैमिली वाले को समझना ये चाहिए कि नहीं, स्टिल ही इज हैविंग फाइटिंग स्पिरिट, द लाइफ इज देयर। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप कितने साल तक जीते हैं, इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि इन सालों में जिंदगी कितनी थी, उस जिंदगी को भरने की जरूरत होती है एक्चुअली।
2: पूरी जिंदगी किसी व्यक्ति की पहचान कई भूमिकाओं से बनती है। कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर, किसान, व्यापारी, गृहिणी, माता पिता, फिर एक दिन नौकरी या सेवा समाप्त होती है और उसके साथ सिर्फ वेतन या खुद की भूमिका ही नहीं ठहरती, कभी कभी दिनचर्या भी रुक जाती है। सहकर्मियों से रोज का मिलना रुकता है, निर्णय लेने की आदत बदलती है और व्यक्ति के मन में एक प्रश्न जन्म लेता है, अब मैं कौन हूं।
3: ये प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है। व्यक्ति को अपने जीवन में उद्देश्य, सामाजिक संबंध और अपनी भूमिका का एहसास भी चाहिए।
2: अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना एक ही बात नहीं है। कोई व्यक्ति परिवार

0: के बीच भी रहकर भीतर से बहुत अकेला महसूस कर सकता है। और कोई व्यक्ति अकेला रहकर भी अपने जीवन से संतुष्ट हो सकता है।
1: मेरा नाम दशरथ भगत है। मैं प्लस टू विद्यालय स्थानीय खगड़िया स्टेशन रोड से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं अभी अकेले घर में रहता हूँ। मेरी पत्नी शिक्षिका थी, 2013 में एक्सपायर कर गई। तीन बच्ची है, तीनों बच्ची की शादी हो गई है। एक लड़का है, वह बीटेक करके बीपीएससी की तैयारी करता है। लेकिन घर में मैं अकेला रहता हूँ। अकेलापन तो अनुभव होता है, लेकिन साथी लोग हैं इसलिए हम लोग का समय बड़ी आसानी से कट जाता है। थोड़ा अध्यात्मिक होने के कारण और विभिन्न संस्था से जुड़े रहने के कारण मेरा पर्सनल लाइफ ठीक है। बुनियादी केंद्र में ये हम लोगों का एक मनोरंजन होता है। मैं खुश हूँ अपने लाइफ से।
0: WHO के अनुसार दुनिया में लगभग हर 6 व्यक्ति में एक व्यक्ति लोनलीनेस का अनुभव करता है। वृद्ध लोगों में लगभग 11.8% लोनलीनेस का अनुमान दिया गया है। WHO ये भी रेखांकित करता है कि लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन का संबंध मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, क्वालिटी ऑफ लाइफ और लॉन्गजीविटी से है। और सोशल आइसोलेशन इससे अलग अवधारणा है। यहाँ व्यक्ति के सामाजिक संपर्कों और रिश्तों की संख्या और गुणवत्ता महत्वपूर्ण हो जाती है।
2: कभी कभी कितने लोग हैं ये समस्या नहीं है, बल्कि कितने लोग हैं जिनसे मन की बात की जा सकती है। यही वो जगह है जहाँ मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। डॉक्टर नवाब खान कहते हैं,
3: ये चीज जो स्टडीज से रिफ्लेक्ट हुई है, मैक्सिमम स्ट्रेस अपने पार्टनर के खोने से होता है, बाकी स्ट्रेस सब उसके नीचे आते हैं। इवन अगर जो लोग ओल्ड एज में रहते हैं, उनके दोस्त हैं और उनकी नजरों के सामने अगर कोई जाता है, दे फील वेरी वेरी सैड एंड बैड। अल्टीमेटली उनको ये फील होता है कि मेरा नंबर आ रहा है। जिस वक्त इंसान को ये फीलिंग होने लगे कि मेरा नंबर आ रहा है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है उसके पास से, तो इनोवेशन खत्म हो जाते हैं, एक दो जील जो जीने की होती है वो खत्म हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। कि हर कम्युनिटी में उम्र के साथ जो स्पेसिफिक चैलेंजेस है वो आते ही आते हैं। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कुछ कर ले, तब भी एक जो कम्युनिटी का रोल होता है, जो एक रिलेटिव्स का रोल होता है, जो एक दोस्तों का रोल होता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: भारत में पारिवारिक संरचना भी बदल रही है। माइग्रेशन बढ़ा है, शहरीकरण बढ़ा है, परिवार छोटे हुए हैं, बच्चे शिक्षा और रोजगार के लिए दूसरे शहरों या दूसरे देशों में चले जाते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ सोशल सपोर्ट की आवश्यकता कम नहीं होती।
2: इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार जब वृद्ध लोग अपने वयस्क बच्चों के साथ नहीं रहते तो लिविंग अरेंजमेंट्स में जेंडर डिफरेंसेस दिखाई देते हैं।
0: यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। उम्र के बहुत आगे के पड़ावों पर विडोहुड और अकेलेपन का जोखिम महिलाओं में अधिक हो सकता है।
2: UNFPA की रिपोर्ट विशेष रूप से एजिंग के फेमिनाइजेशन की ओर ध्यान दिलाती है, यानी वृद्ध आबादी में महिलाओं का बढ़ता अनुपात और उनके साथ जुड़ी आर्थिक या सामाजिक वल्नरेबिलिटीज।
0: इसीलिए सीनियर सिटीजन्स को एक समान समूह मानकर नहीं देखा जा सकता। एक अकेले रहने वाले पुरुष का अनुभव अलग हो सकता है, महिला का अलग, ग्रामीण बुजुर्ग का अलग और शहर में अकेले रहने वाले वृद्ध का बिल्कुल ही अलग। और आर्थिक रूप से सुरक्षित व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अनुभव भी आर्थिक रूप से असुरक्षित व्यक्ति से बिल्कुल अलग हो सकता है। लंबे समय से भारत में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर।
4: भारत में बुजुर्गों की मानसिक सेहत और इलाज से जुड़े आंकड़े गंभीर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज यानी IIPS के देश के सबसे बड़े सर्वे जो अब तक हुआ है, लॉन्जिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया यानी LASI LASI की रिपोर्ट के मुताबिक, और आपको बता दूं कि बुजुर्गों की मानसिक सेहत से जुड़े ये आंकड़े मुख्य रूप से LASI वेव 1 रिपोर्ट से लिए गए हैं। इन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 6 जनवरी 2021 को जारी किया था। ये आंकड़े देख लेने चाहिए, इससे हमें समस्या कितनी

0: गंभीर है और कितना ज्यादा और काम किया जाना बाकी है इससे पता चलता है। तो आंकड़े इस तरह हैं कि भारत में लगभग 20% वरिष्ठ नागरिक 60 साल से जिनकी उम्र ज्यादा हो किसी न किसी तरह की मानसिक स्वास्थ्य समस्या या मनोरोग से जूझ रहे हैं। डिप्रेशन यानी अवसाद बुजुर्गों में ये आम समस्या हो गई है। आंकड़े देखें तो लगभग 41.7% बुजुर्गों ने किसी न किसी स्तर पर डिप्रेशन के लक्षणों की शिकायत की है, ये रिकॉर्ड में है। इसके अलावा डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी, भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 7.4 बुजुर्ग, ये संख्या बैठती है लगभग 88 लाख। महिलाओं में ये खतरा ज्यादा रहता है। बुजुर्ग पुरुषों के मुकाबले बुजुर्ग महिलाओं में मानसिक तनाव और डिप्रेशन की दर ज्यादा देखी गई है। इसकी जो खास वजह है वो एकाकीपन और आर्थिक निर्भरता है। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों के बुजुर्गों में अवसाद के लक्षण ज्यादा पाए गए हैं क्योंकि वहां मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अभी अपेक्षा के हिसाब से कम है।
1: LASI के विश्लेषण में 75 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में प्रोबेबल मेजर डिप्रेशन की प्रेविलेंस 9.4% तक दर्ज हुई। 60 से 64 वर्ष में ये 8.3% थी।
2: एक और महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है। LASI में सिम्टम बेस्ड असेसमेंट से डिप्रेशन का स्तर सेल्फ रिपोर्टेड डायग्नोसिस की तुलना में कहीं अधिक पाया गया। इन दोनों आंकड़ों के बीच का अंतर हमें एक महत्वपूर्ण सवाल देता है। क्या मानसिक स्वास्थ्य की समस्या कम है या हम उसे पहचान कम रहे हैं? यही इस कार्यक्रम की केंद्रीय चिंता भी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को बीमारी मानकर ही नहीं देखता तो वो मदद लेने कैसे जाएगा?
1: और अगर परिवार हर उदासी को उम्र का असर है कहकर टाल देता है तो पहचान और उपचार की संभावना और कम हो जाती है। रवि पाराशर।
0: भारत में लगभग 8% बुजुर्ग ऐसे हैं जो गंभीर डिप्रेशन से पीड़ित हैं, लेकिन उन्हें खुद इस बीमारी की जानकारी नहीं है। ये भी एक गंभीर बात है। इसकी जो खास वजह है वो सामाजिक संकोच है। वो ये बताना नहीं चाहते दूसरों को, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, कि वे उन्हें कोई मानसिक समस्या है। एक और बड़ी वजह रिपोर्ट में पाई गई है कि मानसिक सेहत की जांच करने वाले और इलाज करने वाले डॉक्टरों की अभी कमी है। तो इस दिशा में सरकार काम कर रही है और लगातार काम जारी रहेगा, ऐसा मुझे अपने अनुभव के आधार पर लगता है।
2: उम्र बढ़ने के साथ मानसिक स्वास्थ्य को केवल मानसिक बीमारी के संदर्भ में देखना भी अधूरा होगा। उम्र के साथ साथ फिजिकल लिमिटेशंस भी बढ़ती हैं। 60 प्लस के लोगों में लगभग 23.8% को कम से कम एक एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में लिमिटेशन और लगभग 48% को इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में कम से कम एक लिमिटेशन दर्ज की गई है।
1: अब जरा इसे एम्फैटिकली यानी मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझते हैं। जब किसी व्यक्ति को रोजमर्रा के कामों के लिए दूसरे की मदद चाहिए, जब चलने फिरने की स्वतंत्रता कम हो, जब सुनने या देखने में कठिनाई हो, जब दर्द लगातार साथ हो, तो सिर्फ शरीर नहीं बदलता, व्यक्ति की ऑटोनॉमी, कॉन्फिडेंस और सोशल पार्टिसिपेशन भी प्रभावित हो सकती है। इसीलिए वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर बात करते हुए फिजिकल हेल्थ, डिसेबिलिटी और फंक्शनल इंडिपेंडेंस को अलग नहीं किया जा सकता। डॉक्टर नवाब खान।
3: बुजुर्गों में एक उम्र के बाद सुनने की जो ताकत होती है थोड़ी कम हो जाती है, कभी कभी विजन पे असर हो जाता है, और आप हम लोग ये सब जानते हैं कि उम्र के साथ मेमोरी पे भी असर पड़ता है। सब पे ना हो, लेकिन एक मेजर पॉपुलेशन पे ऐसा काम होता है। जब आपके सुनने की, देखने की, याद करने की क्षमता में कुछ चेंजेस हो जाए तो फिर ट्रस्ट का इश्यू आता है कि किस पे ट्रस्ट करें। कभी कभी आपकी मेमोरी आपका साथ नहीं दे रही होती तो मेमोरी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो अगर आपने खाना खा लिया है या नाश्ता कर लिया है तो फिर आपको याद भी नहीं है, तो उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, प्रॉपर चैट की जरूरत होती है, तो प्रॉपर टीम की जरूरत होती है। और इस हालत में बुजुर्गों को खुद अपनी मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी होती है। जैसे कुछ चीजें आप रखिए फिर भूल जाते हैं, या किसी ने कुछ बात कही तो हमको शक हो ऐसे शायद ये मेरे बारे में बोल रहा है। दे स्टार्ट ओवर हियरिंग एवरीथिंग, दे स्टार्ट रेफरिंग देमसेल्फ फॉर एवरीथिंग, जो पेनफुल हो जाता है बात। और ये जेंडर से एक्चुअली चेंज नहीं होता है, दोनों जेंडर के लिए इक्वली इन चीजें।

0: एप्लीकेबल होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये बेसिकली आपके कॉग्निशन मतलब थिंकिंग पैटर्न, उससे रिलेटेड इमोशन और उससे रिलेटेड बिहेवियर, इन तीनों चीजों को एक लॉजिकल वे में रिस्ट्रक्चर करने का तरीका है। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर हैं, इस जगह पे हैं, तो ठीक है, तो मे बी ऐसी ही मेरी जिंदगी थी और ऐसा ही होना था, इसलिए हो रहा है ये। तो इसलिए स्टार्ट ब्लेमिंग असर, एक्चुअली हम ही इसको फेथ को ओन करते हैं, इस प्रॉब्लम्स को हम ही ओन करते हैं और हमको ये करना ही होगा, बट सिचुएशन कुछ भी और हो सकती है। तो ये जो कॉग्निटिव एरर्स हो जाते हैं उसको एक जेंटली मोर लॉजिकली चैलेंज करके रिस्ट्रक्चर करने का तरीका है। लेकिन इसका इस्तेमाल तब होता है जब पेशेंट या पर्सन जो है, बोले आप, या ओल्ड एज में जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके अंदर लॉजिकल एबिलिटी हो समझने के लिए कि इसका ये अल्टरनेटिव कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है, इसका ये अल्टरनेटिव कॉज भी हो सकता है।
1: मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा में एक और पक्ष अक्सर पीछे छूट जाता है, वो है आर्थिक सुरक्षा।
2: अब जरा सोचिए, अगर उम्र बढ़ने के साथ आय का स्रोत समाप्त हो जाए, स्वास्थ्य खर्च बढ़ जाए, दवाइयां नियमित रूप से लेनी पड़े और व्यक्ति आर्थिक रूप से पूरी तरह परिवार के सदस्यों पर निर्भर हो जाए, तो आर्थिक चिंता और मानसिक तनाव के बीच दूरी कितनी रह जाती है।
1: इसीलिए वृद्धावस्था का मानसिक स्वास्थ्य केवल काउंसलिंग का विषय नहीं, ये सोशल सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी, हेल्थ केयर और डिग्निटी का भी विषय है। यानी समाधान केवल ये नहीं कि बच्चे अपने माता पिता से फोन पर बात करें, जरूरत इससे बड़ी है कि ऐसे मोहल्ले हों जहां बुजुर्ग सुरक्षित होकर निकल सके, ऐसे पार्क हों जहां बैठने की जगह हो, ऐसी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था हो जिसका उपयोग वृद्ध आसानी से कर सके,
2: ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स हों जहां वे केवल लाभार्थी नहीं सहभागी हों, और ऐसी सामाजिक गतिविधियां हों जिनमें उम्र बाधा न बने, क्योंकि किसी व्यक्ति के सामाजिक रिश्ते उसकी मानसिक सेहत का हिस्सा हैं।
1: एक सवाल और है, मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य को केवल बीमारी के उपचार के रूप में देखा जाए या उसमें सोशल पार्टिसिपेशन, लोनलीनेस प्रिवेंशन, कम्युनिटी सपोर्ट, काउंसलिंग, ऑटोनॉमी और डिग्निटी जैसे विषयों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि अगर अकेलापन मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है तो लोनलीनेस प्रिवेंशन भी पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन का एक हिस्सा होना चाहिए।
2: और अगर रिटायरमेंट आइडेंटिटी को बदलना है तो मीनिंगफुल एंगेजमेंट भी एजिंग पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी कई सरकारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। लंबे समय से भारत में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर।
3: सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि सरकारी योजनाओं का फायदा सभी बुजुर्गों को मिलना चाहिए, चाहे वो ग्रामीण इलाकों में रह रहे हों, चाहे वो शहरी इलाकों में रह रहे हों, चाहे वो वृद्धाश्रमों में रह रहे हों। और इसके लिए ग्रामीण इलाकों में मुझे लगता है कि वहां के जो प्रधान होते हैं और सरपंचों को, उनको जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, इनसे सीधे जोड़ा जाना चाहिए। और शहरी इलाकों में जो सबसे निचली इकाई है, मोहल्लों के वार्डों के जो पार्षद हैं, उनके जिम्मे ये काम किया जाना चाहिए, अनिवार्य कर देना चाहिए बल्कि। और कुछ सरकारी योजनाओं का जिक्र यहाँ करना सही रहेगा। आयुष्मान भारत योजना, ये योजना ऐसी है कि 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को, देश भर के सभी बुजुर्गों को इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज मिलता है, जिसमें मानसिक समस्याओं का इलाज भी शामिल है। दूसरी योजना है टेली मानस, ये मानसिक सेहत से जुड़े परामर्श के लिए, सलाह मशवरे के लिए सरकार की 24 घंटे सातों दिन चलने वाली हेल्पलाइन सेवा है। ये बुजुर्ग इस पर कॉल करके मुफ्त मानसिक सलाह ले सकते हैं। इसके नंबर दो हैं, एक है 14416 और दूसरा नंबर है 1800-89-14416। और अच्छी बात यह है कि यह सेवा जो है वो हिंदी समेत कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, तो इसका लाभ उठाया जा सकता है। बिना संकोच किए आप फोन घुमाइए, अगर दूसरों को नहीं बताना चाहते, अकेले में सलाह लेना चाहते हैं, अपनी मानसिक सेहत से जुड़ी समस्या का निराकरण चाहते हैं, तो फोन पर बात कर सकते हैं। एक और नंबर है जिसको एल्डर लाइन कहा जाता है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन, वो है 14567। ये आसानी से याद भी किया जा सकता है 14567। इस पर कॉल करके बुजुर्गों को न केवल मानसिक मदद मिलती है, मानसिक समस्याओं से जूझने में मदद मिलती है, बल्कि पेंशन, कानूनी विवाद और पारिवारिक समस्याओं में भी ये यहाँ पर सलाह मशविरा और सही मार्गदर्शन दिया जाता है। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र भी सरकार ने जगह जगह स्थापित किए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर बुजुर्गों को बुनियादी सलाह मशविरा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए दवाएं यहाँ इसके माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP और जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम DMHP, इसके तहत जिलों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और परामर्श दिया जाता है। वयोवृद्ध जन कल्याण योजनाएं भी हैं, सरकार चलाती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इन्हें चलाता है। इसके तहत डे केयर सेंटर, आश्रय और मोबाइल मेडिकल यूनिट जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं अगर घर पर आपको परामर्श चाहिए। और अच्छी बात यह है कि ये सभी हेल्पलाइन सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त हैं और 24 घंटे उपलब्ध हैं। ये जानकारी भी होनी चाहिए कि भारत में मानसिक बीमारी के इलाज और अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 में एक कानून बनाया गया था और आयुष्मान भारत यानी पीएम जय के नियमों के तहत बेहद सुगम और मरीज के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए तैयार किया गया है।
1: आंकड़े जरूरी हैं, वो हमें समस्या का आकार बताते हैं, लेकिन आंकड़े ये नहीं बताते कि किसी शाम अकेले कमरे में बैठना कैसा लगता है, पति या पत्नी की मृत्यु के बाद पहली रात कैसी होती है, रिटायरमेंट के बाद सोमवार और रविवार में फर्क क्यों मिट जाता है, या जब परिवार कहता है आप आराम कीजिए तो कभी कभी उस वाक्य के पीछे छुपा संदेश कैसा महसूस हो सकता है।
2: इसीलिए इस वर्ष की थीम लिव्ड एक्सपीरियंसेस हर्ड रियल वॉइसेस रियल चेंज एक महत्वपूर्ण दिशा देती है। सिर्फ लोगों के बारे में बात मत कीजिए, लोगों को बोलने की जगह दीजिए। मन के मौसम बदले जा सकते हैं, उम्र बढ़ना एक बायोलॉजिकल रियलिटी है, लेकिन अकेलापन हमेशा अनिवार्य नहीं।
1: शायद उम्र का सबसे कठिन मौसम वो नहीं होता जब शरीर कमजोर पड़ने लगता है, सबसे कठिन मौसम वो होता है जब व्यक्ति को लगे कि उसकी जरूरत कम हो गई है, जब बातचीत उसके बारे में होती है लेकिन उससे नहीं, जब उसके लिए फैसले लिए जाते हैं लेकिन उसकी राय नहीं पूछी जाती, जब उसके पास घर होता है लेकिन संवाद के लिए कोई नहीं, जब उसके पास परिवार होता है लेकिन अपनापन नहीं, और जब उसके भीतर बहुत कुछ कहने को होता है सुनने वाला कोई नहीं।
2: हमारे पास आंकड़े हैं और आंकड़े हमें बताते हैं कि भारत तेजी से एजिंग सोसाइटी बन रहा है। वे बताते हैं कि डिप्रेशन, सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस वास्तविक और गंभीर चिंताएं हैं।
1: लेकिन एक आंकड़ा कभी किसी व्यक्ति की पूरी कहानी नहीं होता, इसलिए शायद अब समय है कि हम सवाल बदलें। ये पूछने के बजाय कि आपको क्या परेशानी है, कभी पूछें आप इन दिनों क्या महसूस कर रहे हैं।
2: ये पूछने की बजाय आपको किस चीज की जरूरत है, कभी पूछें आप अभी भी क्या करना चाहते हैं।
1: और ये मान लेने के बजाय कि उम्र के साथ मन के रंग फीके पड़ जाते हैं, उसे फिर से रंगने के लिए एक जगह बनाते हैं, क्योंकि मन भी मौसम की तरह है, उसमें पतझड़ आता है तो वसंत भी आ सकता है, कभी बादल घिरते हैं तो धूप भी लौटती है।
2: जरूरत सिर्फ इतनी है कि खिड़कियां बंद न कर दी जाएं, किसी के मन की खिड़की खुली रहे, कोई वहां से आती आवाज तो सुन सके, रुके, बात करे और कहे कि हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ,
1: क्योंकि शायद मानसिक स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी सुना जाना है। किसी उम्र में जीवन समाप्त नहीं होता, हर उम्र में एक नया मौसम आने की गुंजाइश हमेशा रहती है,
2: और ये नया मौसम हर किसी के जीवन में आए ऐसी हमारी कामना है।
4: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित रूपक मन के मौसम उम्र के साथ, आलेख डॉक्टर बानी आनंद, वाचन स्वर हर्ष रंजन, नवोदय।

0: लता मिश्रा, रमेश शर्मा की गीत पंक्तियों को स्वर दिया ओम प्रकाश मिश्र ने। प्रस्तुति सहयोग हरदीप सिंह और सुमन ठाकुर। प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: ये आकाशवाणी है। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के इस सभा में प्रस्तुत है हिंडोल पेंटसे का शास्त्रीय गायन।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी नाउ ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय हिंडोल पेंटसे।
1: श्री हिंडोल पेंटसे का जन्म सांगीतिक परिवार में हुआ। उन्होंने शास्त्रीय गायन की शिक्षा घर के संगीतमय वातावरण में अपने पिता एवं गुरु श्री सदानंद पेंसे से प्राप्त की। आपके गायन की विशेषता राग की सिलसिलेवार सौंदर्यपूर्ण एवं लय के साथ खूबसूरत बढ़त है। इसके अलावा आप सुगम गायन जैसे भावगीत भक्ति गीत नाट्य गीत में भी निपुण है। आपने अनेक फिल्मों धारावाहिकों एवं महानाट्यों में गायन और पार्श्व संगीत का सृजन किया है। आपने देश के अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोह में अपना सफल गायन प्रस्तुत किया है। आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। श्री हिंडोल पेंट से अपने कार्यक्रम का आरंभ राग बिहाग से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल है कवन ढंग तोरा। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल है बाजे रे मोरी पायल। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अजिंक्य गलांडे तथा हारमोनियम पर नारायण दरेकर। लीजिए सुनते हैं राग बिहाग। कलाकार है हिंडोल पेंटसे।
2: हिंडोल पेंटसे बोर्न इन अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, He had his musical training in rich musical environment at home from his father and guru Shri Sadanand Pendse. His singing is characterized by the deep commitment to ragadari, with a particular emphasis on his traditional form and aesthetic beauty. He has performed at number of prestigious musical and cultural events. He is also known for background music for films, serials and Mahanatya. Hindol Pendse begins his vocal recital with Raag Bihag. Vilambit Khayal Kavana Dhanga Tora is set to Ektaal and Drut Khayal Bajere Mori Payal is set to Teentaal. Accompanied him on tabla is Ajinkya Galande and on harmonium Narayan Darekar. Let's listen to Raag Bihag by Hindol Pendse.

0: अभी आप राग बिहाग सुन रहे थे। कार्यक्रम का समापन श्री हिंडोल पेंट से राग मधु कौन से कर रहे हैं। मध्य लय ख्याल झपताल में निबद्ध है, बोल है देहो दरस मोहराम, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल है आजा रे आजा पथिकवा।
1: That was राग बिहाग। हिंडोल पेंट से कंक्लूड हिज वोकल रिसाइटल विथ राग मधुकॉन्स। मध्यलय ख्याल देहो दरस मोहे राम इज सेट टू झपताल फॉलोड बाय द्रुत ख्याल आ जा रे पथिकवा इन तीन ताल।

0: ये था राग मधुकोंस। इसी के साथ ही आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम समाप्त होता है, जिसमें आपने श्री हिंडोल पेंडसे का शास्त्रीय गायन सुना। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री अजिंक्य गलांडे और हारमोनियम पर श्री नारायण दरेकर। आकाशवाणी के नागपुर स्टूडियो में ध्वनि मुद्रित ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: That was Rag Madhukons. With this, tonight's Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha comes to an end. You have been listening to the classical vocal recital by Sri Hindol Pendse. He was accompanied on tabla by Ajinkya Galande and on harmonium by Narayan Darekar. This program was recorded in the studio of Akashwani Nagpur and broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 11 बजने को है, लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा हैं। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
2: There are countries who are emerging.
3: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोवियत संघ कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा रहा, खासकर तब जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में आयोजित 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश की सैन्य तानाशाही के समर्थन में थे, तब रूस एक ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज दोनों देशों के रिश्ते पहले से ज्यादा व्यापक हो गए हैं। इसमें सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष से जुड़े पहलुओं के साथ साथ व्यापार और निवेश भी शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है कि वह इस संघर्ष का अंत देखना चाहता है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने काला सागर में जहाजों और वाणिज्यिक जहाजरानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुद्दे से इस मदद की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत के 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। यह कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कहा है कि पायलट स्मिथ मछार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं जारी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राजदूत मित्तल ने बताया कि स्मिथ तेजी से ठीक हो रहे हैं और उनका मनोबल काफी ऊंचा है। उन्होंने कहा कि दूतावास स्थानीय अधिकारियों और परिवार के साथ संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के समापन के अवसर पर भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य को देश का दृढ़ संकल्प जुनून और शानदार खेल भावना के साथ प्रतिनिधित्व करने के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:30 पर अपने पुनः अन्य कार्यक्रमों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद।

हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:30 पर अपने पुनः अन्य कार्यक्रमों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद।